आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: आएगो आएगो आएगो। ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है। क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं वर्ड मस्ती आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आप सभी को आज यानी कि संडे का दिन भाई बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि भाई संडे का दिन होता है फंडे के लिए, आराम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो इस बीच में आप सबके बीच में आ चुका हूँ आप सबका मनोरंजन करने के लिए। लेकिन आज के जो वर्ड मस्ती के शब्द हैं वो हैं सागर, दरिया, चाहत, पर्दा, पंडित, दुपट्टा, ओढ़नी, चैन, इकरार और लव। जी, इन शब्दों पे गाने भेजने हैं। फिलहाल मेरे पसंद गाने जाए कि जाते, इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

बिल्कुल आंखों में बसा के ख्वाब तेरे में, मतलब क्या कहूँ, और तेरे नाम हथेली पर लिख के चुमता रहता हूँ। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह मैं सरफू भाई सरफराज पटेल जी, साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। वेलकम करते हैं और शेख मोहम्मद ताहिर जी वेलकम है। लिखते हैं कि तुम्हारा नाम को होठों पर सजाया है मैंने, लिखते हैं कि तुम्हारे नाम को होठों पर सजाया है मैंने, और तुम्हारी रूह को अपने दिल में बसाया है मैंने, और दुनिया तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक जाएगी, दुनिया तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक जाएगी, दिल के ऐसे हिस्से में छुपाया है मैंने। आया है क्या बात है सच में जी। और संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है संध्या पटेल जी। और काजल झक्का जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं काजल झक्का जी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वजीत सेठी जी। और बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी, ये मुरादाबाद यूपी से। और दत्तक्रम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ मनीषा शर्मा जी बहुत दिन बाद आई हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और गोविंदा खंडाते जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और खुशबू कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ गजानन सुलकार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और बीरबल बघेल जी वेलकम है आपका भी, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रियंका जी वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस गाने से। और अभी जो पहला गाना प्ले होने वाला है दुपट्टा पर होने वाला है। दुपट्टा पर जितने भी दोस्तों ने गाने भेजे, मैं कोशिश करूंगा पहले दुपट्टा वाले गाने को शामिल कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। और यानी कि कम से कम मेरे तीन गाने होंगे एक शब्द पर, और अधिक से अधिक इन पांच गाने हो सकते हैं। अगर उनका नंबर नहीं लगता है फिर दोबारा अगले किसी यानी कि थीम पर गाने भेज सकते हैं। एक बार थीम मैं फिर बता देना चाहता हूँ, और थीम के शब्द हैं वो है यानी कि सागर, दरिया, चाहत, पर्दा, पंडित, दुपट्टा, ओढ़नी, चैन, इकरार और लव। इन शब्दों पे ही गाने भेजने हैं फिलहाल। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी साली, सॉरी सीधी साधी भोली वाली, जानम रुक जाना। राजेश कुमार जी भी हैं, और पता नहीं कौन कौन से दोस्त हैं। इंजॉय कीजिए इस गाने को, फिर आते हैं।

और बता दूं इसी गाने की डिमांड हमारे यानी विष्णु यानी कि चंद्र जी ने भी किया था, लेकिन किसी एक का ही गाना शामिल होगा क्योंकि अगर दो दोस्त भी भेजते हैं तो एक का ही काउंट करूंगा मैं। और इस गाने के लिए मैं काउंट ऑलरेडी कर चुका हूँ राजेश कुमार जी का, कोई बात नहीं है, विष्णु जी दूसरा गाना भी भेज सकते हैं।

वेलकम बैक। और हम ऐसे जुड़ चुके हैं अंगद मिसाल जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं क्या खूबसूरत गाना है और प्रोग्राम का आगाज भी बहुत ही शानदार हुआ है, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और संजय पटेल जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग जी, बिल्कुल। और अरुण मंडल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रकाश धोनी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं सभी दोस्तों को, नमस्कार कह रहे हैं। गजन अंजलि सिंह को हरे दुपट्टे वाली सीधी शादी भोले भाली रुक जाना ओके। और दूसरी बात के अगला जो डिमांड है वह हमारे बीरबल बघेल जी का है। बीरबल बघेल जी के साथ साथ और भी दोस्त हैं, लेकिन एक ही मैं काउंट करूंगा बीरबल बघेल जी का। और उनका गाना बहुत ही प्यारा है, दुपट्टा सड़क रहा है, बिल्कुल दुपट्टा सड़क रहा है और मेरा दिल धड़क रहा है भाई। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: मोहब्बत।
1: बिल्कुल दुपट्टा से लग रहा है और मेरा दिल धड़क रहा है भाई। और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और लिखते हैं कि कौन कौन से आज के शब्द हैं। जी शब्द हैं सागर, दरिया, चाहत, पर्दा, पंडित, दुपट्टा, ओढ़नी, चैन, इकरार और लव। इन शब्दों पे गाने भेजने हैं। और दो दुपट्टे के गाने हो चुके हैं, एक और गाना होने वाला है अभी फिलहाल। और यहाँ पर राजेश कुमार लिखते हैं कि थैंक यू मन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और सोनू पटेल जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि मजा आ गया सर जी, सॉन्ग सुन के वाह क्या गाना है जी, बिल्कुल। और हमें दत्ता करंदी लिखते हैं अजय भगत जी, सभी का गाना बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। और संध्या पटेल लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग, ओके जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि बीरबल बघेल जी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और सैयद यूनुस जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम कहते हैं आपका भी। और बीरबल बघेल जी क्या कहते हैं?
2: हेलो आदरणीय अमन सर जी, नमस्कार। और इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे मेरे एक एक श्रोता भाई बहन को भी बीरबल बघेल का प्यार भरा नमस्कार। इस वक्त मैं अपनी फरमाइश का सॉन्ग सुन रहा हूँ। आदरणीय अमन सर जी, आपने मेरी पसंद का गाना सुनवाया, आपका दिल से शुक्रिया। आपका बीरबल बघेल भितरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश से, थैंक यू।
1: धन्यवाद देते हैं आपको फीडबैक देने के लिए। साथ ही साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं एकदम झकास गाना है, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। और यहाँ पे बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि फीडबैक देने वाले बहुत बहुत यानी कि साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ मैं। और प्रकाश दोने जी लिखते हैं कि सुपरहिट गाना प्ले हुआ है जी, अगला जो डिमांड है वो भी दुपट्टा पे ही मैं प्ले करने वाला हूँ। और दुपट्टा में ये अच्छा गोपाल यानी के परिदार का भी यही गाना था, लेकिन कोई बात नहीं, एक फिर से दोबारा भेज सकते हैं क्योंकि एक आदमी एक ही गाने की डिमांड कर सकता है। ओके हाँ, एक यानी के जो गुरु फरमाइश होती है हमारे सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी और सैयद यूनुस जी, इन सब का तो एक ही गाना होता है, तो इन लोगों के लिए कोई बात नहीं है, इन लोगों का ही एक ही गाने को मैं प्ले करने वाला हूँ, दुपट्टा तेरा नौ रंग दा। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक। तो यानी दुपट्टा पर तीनों गाने हो चुके हैं, अब बचता है वो सागर दरिया चाहत पर्दा पंडित ओढ़नी चैन इकरार और लव। तो अगला जो गाना प्ले होने वाला है वो लव पर प्ले होने वाला है। इसके बाद से देखते हैं, सोनू गौतम जी लिखते हैं कि गाने बहुत ही बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं अमन भाई जी, वेलकम है आपका भी। और अशोक कुमार जी पटना से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और निर्मल राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि सुप्रभात अमन जी, आनंद आ गया आज के तो गाने सुनकर, मन प्रसन्न हो गया है। मैं भी फरमाइश करता हूँ जी करते रहिए उधर सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, अगर आज के थीम पे होंगे तो कोशिश करूँगा बजाने के लिए। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि भाई सभी भाइयों की जो पसंद है बहुत ही शानदार चल रही है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दुपट्टा तेरा नौ रंग दा, अच्छा लगा इस गाना सुनकर। ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: अर्जे अमन सर जी नमस्कार, नमस्ते जी, हम लोग का ग्रुप का गाना आप शामिल कर दीजिए, लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू सर, अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद,
0: वेलकम। थैंक यू। और साथ ही साथ यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और अजय भगत जी लिखते हैं कि थैंक यू दिल से। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ यानी प्रियंका जी का है, काटे नहीं करते दिन ये रात, आई लव यू। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल काटे नहीं कटते हैं दिन ये रात। और भाई मैं भी कहता हूँ आई लव यू मेरी सुंदरता की मुद्दत जी, आई मिस यू एंड ये फीडबैक।
1: थैंक यू आरजे अमन सर जी, हमारा गीत प्ले करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सैयदीन सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी,
0: वेलकम जी आपका भी। और रणवीर सिंह जी, जेठालाल जी लिखते हैं कि काटे नहीं कटते दिन ये रात गाना मुझे अच्छा लगा। ओके, और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि मिस्टर इंडिया का गाना मुझे बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, मजा आ गया सुन के। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि धन्यवाद देते हैं इतना बेहतरीन नगमे के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि काटे नहीं कटते दिन ये रात गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लव यू वाला। और अमन सर जी धन्यवाद देते हैं प्रियंका जी को। ओके जी, और राजेश कुमार लिखते हैं कि ये प्रियंका जी की पसंद सुपरहिट लगी है, धन्यवाद देते हैं। और सहिदा सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है, और लिखते हैं मिस्टर इंडिया का गाना शानदार लगा, मजा आ गया। सोनू गौतम जी का गाना सोनू पटेल जी सुनना चाहते हैं, लव तुझे लव मैं करता हूँ।

बिल्कुल तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि सोनू पटेल जी का गाना एकदम बेहतरीन, लव तुझे लव मैं करता हूँ, अच्छा लगा सुन के। और प्रियंका जी लिखते हैं आई लव दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच मेरा ये गाना प्ले करने के लिए। दाता जी लिखते हैं सोनू पटेल जी का गाना मुझे बहुत ही शानदार लगे, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बरसात मूवी का। और बीरबल बघेल लिखते हैं कि लव तुझे लव मैं करता हूँ, बहुत ही ये प्यारा गाना है और प्यार भरा गाना है। और बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि सोनू पटेल जी का डिमांड शानदार है। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लगा, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। और संजय पटेल लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। अगला जो डिमांड है अकबर खान जी का सुनना चाहते हैं, अच्छा इंडिया जानता है कि हम

और अगला जो गाना प्ले होने वाला है वो यानी कि पर्दा पर प्ले होने वाला है। तो यानी पर्दा पर एक गाना आया हुआ है, यानी पर्दा है पर्दा। आप दूसरा दो गाने भेजने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, बहुत सारे गाने हैं, ढूंढते रहिए जल्दी।

0: चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता। वैसे बता दूं कि अगला अभी जो यानी कि शब्द बचे हुए हैं वो है सागर दरिया चाहत और ये पर्दा पंडित ओढ़नी चैन इकरार। और तो अगला जो मैंने कहा है कि अगला जो यानी कि मतलब इन प्ले होंगे वो यानी पर्दे पर गाने प्ले होने वाले हैं और यानी कि पर्दा पर एक ही गाना आया हुआ है। ओके तो फिलहाल मेरे पास फीडबैक भी आए हुए हैं। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि अब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम्प हो गया और सेकंड टाइम में लव हो गया, गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। और बीरबल बघेल लिखते हैं कि वाह क्या खूबसूरत गाना प्ले हुआ है, धन्यवाद देते हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम्प हो गया, गाना एकदम लाजवाब है और हमारे साथ बहुत धांसु धांसु गाने चल रहे हैं। जी बिल्कुल धांसु धांसु गाने आए हुए हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दिल क्या चीज है जानम जान तेरे नाम करता है, अखा इंडिया जानता है कि हम तुम पे मरता। अकबर खान जी का धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और संजय पटेल लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। और बाबूलाल जी लिखते हैं, बाबूलाल अंजाना जी, कि अकबर खान जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए बहुत शुक्रिया अकबर जी। राजू राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ अशोक कुमार जी का है और सुनना चाहते हैं यानी कि पर्दा है पर्दा।
1: क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है, दिल क्या चीज है जानम अपनी।
0: अशोक कुमार जी एंजॉय कीजिए इस गाने को।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

0: जी हमारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये निक्के परवेज आलम जी। और परवेज आलम जी आप निक्के अभी मुझे कोई और सा गाना भेज सकते हैं? बिल्कुल, आपने दूसरे नंबर पर भेजा था, मैं ये जानता हूँ आपने दूसरे नंबर पर भेजा था, लेकिन चूंकि यानी कि प्रोग्राम को मतलब कैसे उठाना पड़ता है और यानी कि कौन सा गाना मतलब कहाँ पे फिट बैठता है, मैं इस तरह से प्रोग्राम को पेश करता हूँ। ऐसा नहीं कि अभी जैसे अभी एक गाना आया हुआ है मैं अभी प्ले करूँगा, ऐसा नहीं कि जिसने सबसे पहले भेज दिया मैं उनका गाना प्ले करता हूँ, थोड़ा सा मेरा प्रोग्राम करने का अंदाज अलग होता है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपको नज़रअंदाज करता हूँ, चाहे आपका मैं आपके मैसेज को साइड करता हूँ, चाहे कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप लोग मेरे लिए सभी एक समान है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अभी अभी किसी गाना अभी प्ले हो जाता है चाहे बाद में प्ले होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, गाना ही ना सुनना है, दूसरा भेज दीजिए। अगर उस गाने को प्ले, हाँ ये भी कहता हूँ अगर समय मिलेगा तो अंत में जितने दोस्तों के गाने बचे होंगे, जैसे कि यानी कि अभी अभी बहुत से हमारे असलम राणा जी अभी यानी कि यहाँ पे गाना भेजे हैं, जो गाना हो चुका है यानी वो शब्द हो चुका है, फिर भी उन्होंने अभी अभी भेजा है, अगर मुझे समय मिलेगा तो उनके गाने को भी मैं प्ले करूँगा, अभी नहीं जब समय मिलेगा तब लास्ट में। ओके, और फिलहाल मेरे पास विवेक आए हुए हैं और यहाँ जुड़ चुके हैं यहाँ पे पूजा भास्कर जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं पूजा भास्कर जी। और काजल झक्कास जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के प्रोग्राम को। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि अशोक कुमार जी के पसंद लाजवाब बेहतरीन लगा है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये पर्दा वाला गाना मुझे अच्छा लगा है। ओके जी, और बबीता जी लिखते हैं नमस्ते मस्ता जी, मैं भी जुड़ के हैं जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बबीता जी आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि यहाँ तेज बारिश हो रही है और हम सभी दोस्त आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और मेरी वाइफ को बोल दीजिए, अच्छा मैंने यानी कि वाइफ को बोल दिया है ये भजिया बनाने के लिए, दीपक है, अच्छा जी तो हमको भी भेज दीजिएगा भजिया, मैं भी खाऊंगा। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त अशोक देशमुख सॉरी अशोक कुमार जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज़ में पर्दा है पर्दा। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि पर्दा है पर्दा गाना सुपर हिट लगा है। और अकबर खान जी लिखते हैं वाह क्या बात है, अमन जी मेरी फरमाइश को आपने प्ले कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सुनकर गाना तो ये मज़ा आ गया पर्दा है पर्दा। राय पर्वत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी राय पर्वत जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि सुपर डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि ये मेरा गाना 1977 के पैदान नंबर 2 पे बया था, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। साथ ही साथ ये प्रियंका जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं इनके भी।
1: हेलो
0: हेलो
1: अमन जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग,
1: वैसे तो मैंने लव सॉन्ग पे गाना सुनने की रिक्वेस्ट की थी जो कि आपने मुझे सुनाया, पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के चक्कर में ये सॉन्ग में गा नहीं पाई।
0: अच्छा अच्छा कोई बात नहीं,
1: तो इसकी कुछ लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाइए सुनाइए।
1: और ये सॉन्ग मेरे प्रेम पुजारी जी के लिए भी
0: ओके।
1: है।

नशा मेरा छलका छलका, रूप तेरा हल्का हल्का, नशा मेरा जब आही।

0: बहुत अच्छा गाया आपने।
1: आई लव यू।
0: और प्रियंका जी लगा
1: क्यों इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए,
0: और लगा कि इस गाने को अपने दिल से गाया है। सच में बहुत अच्छा गाया आपने। और यहाँ पे संध्या पटेल लिखते हैं कि ये ओल्ड इज गोल्ड गाना सुन के तो मजा ही आ गया, प्रोग्राम भी मस्त चल रहा है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि अच्छा जी ओके, यहाँ मत भेजिए, आपको भेजना होगा तो वहाँ भेजना होगा, यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। फिलहाल अगला डिमांड राजू राजेश कुमार जी का सुनना चाहते हैं, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं।

0: बिल्कुल, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। राजेश कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी अपने अपने जमाने का हिट गाना है और मेरा गाना को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि मेरी मम्मी भी गाना सुन रही है जी, तो उनका भी वेलकम है।
1: नहीं है जहां मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो।

0: पहले बताते बारात लेके आते हम प्यार करने वाले हैं कोई वैर नहीं अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई वैर नहीं
1: बिल्कुल ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो और बाबूलाल जी से के राजू राजेश कुमार जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये पर्दा हटा दो गाना बहुत अच्छा लगा है और गजानंद जी लिखते हैं कि ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो एक फूल दो माली का लाजवाब गाना सुनकर मजा आ गया है और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे किन का है बाबूलाल अंजाना जी का है चांद से पर्दा कीजिए सच में चांद से पर्दा कीजिए एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल चांद से पर्दा कीजिए ऐ मेरे हुजूर। और यहाँ पे फिर बैग भी आए हुए हैं। यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही नाइस नाइस पसंद है जी बिल्कुल। और अशोक कुमार लिखते हैं कि वो वाला गाना यानी कि ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो 1969 के पैदान नंबर 10 पर ये पर्दा हटा दो गाना बजा था सर जी, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि जी इतना जल्दी नहीं, जब आएगा तो देखा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि चांद से पर्दा कीजिए, बहुत एकदम झक्कास गाना है, ओके। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि धन्यवाद देते हैं इतना बेहतरीन नगमे के लिए। साथ ही साथ संध्या पटेल जी लिखते हैं कि कहाँ से लाऊं वो लव्ज जो जो सिर्फ तुम्हें सुनाई दे और दुनिया देखे चांद और सिर्फ तुम मुझे दिखाई दे, बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि गजब का गाना, शानदार पसंद है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड अशोक पाल जी का सुना देता हूँ आपको, और ये सुनना चाहते हैं तेरे चाहत के दीवाने हुए हम।

0: कि मुझे इन चाहत के गाना ज्यादा प्ले करना पड़ेगा थोड़ा।
1: तेरी चाहत के दीवाने हुए हम,
0: क्योंकि बहुत सारे गाने इन चाहत पे आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा चाहत पे दो गाने ज्यादा मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी कि तीन के बदले यानी पांच गाने प्ले करने वाला हूँ। बीरबल बागे लिखते हैं कि अच्छा ये खुशियां मना रहे हैं गाना सुन सुन के, बहुत खुश हो रहे हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि इन पूरा देश आपसे जुड़ रहा है और पूरा देश के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, सभी लिसनर को आप एक माला में बांध रहे हैं और उस माला का नाम है रेडियो हॉट स्टार। मैं रेडियो हॉट स्टार की टीम को पूरा दिल से मैं सलाम करता हूं और आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपकी सफलता मिल रही है। ओके, धन्यवाद देते हैं आपको और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: हेलो सर, ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था और इसकी दो जो लाइनें हैं वो भी बहुत अच्छी थी।

0: बहुत ही सुन्दर सॉन्ग था
1: ये। धन्यवाद देते हैं आपको। और रॉय पर्वत जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और संध्या पटेल लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है जी बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत ही सुपर डिमांड है, थैंक यू सो मच। और बीरबल बघेल लिखते हैं गजब का गाना चल रहा है जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ एस के मोहम्मद इन ताहिर जी का है, और ये सुनना चाहते हैं चाहत की खुशबू। एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल, और एक और गाना है इसके बाद कि चाहत ना होती कुछ भी ना होता, बहुत दोस्तों का यही डिमांड है। मैं कहता हूँ कि पहले आप लिस्ट में देखिए कौन कौन से गाने की डिमांड हो चुकी है, उसका आप करें, लेकिन देखते नहीं है, सीधे गाने की डिमांड करते, कोई बात नहीं है। अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ चाहत ना होती कुछ भी ना होता, उसके बाद एक और गाना प्ले होगा चाहत पर के मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत पर, यानी कि पांच गाने चाहत पर होने वाले हैं। और आमना खान जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये चाहत खुशबू वाला गाना तो दिल छू लिया, धन्यवाद। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहती हैं।
1: हेलो सर
0: जी, बोलिए।
1: सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, पर मैं क्या है ना कि पहले सॉन्ग सुनती हूँ,
0: अच्छा,
1: उसके बाद फिर मैं अपना सॉन्ग गाती हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसलिए थोड़ा सा मैं लेट मैसेज करती
0: हूँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं।
1: और पहले सॉन्ग चल जाता है उसके बाद मेरा मैसेज आता है, पर क्या कर सकते हैं, सॉन्ग गाना भी तो जरूरी है।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: और इसके लिए जो आपने तेरी चाहत में दीवाने हुए हम, ये मैं गाऊंगी।
0: अच्छा, गाइए गाइए।
1: औरों के तो साथ जब करे बात,
0: अच्छा,
1: जल जाती है मेरी जान,
0: ओहो,
1: तुझ पे भी तो यार मरते हैं हजार, तुझको छुपाऊं
0: कहां,
1: औरों के तो साथ जब करे बात, जल जाती है मेरी जान, तुझ पे भी तो यार

0: दरम। सॉन्ग सभी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और सभी सॉन्ग पसंदीदा हैं, जो कि मेरे सभी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतने अच्छे सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू।
1: और आप गा भी बहुत अच्छा रही हैं। ओके, और यहाँ पे संध्या पटेल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जी। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: अरजे अमन सर जी, बोलिए, बहुत बोलिए। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और शाहिद जी इतना अच्छा गाना सुना है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा प्रोग्राम चलाने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका है। और गोपाल पटीदार जी जुड़े हुए हैं, वेलकम है गोपाल पटीदार जी। और यहाँ पे लिखते हैं पूजा भास्कर जी, वाह वाह यानी प्रियंका जी वाह, बहुत ही शानदार गाया आपने, और एक भी गाना छोड़िएगा मत सब। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो चाहत ना होती कुछ भी ना होता, बिल्कुल चाहत ना होती कुछ भी ना होता, बहुत से दोस्तों की डिमांड है इसमें। और जैसे कि मैं कुछ कुछ नाम देना चाहूँगा, एक एक करके नाम जैसे मेरे सामने आएंगे मैं बताऊँगा। हाँ, इस गाने में मतलब शामिल गोविंदा खंडाते जी, और बता

0: और बहुत से दोस्तों को जिनका यानी कि चाहत पे गाना नहीं प्ले हुआ है वो दूसरे शब्द पे गाने भेज सकते हैं। और शब्द है अभी सागर दरिया और ये पंडित, यानी पंडित पे दो गाने आए हुए हैं, एक गाने और चाहिए, ढूंढते रहिए, बहुत सारे गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं। और यानी कि उसके बाद उड़नी भी बाकी है और चैन बाकी है और इकरार बाकी है, इतने शब्दों पे गाने होने वाले हैं। दत्ता जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही सुपर टूपर हिट लग रही है और कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संध्या पटेल लिखते हैं कि चाहत न होती कुछ भी ना होता, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। रॉय पर्वत जी लिखते हैं कि अमन जी जी अगर उधर आपका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा, थीम पर रहेगा। तो रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं चाहत न होती कुछ भी ना होता, मजा आ गया सुन के। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि ये मिली जुली डिमांड बहुत अच्छी लगी है और ये क्या कहती है, सुन लेते हैं इनका भी।
1: सर सभी सॉन्ग इतने अच्छे हैं कि हाँ, सभी गाए जाएंगे
0: आप से रहा नहीं जा रहा है। हाँ, मुझे पता है
1: ये सॉन्ग भी मैं गाऊंगी।
0: अच्छा गा दीजिए
1: वो भी स्पेशल पूजा जी के लिए।

0: अच्छा
1: पूजा जी ना हो
0: वाह वाह वाह क्या बात
1: स्पेशल पूजा जी के लिए सॉन्ग सुनाया
0: ओके
1: थैंक यू
0: और अमिताभ सिंह जेठालाल जी के लिए ये गाना

लिखते कि चाहत ना होती कुछ भी ना होता, सभी साथियों के पसंद लाजवाब। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ये क्या कहते हैं,

0: अमन भैया नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा अमन भैया, आपको आपकी इतनी प्रस्तुति अच्छी करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अपना फीडबैक देने के लिए। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, बहुत ही पसंद आया गाना। और प्रकाश दोनों जी लिखते हैं, अमन सर जी सभी श्रोताओं की पसंद लाजवाब चल रही है। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि ये दुपट्टा पर गाना हो चुका है, दुपट्टा पर गाना नहीं हो सकता है अब। और मैं यहाँ पे यानी कि पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि लिखते हैं कि थैंक यू, यानी कि ये प्रियंका जी। अच्छा ओके, अगला जो यानी कि पंडित पर गाना प्ले होने वाला है, और यानी कि पंडित पर गाना मैं यानी प्ले करने वाला हूँ। सबसे पहले यानी के नाम है उनका, यानी नाम है उनका, यानी कि सोनू गौतम जी हैं, और यानी कि परवेज जी हैं, और भी मैं बता रहा हूँ, पंडित जी हमारे यानी कि परवेज आलम जी भी हैं, और भी बहुत से दोस्त हैं। एक एक करके नाम मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल ये गाना सुनिए।

0: बिल्कुल पंडित जी ने मेरा हाथ देखा था भोपाल में, आप पता ना कहाँ गायब हो गए घर थोड़े जी। और गजानन जी लिखते हैं कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में गाना, मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद। और संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं संतोष गौंड जी। और यहाँ पे रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये पंडित जी ने देखा था हाथ मेरा भोपाल में, मजा आ गया सुन के गाने को। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि नैनीताल हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर, अच्छा सच में, तब तो घूमने जाते होंगे ना। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और साथ ही साथ यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल। और राय पर्वत जी लिखते हैं अमन जी मैंने भी इकरार पर भेज, अच्छा भेज दीजिए, देखते हैं मैं कोशिश करूंगा। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि अमन सर जी आज के तो कार्यक्रम में सभी दोस्तों ने 4 चांद लगा दिए इनके बड़े गाने भेजकर। और सुनील कुमार लिखते हैं कि हमारे सोनू गौतम जी की पसंद लाजवाब लगी है, और सभी दोस्तों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा अच्छा सॉन्ग सुनवाने के लिए। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि अभी अभी कौन से ट्रेक का रिक्वेस्ट बाकी है जी, मैं आपको बताता हूँ अभी, और ये फीडबैक सुन लेता हूँ पहले।
1: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
1: मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया पंडित जी का, तो अमन सर जी पंडित घर तोड़े जी गए हैं नैनीताल,
0: अच्छा,
1: अनिल कपूर और जूही चावला की शादी करवाने के लिए।
0: अच्छा, अच्छा।
1: वो बहुत बिजी है अभी, और अभी उसने शादी का सीजन चल रहा है तो वो शादी करने में बहुत बिजी है, और सभी की शादी करवा रहे है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो जल्द ही आपके रेडियो हॉटस्टार को तो जल्दी जुड़ेंगे शादी करने के बाद।
0: अरे बोलिए,
1: धन्यवाद,
0: मेरी भी जल्दी से शादी करवा देना। गजानन जी लिखते हैं कि इन पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था भोपाल में, गाना अच्छा लगा है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि जी जी जी आते हैं भोपाल में, आ रहे हैं। अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि काजल झक्का जी का है। काजल झक्का जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

हम तो यानी 5 बार गए हैं नैनीताल जी, आते हैं कभी, हम भी समय मिलता है, लेकिन मिलता है तभी का है मेरे पास। दत्ता जी लिखते हैं कि काजल जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि सुपर चॉइस है काजल झा काजी की। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि यानी पंडित जी वाला गाना मुझे अच्छा लगा है। और आमना खान जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही शानदार है जी, बिल्कुल हम तो वही करने वाले हैं। और प्रियंका जी लिखते हैं कि वाह ये गाना मुझे बहुत मस्त लगा है, मजा आ गया सुन के। थोड़ा सा सुनते हैं और

बिल्कुल, और बहुत से दोस्तों के मैं बता दूं कि अभी जो गाना प्ले होने वाले हैं वो है यानी कि सागर, दरिया और यानी ओढ़नी, चैन और इकरार, इन यानी कि पांच शब्दों पर ही गाने बाकी हैं, वो प्ले होने वाले हैं। और यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि मुझे भोजपुरी गाना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है, इसके बाद हिंदी ही आने वाला है पूरा। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर, वाह क्या च्वाइस है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने को सुनवाने के लिए। और साथ ही साथ रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये पंडित जी बता वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि गाना सुनने का असली मजा तो सबके साथ ही है, रेडियो हॉट अटैक के साथ जो दीवाना बनाने, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और जी बिल्कुल, और ये लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा ये भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि पंडित जी बताइए ना ब्याह कब हुई, शानदार भोजपुरी गाने के लिए धन्यवाद देते हैं अब्दुल जब्बार अंसारी जी को। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, मजा आ गया सुन के। और काजल झका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा भाई गाना बजाने के लिए। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि भोजपुरी गाना बहुत ही शानदार लगा है, इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो ओढ़नी पर प्ले करने वाला हूँ। ओढ़नी पर मुझे सबका एक ही दिखाई दे रहा है, यानी कि तेरे नाम का ओढ़नी वाला गाना एक ही सभी का। आप लोग दूसरा गाना भी भेजिए, फिलहाल मैं ये गाना प्ले करता हूँ। और ओढ़नी पर बहुत दोस्तों ने एक ही गाना भेजा हुआ है, अगला गाना भेजिए। और ओढ़नी पर बता दूं कि कौन कौन से दोस्तों ने गाना भेजा है, मैं आपको एक एक करके नाम बताते जाता हूँ बीच बीच में। जैसे कि सुभाष तिवारी,

बिल्कुल फीडबैक भी मेरे पास आया है। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, और गजानन जी लिखते हैं कि नाचो उड़नी उड़ के आज गाना सुन के मजा आ गया है। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी अच्छा लगा है, ओके। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि सुपर से ऊपर वाला गाना है, और ओके। और यहाँ पे सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है, गाना आपका भी मेरे पास पहुँचा है लेकिन आज नहीं प्ले हो पाएगा, आप दूसरा गाना भेज सकते हैं। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि हमें तुमसे हो गया प्यार, मजा आ गया गाना सुनकर। सुनीता गोपी जी से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात का अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे मिसाल अंगा जी का है। मिसाल अंगा जी सुनना चाहते हैं ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

बहुत प्यारा गाना है सच में, इस गाने ने तो दिल जीत लिया। और अगर जो लोग नहीं होते तो सॉन्ग विनर जरूर बनाता मैं आपको। और यहाँ दीपक गायकवाड़ लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम तो नींद उड़ा देते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि आपने कौन सा गाना भेजा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी तक आपका कोई गाना मुझे दिख नहीं रहा है। और संदीप पटेल जी लिखते हैं अमेजिंग सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और रणवीर जी लिखते हैं कि ओढ़नी ओढ़ली ये वाला गाना बहुत अच्छा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं ओढ़नी ओढ़नी बहुत ही लाजवाब गाना है, सुनकर मजा आ गया है। और शिल्पा बेन लिखते हैं थैंक यू सो मच अहमद जी मेरा रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए। और अहमद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम अहमद जी। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ रितु जी का, और रितु जी सुनना चाहती है ओढ़नी का रंग पियर। बिल्कुल ही तो हम

और दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज के जो यानी कि शाम का स्टार यानी मूडी चॉइस जो शो होने वाला है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आज आप जो गाने की रिक्वेस्ट करेंगे शाम के 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच, तो उसमें आपको आज भेजना होगा यानी कि साइड हीरो पर फिल्माए हुए गाने। जैसे कि अगर फिल्म दिल तो पागल है को लेते हैं, उसमें साइड हीरो थे हमारे अक्षय कुमार जी, तो जैसे अक्षय कुमार का गाना उसमें आएगा दिल तो पागल है, वो भेज सकते हैं। जैसे कि यानी दीवाना में जो मेन हीरो थे हमारे वो ऋषि कपूर जी थे, साइड हीरो थे हमारे शाहरुख खान जी, तो यानी कि साइड हीरो पर फिल्माए हुए गाने पर ही आपको आज भेजना होगा, समझ गए ना।

बिल्कुल उड़नी का रंग पियर। ओके, और यहाँ पे बाबूला जी लिखते हैं कि रितु जी का डिमांड बहुत प्यारा है, और गजानंद जी लिखते हैं कि उड़नी का रंग पियर, भोजपुरी शानदार गाना सुनकर मजा आ गया। और रणवीर सिंह जेठला लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर हमारे गजानंद सरोकार जी का जो गाना है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, और दिल ने दिल से इकरार किया। इंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं गाना बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं अमन जी को प्यार भरा नमस्कार, साथी को डिमांड प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं दिल ने इकरार किया, तो सुपर एक्सलेंट सॉन्ग है जी बिल्कुल। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना लगा है, मजा आ गया। बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानंद जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो राय पर्वत जी का है, और एक साहब और भी इस गाने में शामिल होने वाले हैं। इंजॉय कीजिए इस गाने को, इकरार हो ना जाए।

बात है। और यानी पूजा भास्कर जी और यानी के कैना जी हमारे यानी के लाइव चैट में धमाल मचाए हुए हैं लोग।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे निर्मल राय जी लिखते हैं कि अजय भगत जी और दिलशाद आलम जी और जुबैर आलम जी और चंदन जी और रजक जी, गणेश सिंह जी, सोनू भगत जी, पंकज अग्रवाल जी, अखिलेश झा जी और नरेश कुमार जी और सभी दोस्तों के लिए लिखते हैं कि तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी और उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। ये किशनगंज बिहार से हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि गाना बहुत अच्छा लगा, इकरार हो ना जाए, और ये फीडबैक भी सुन लेते हैं।
1: हेलो सर, सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और ये सॉन्ग मैं सुनाना चाहती हूँ।
0: हाँ, सुनाइए।
1: दुनिया चले ना चले तुम मेरे साथ चलना,
0: क्या बात है,
1: ऐसे ही हंसते रहना, यूं ही रहे साथ हाथों में ये हाथ अपना, टूटे ना प्यार का सपना, दिल का सौदा सौदा, एक बार किया।

0: सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू।
1: वेलकम जी, और आपने गाया भी बहुत अच्छा। गजानंजलि लिखते हैं, हमारे गीत को पसंद करने वाले दोस्तों को भी धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला डिमांड हमारे इन प्रमोद कुमार जी का है, और एंजॉय कीजिए इस गाने को।
2: पागल
3: पागल, अरे पागल है तो पागल खाने जा, मेरे पीछे क्यों पड़ता है।

0: कोई बात नहीं है। और फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, सुनवाते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है सभी भाई। अब इतना अच्छा अच्छा गाना सुनाए हैं और सुनाते हैं, और प्रमोद कुमार जी भी इतना अच्छा गाना सुनाए हैं
0: जी। एक्चुअली उन्होंने गाना भेजा था कुछ और, उनका उनका लिंक उन्होंने कुछ गलत भेज दिया था। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, गाना उनका प्ले कर दिया था। और निकला जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। और दत्ता जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। नंदलाल जी लिखते हैं सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि रणवीर सिंह जेठालाल जी अच्छा लिखते हैं कि ये क्या होती है प्यार की हद, अच्छा लगा गाना सुनकर। और प्रियंका जी लिखते हैं कि मस्त गाना है ये बिल्कुल। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि मैंने आपका रेडियो हॉटस्टार को अपने मोबाइल से डाउनलोड करके स्पीकर से कनेक्ट कर लिया है, और मेरी यानी कि किराना की जो दुकान है वहाँ पे सभी कस्टमर आते हैं, वो सभी आपके प्रोग्राम को सुनते हैं और मज़ा लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ आमना खान जी का, आमना खान जी के साथ साथ इसी गाने में है शायद दत्तक करम जी भी, शायद उनका भी यही गाना होगा, आई होप। इंजॉय कीजिए गाने को।

वेलकम बैक। और यहाँ पे दत्ता जी लिखते हैं धन्यवाद, रणवीर जी लिखते हैं कि नींद आपको मिला वाला गाना अच्छा लगा है, और अश्विता बेन लिखते हैं कि चैन आपको मिला, सुपर सॉन्ग है, सुपर सुपर शान। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे नाम है गुड़िया देवी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं गुड़िया देवी जी, लिखते हैं वाह बहुत ही प्रोग्राम होस्ट करने का अंदाज, मजा आ गया। अगला जो डिमांड है अच्छा, और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि आप कौन सी जड़ी बूटी का सेवन करके प्रोग्राम करते हो, अच्छा ओह माय गॉड। आमना खान लिखते हैं कि थैंक यू सो मच और संडे को फंडे बनाने के लिए, मजा आ गया, मेरी फरमाइश को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरबजीत जी का गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, इंजॉय द ट्रिप।

न जाने कहाँ दिल खो गया है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि मस्त मस्त मस्त गाने हैं, सभी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हुकुमचंद जांगर जी जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जो शाम का 6 बजे प्रोग्राम होगा उसमें जो साइड हीरो होंगे, मतलब उन्हीं पर उन्हीं के गाने होंगे। जी बिल्कुल, जो यानी मेन हीरो होंगे उन पर, यानी फिल्म में मेन हीरो होंगे उन पर जो भी मतलब फिल्माए हुए गाने नहीं होंगे, जो साइड हीरो उनके साथ में जो गाने यानी गाए होंगे मतलब उस फिल्म में, उनके गाने भेजने हैं आपको। जी ओके, समझ गया ना, सिर्फ यानी साइड हीरो वाले ही गाने भेजने हैं, वो कोई भी फिल्म हो सकता है। मतलब फिल्मों में जो हीरो वहाँ पे साइड हीरो के रूप में काम, या हीरोइन भी हो सकती है, जैसे यानी कि बाजीगर फिल्म में वो यानी शिल्पा शेट्टी वहाँ पे साइड हीरोइन के रूप में काम किया है, तो उनका भी गाना भेज सकते हैं। वो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने वगैरह वगैरह, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि मुझे नींद ना आए, गाना अच्छा लगा। ओके, और हेमलाल निशा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि मुझे नींद ना आए, गाना अच्छा लगा है। राधाकृष्ण को लिखते हैं कि ये बहुत ही प्यारा डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और गुड़िया देवी जी लिखते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू काइंडली राम लखन मूवी, अभी तो ये थीम पे नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि दिल खो गया, गाना अच्छा लगा। अगला डिमांड है वो पूजा भास्कर जी का है और सुनना चाहती हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: अब दो वर्ड बचे हुए हैं, वो है सागर और दरिया। इन पर पहले गाने प्ले हो जाते हैं, अगर समय मिलता है तो और भी दोस्तों गाने को मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा। और अब मैं सागर पर चलता हूँ और सागर वाले गाने मैं प्ले करूंगा, लेकिन फीडबैक दिया हुआ है शामिल करने के बाद।
1: सर, सभी सॉन्ग ही बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा है जो कि मैं सुनाना चाहती हूँ।

0: पूछो जरा पूछो क्या हाल है। हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या, रोग सताए क्या, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। थैंक यू।
1: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, अच्छा लगा है। और यहाँ पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि मेरे गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, अभिषेक तिवारी जी का है शायद ये गाना। और इनके बाद भी इस गाने में और भी लोग हैं, नाम मैं लेते रहूंगा। इंजॉय कीजिए इसको।

0: बिल्कुल सागर से गहरा है प्यार हमारा। और यहाँ पे रणवीर सिंह जी जेठाला लिखते हैं कि सागर से गहरा है प्यार हमारा, बहुत अच्छा गाना लगा है मुझे। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि सागर से गहरा है प्यार, मेरे भी यही फरमाइश थी। अच्छा, तो मैंने नाम तो बहुत से दोस्तों का लिया हुआ है, शायद हो सकता है कि उसमें आप भी शामिल हो। और हेमलाल निशा जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि एसपी वाला सुब्रमण्यम की वॉइस है आपके अमन जी, ओके हाँ अच्छा ऐसा है क्या। और गौरी देवी जी लिखते हैं कि तो आपको वहाँ भेजना है ना सॉन्ग रिक्वेस्ट में, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ये फिर
1: हरे बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया।
0: अच्छा,
1: हरे बोल गोरी बोल तेरा कौन पिया कौन।
0: लेकिन ये अभी कहाँ भेज रहे, मैंने तो ये गाना भी प्ले नहीं किया, शायद फरमाइश नहीं ना भेजी है। फरमाइश भेजना होगा तो शाम के 4:30 बजे से भेजना है, अभी तो भेजना ही नहीं है बिल्कुल। वैसे अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है और सागर किनारे दिल ये पुकारे, यानी के नाम इनका किस्पत राय जी, और किस्पत राय जी के साथ साथ और भी दोस्त हैं उनका नाम मैं लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं गाना सुनवाता हूँ आपको सागर किनारे दिल ये पुकारे।
2: You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India.
0: और इसी गाने में यहाँ पे भाई निशा जी ने बोले भी फिर आपने लिख के भेज दिया, एक गाना में शामिल हुई है ना, रणवीर सिंह जेठालाल भी इस गाने के लिए भेज दिए हैं ऑलरेडी। और देखता हूँ, और ये निर्मल राय जी भी हैं।

0: एक गाना मुझे अभी तक इन सागर पर नहीं आया है, क्योंकि एक गाना मुझे और चाहिए सागर पर, और फीडबैक सुनते हैं।
1: सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे, अमन सर जो मैंने अभी भेजा था वो मैंने सॉन्ग रिक्वेस्ट ही भेजी थी।
0: अच्छा ओके, समझ गया आपकी बात। और प्रियंका जी लिखते हैं कि सागर किनारे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है, और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और रणवीर सिंह केथाला लिखते हैं कि सागर किनारे दिल ये पुकारे गाना अच्छा लगा, इसी बात पर अगला जो

0: थैंक यू सो मच इतने सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: धन्यवाद। और यहाँ पे निकला जी लिखते हैं वाओ ब्यूटीफुल सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे हेमलाल निशा जी लिखते हैं कि सागर आंख वाली अपने गाना पे और अच्छा लग गया मुझे। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि सागर किनारे वाला गाना अच्छा लगा है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम अमन जी, क्या प्रोग्राम चला आज, मज़ा आ गया।
1: थैंक यू।
2: और अभी जो गीत चल रहा है बहुत ही लाजवाब किशोर दा की आवाज़ में, दो लाइन गुनगुना रहा हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या।
1: मजा आ गया।
2: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अमन सर जी की चॉइस सुपर लगी है, थैंक यू सो मच। और प्रियंका जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो सरिता सिन्हा जी और डी आर नरवानी जी का है। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: राधा कृष्ण गोप जी के पसंद पर।
1: हम तुम मिलेंगे, मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

0: से ही अमन सर ये सॉन्ग अभी ये बजा था, बेहद खूबसूरत था।
1: धन्यवाद। और एक गाना तो आपको यानी दरिया से भेजना पड़ेगा, जल्दी से एक गाना दरिया पर भेजिए, चूंकि ये दरिया वाला गाना प्ले हो रहा है।

0: जाएगी, आग लग जाएगी।
1: ओके जी, फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं, बहुत सारे निकला जी लिखते हैं, वाओ ब्यूटीफुल गाना है आर्य अमन जी, और सहिता सुना लिखते कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी
2: सर, ये सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा था, आप तो एक के पीछे एक सारे सॉन्ग इतने अच्छे सुना रहे हो कि बस क्या बोले।
1: बोलिए बोलिए,
2: पूरा प्रोग्राम सुना है कंटिन्यू, वो भी क्योंकि सॉन्ग ही इतने अच्छे थे। और एक ही गाना जो आपने सुनाया है, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनी शाम है क्या, ये मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगी।

0: है क्या सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या।
1: सभी सॉन्ग बहुत ही प्यारे हैं। वैसे बताना चाहती हूँ कि मेरी आंखें भी सागर से कम नहीं है।
2: है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, आपके वो डीपी में दिख रहा है, लेकिन दोनों आंखें नहीं दिख रही हैं, सिर्फ एक आंख थोड़ा सा दिख रहा है, एक आंख उधर हो गया है। अच्छा से डीपी लगाइए तब ना दिखेगा। और हिमलाल निषाद जी लिखते हैं कि गाना अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत अच्छा लगा है। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि हमारा गाना को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम अमन जी।
2: वालेकुम सलाम
3: जी। आज तो क्या बात है, एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं। गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अभी जो गाना चल रहा है बहुत लाजवाब गाना है। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे।
2: है।
3: मैं तुझे प्यार करूंगा

0: देखेंगे सब लोग देखेंगे तो दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए।
1: ओके जी,
0: लाजवाब सॉन्ग,
1: मजा आ गया। और यहाँ पे अरुण मन्नत जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने मस्त मस्त मस्त लगे हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी भी लिखते हैं कि सर जी धन्यवाद देते हैं सभी गाने सुनवाने के लिए। और अगला जो डिमांड है हमारे सरफराज जी का, और यानी के नाम है इनका सिया जी है, और एक और भी है इसमें, यानी कि तीनों दोस्तों की पसंद पर ये गामला दरिया किनारे एक बंगला है। एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल अब और यहाँ पे जाने वाला हूँ मैं। और रघुवीर मोहन जी लिखते हैं कि अकबर जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू अकबर खान जी। अशोक कुमार लिखते हैं कि गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि सर जी सभी गाने बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि दिल में बंद कर दो, दरिया में फेंक दो चाबी, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: सर ये सॉन्ग भी आप सुन लीजिए।
0: अच्छा सुना दीजिए।
1: तुम जो चले गए तो
0: जाना पड़ेगा ना।

0: आज के सारे सॉन्ग इतने बेस्ट लग रहे हैं कि सभी गाए जाएंगे। थैंक
1: धन्यवाद आपका भी MD5 आनंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और आखिरी गाना अब समय हो चुका है, मतलब सभी गाने तो प्ले कर ही दिया करीब करीब आज के। और अब हमारे नीलेश पिरोकार जी का तेरी आंखों के दरिया में उतरना जरूरी था, उसके बाद आई लव माई इंडिया प्ले होगा वो दीक्षा जी का।

0: बिल्कुल, और दीक्षा जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत पहले भेजा था और मुझे मौका नहीं मिला। आई लव माय इंडिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को। और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, मिलते हैं फिर शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।
1: Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आप सभी की आरजे वंशिका, और आज की हूं आज एक और नया शो लेके, जिसका नाम होता है फिल्मी बातें, या कह सकते हैं फिल्मी टॉकीज विद आरजे वंशिका एंड आरजे प्रमाण जी, ओनली ऑन रेडियो गाना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लिसनर्स का रेडियो गाना पे। और मेरे साथ बैठे हैं, अभी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आरजे प्रमाण जी, और स्टूडियो घड़ी में अभी बज रहे हैं 3:08। आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी। कैसे हैं आप सभी? और प्रमाण जी, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे पर लग रहा है कि आप सभी आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लग रहे हैं प्रोग्राम से और रेडियो गाना से। और वंशकार जी ने जैसा कहा, ये प्रोग्राम फिल्मों से संबंधित होता है और ये प्रोग्राम फिल्मी बातों से ही संबंधित है, तो इसी बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आस्ते आहिस्ता आहिस्ता जो श्रोता जुड़ रहे हैं वो भी जुड़ेंगे और श्रोता भी जुड़ते जाएंगे। तो इससे पहले वंशिका जी, अपनी पसंद का कोई गाना खूबसूरत सा सुनाइए। नंबर वन
0: जी, एक मूवी का गाना है जिसका नाम है गुलाम ए मुस्तफा, और इस मूवी के सारे सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट इस मूवी का एक गाना है जो कि दिल के काफी करीब है। कविता किशन मोदी जी के आवाज में है, और गाने की बोल है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। बिल्कुल, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, और ये वाला गाना आप सभी को डेडिकेट करती हूँ। एंजॉय कीजिए। क्या आप सभी को भी नए गाने पसंद हैं, पुराने गाने पसंद हैं, वो भी मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मेरे पास 2-3 लिसनर्स जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत करूँगी। जैसे कि विष्णु चंद्र जी हैं, रोहित सिंह जी हैं, और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ पे क्या नाम है आपका, किरण जी जुड़ चुकी हैं। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है आप सभी। सभी लिसनर्स का बहुत स्वागत करती हूँ आज के फिल्मी गानों में, यानी आज की फिल्मी बातों में। बातें तो होती रहेंगी ना, गाने भी सुनने को मिलेंगे, और एंजॉय कीजिए इस पसंद को। फिर मिलते हैं आप सभी से।

0: बहुत स्वागत है, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का बहुत से स्वागत करते हैं हम। आरजे प्रमाण जी, कैसे हैं आप, फिर से बता दीजिए।
1: मैं तो बिल्कुल सही और झकास हूँ। और
0: अच्छा,
1: आप
0: खास
1: बताइए, आप कैसे हैं? और ये राहुल जी आए हुए हैं हमारे
0: जी,
1: मित्र, कहाँ से
0: बिल्कुल
1: हैं ये मुझे नहीं पता,
0: जी, राहुल
1: लेकिन
0: पासी जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, अजय भगत जी भी हैं, बहुत सारे
1: बहुत
0: मिस्टर।
1: ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये हमारे जो तीनों श्रोता हैं, ये नंबर वन श्रोता है हमारे, और बहुत अच्छा लगता है इनसे बातें करके भी। ये राहुल पासी जी और अजय भगत जी,
0: और
1: कमाल
0: पुष्पत
1: है।
0: रॉय जी भी हैं, पुष्पत रॉय जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है।
1: पुष्पत राय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े, और अच्छा लग रहा है बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले बातें चल रही हैं फिल्मों की, तो फिल्मों के से बातों के साथ ही मैं पुरानी फिल्मों से शुरू करूंगा, और आज आस्ते आहिस्ता आहिस्ता नई फिल्मों तक आ जाऊंगा, और बीच बीच में आपके प्रश्नों के जो जवाब होंगे वो भी दूंगा। और आज अनुष्का जी, इनको ये भी बताऊंगा कि एक
0: क्या बताएंगे?
1: एक बात करते हैं इनके अपने श्रोताओं के साथ, कि जैसे जैसे कोई भी जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे प्रश्न भी पूछूंगा।
0: बिल्कुल, प्रश्न भी पूछेंगे हम, और जवाब देने वाले श्रोता अपनी
1: जो
0: पसंद का गाना सुन पाएंगे।
1: सबसे पहले और सही जवाब देंगे उन श्रोताओं से हम बात भी करेंगे कुछ देर के लिए, और उनकी पसंद का गाना भी सुनाएंगे। तो ऐसा चलेगा आज कुछ ये प्रोग्राम, तो थोड़ा सा हमारे को कोऑपरेट कीजिएगा और मिलिएगा हमसे, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आज मैं सबसे पहले वर्ष का शुरू करता हूँ हरियाली और रास्ता फिल्म के बारे में। ये एक पुरानी और बढ़िया और बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, इसका निर्देशन किया था जी विजय भट्ट जी ने।
0: अच्छा जी, हरियाली और
1: रास्ता।
0: अच्छा जी, इसका कोई गाना भी लेके आए हैं आप?
1: गाने भी एक से एक बढ़िया है, इसी गाने के बारे में प्रश्न भी पूछूंगा मैं भी अपने श्रोताओं से।
0: जी बिल्कुल।
1: तो
0: और
1: इसके जो मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार जी होते थे, और माला सिन्हा जी थी, और साथ में थी जी रीता, जिन्होंने इसमें साई टोल का जो गीतकार थे वो शैलेंद्र और हसरत जयपुरी हुआ करते थे।
0: अच्छा,
1: और एक त्रिकोणीय यानी ट्राइंगल लव स्टोरी थी ये, जिसमें मनोज कुमार होता है, मनोज कुमार जी का नाम होता है शंकर, और माला सिन्हा जी का नाम होता है शोभना। वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बड़ों के बचपन के वायदे और परिवार की इच्छा के कारण शंकर का विवाह रीता यानी शशि किला के साथ तय हो जाता है। शंकर अपने पारिवारिक वचनों को काम मान रखते हुए रीता से विवाह भी कर लेता है, लेकिन आधुनिक विचारों वाली रीता और पारंपरिक मूल्यों वाले शंकर के बीच समान जस चैन नहीं बैठ पाता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब शोभना फिर से उनके जीवन में लौटती है, जिसके रिश्तों की उलझने और बढ़ जाती है। फिल्म पारिवारिक संस्कारों और आधुनिक जीवन शैली के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, ये फिल्म की स्टोरी तो आपने सुनी और शायद देखी भी होगी।
0: जी बिल्कुल, मैंने देखी तो नहीं है प्रमाण जी, पर आपने स्टोरी बता दी ना, उसके मायने पे मैं समझ
1: तो
0: सकते हैं कि मूवी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं यही कहना चाहूंगा, इस फिल्म में काफी खूबसूरत और प्यारे और मधुर गाने हुआ करते थे, और इन गानों को जिन सिंगर्स ने गाया, जिन जिन गायकों ने गाया, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। लता मंगेशकर जी से मुकेश जी थे, और मैं यही प्रश्न पूछना चाहूंगा अपने श्रोताओं से
0: जी,
1: कि इस फिल्म में जितने भी गाने थे उन गानों में से सबसे खूबसूरत प्यारा गाना कौन सा था। सभी लिख के मेरे मित्र भेजेंगे, पर जिस जो हमें
0: हरियाली और रास्ता मूवी में से सबसे प्यारा कौन सा गाना था, है ना?
1: हाँ, कौन सा अच्छा था?
0: ऐसे तो चॉइस ही हो सकती है कि सभी की डिफरेंट हो,
1: लेकिन हमें पता है ना कौन सा गाना सबसे
0: अच्छा था,
1: खूबसूरत था। उस वो गाना अगर किसी ने भेज दिया तो उसको
0: उनका गाना प्ले किया जाएगा।
1: जिन श्रोताओं ने ये गाना भेजा, और वो सबसे पहले उनमें से जिसने भेजा उससे हम बात भी करेंगे और उनकी पसंद का गाना भी सुनाएंगे।
0: अच्छा जी, बातचीत भी करनी है। अच्छा, और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं, वंशिका जी आज प्रमाण जी, मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं है, खास जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे, क्या प्रेम फिल्म की स्टोरी कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में?
1: जरूर बताएंगे, पहले आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए।
0: और यहाँ पे संदीप सुतार जी भी जुड़ चुके हैं गाने के साथ में, आपका भी बहुत स्वागत है। और जुड़ चुके हैं हमारे साथ सोनू गौतम जी, आप सभी का बहुत वेलकम करती हूँ। और चलिए अगला गाना सुनेंगे, बट वो पसंद मेरे पास पहुंची है किन की बताऊंगी मैं, उससे पहले यहाँ पे लिखते हैं राहुल पासी जी, हम भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है राहुल पासी जी आपका भी।
1: राहुल पासी जी, और आप प्रश्न जो मैंने पूछा उसको तो आपको समझ में
0: और आप सभी चाहें तो रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन पे जाके चैट रूम में भी एक्टिविटी एक्टिव रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हम भी वहाँ पे आ रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ, परमार जी भी आ रहे हैं बातचीत करने के लिए और इंजॉयमेंट करते हैं ना, क्योंकि
1: अपनी जो पसंद आपने भेजनी है व्हाट्सएप पे,
0: हाँ पसंद व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फीडबैक व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और रेडियो हॉटस्टार की एप्लीकेशन के चैट रूम में जाके आप सभी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। जी व्हाट्सएप का नंबर बता देती हूँ जो कि है 8404841232 8404841232 और इसका नंबर पे आप सभी फरमाइश या फीडबैक भेज सकते हैं। जब तक मैं गाना सुनाऊंगी जो पसंद है मेरे पास अजय भगत जी की, लिखते हैं गाना सुना है अजय भगत जी के साथ है खुशपत रॉय जी रिटायर्ड हेडमास्टर किशनगंज बिहार से, लिखते हैं गाना सुना है आखिरी खत मूवी का जो कि 1966 यानी कि 1966 में रिलीज हुई थी और गाने के बोल है बहारो मेरा जीवन भी सवार, डेडिकेट करते हैं मुझे अमन जी को और परमा जी को और सभी लिस्टर्स को, तो चलिए सुनवाते हैं।
1: वाह वाह कितना खूबसूरत प्यारा गाना लेके आए हैं हमारे, क्या नाम है श्रोता का?
0: खुशपत रॉय जी और अजय भगत जी मिलीजुली पसंद।
1: खुशपत रॉय जी इनका नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ, अजय भगत जी तो एक्टिव रहते ही रहते हैं
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन जो ये गाना है ये बहुत ही खूबसूरत गाना लेके आए, तो वशिष्ठ जी सुनाइए।
0: सुनवा दिया,
1: इसके बाद ही आप अपने आंसर भी हमें भी देखेंगे।
0: आंसर्स आने लगे हैं बट जो विनर होंगे उनका नाम थोड़ी देर बाद बताएंगे, आप सभी एंजॉय कीजिए।
2: कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना, थैंक यू।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, बहारो मेरे जीवन भी सवारो। जी बिल्कुल, बहार तो आती है ना, और वैसे भी आजकल तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो जीवन को सवारना तो बनता ही है। और यहाँ भी फीडबैक आ चुके हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अजय भगत जी लिखते हैं, वंशिका जी, गाना बहुत ही प्यारा लगा। और जी हम क्यों फीडबैक दें, आप भी भेजिए ना, अब मेरे ख्याल से आपने ये मैसेज किसी और को भेजना था। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना, और विजेता मेरे पास है जो कि है सोनू गौतम जी, जिनका गाना और जो हमने पूछा था ना सवाल, उसका जवाब इन्होंने सबसे पहले भेजा
1: तो
0: है।
1: वंशिका जी किस किस के आंसर आए हैं, उनके नाम
0: बता तो रही
1: बताइए
0: हूँ,
1: शुरू
0: बता
1: तो।
0: तो रही हूँ, बता
1: ठीक
0: तो
1: है
0: रही हूँ।
1: ठीक है ठीक,
0: सोनू
1: बताइए।
0: गौतम जी का है बोल मेरी तकदीर में क्या है, सबसे पहले इनका आंसर है। उसके बाद है संदीप सुतार जी, उसके बाद है सविजीत सेठी जी, अच्छा सविजीत सेठी जी नहीं, विष्णु चंद्र जी हैं और अजय भगत जी भी हैं, यानी बहुत सारे लिसनर्स हैं, बट सबसे पहले सोनू गौतम जी हैं। और यहाँ फीडबैक है मेरे पास साहुल पासी जी का, क्या कहते हैं सुनते
2: सलाम,
0: हैं।
2: मैं कोई सा भी गाना भेज सकता हूँ क्या?
0: जी
2: हमारी
0: हाँ
2: वंशिका जी और अरजे परमार सर जी।
0: जी, कोई सा भी गाना भेज सकते हैं, एनी सॉन्ग की फरमाइश आपकी, जो मर्जी करे, आपको जो गाना सुनने का मन करे वो भेज सकते हैं। बस ये है कि आप भेजिए हमें व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 8404-8412, यानी 8404-8412 पे आप गाने भेज सकते हैं। और जैसे कि सोनू गौतम जी का सही है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं, है ना परमार जी।
1: और उनकी पसंद का गाना भी पूछ लेते हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं हमारे
0: जी
1: सोनू गौतम जी।
0: थोड़ी सी बातचीत करते हैं और पूछ लेते हैं गाना कौन सा सुनना चाहेंगे। और अगर कोई लिखना चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत ना करें, कोई दिक्कत है, तो आप नो कॉल करके लिख
1: हेलो
0: सकते हैं।
1: हेलो हेलो सोनू,
0: आवाज काफी शोर आ रहा है आपकी तरफ से सोनू जी।
1: सोनू जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
0: हेलो,

0: है, जहां से मेरा ननिहाल है। जी
1: अच्छा, बरेली के पास।
0: जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और क्या आंसर दिया आपने वो बताइए आप हमें।
2: बोल मेरी तकदीर में क्या है।
1: वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने, और यही जवाब इसका रियल आंसर था, और सबसे पहले दिया, उसके लिए
2: हाँ
1: आपको हम कांग्रेचुलेशन,
2: बिल्कुल।
1: बधाई भी देना चाहेंगे। और साथ साथ आप ये भी बताइए, आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे ये भी बताइए।
2: सर मैंने गाना लिखा नहीं, आप अपनी पसंद का कोई भी सुनवा देना।
1: चलो बस, क्या जी, मुझे तो इतने, मैं तो कोई
0: जी
1: पुराना ही
0: वैसे अगर आपके
1: सुनूंगा।
0: दिमाग में कोई भी गाना अचानक से आए तो मुझे बता दीजिए ना, क्योंकि हमारी पसंद तो बहुत डाबा डोल हो रही है यहाँ पे, मुझे इतने सारे गाने कंफ्यूजन बहुत है।
1: कोई भी गाना आप जो भी माइंड में आ रहा बता दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल, जो सुनना चाहें।
2: धर्मात्मा मूवी का सुनवा देना,
1: कौन से वाला जी?
0: धर्मात्मा का बहुत कौन
2: तेरे
0: सा।
2: चेहरे में वो जादू है। हाँ
1: वाह वाह
0: जी,
1: वाह, काफी
0: क्या गाना
1: खूबसूरत
0: दिया
1: गाना
0: है।
1: है जी, तेरे चेहरे पे जादू। और सभी
0: और इस मूवी
1: श्रोता,
0: का मुझे एक गाना और पसंद है, वो भी जरूर मैं सुनवाऊंगी आप सभी को।
2: तुमने कभी किसी से प्यार
0: हाँ
2: किया है,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: जी
1: जी,
0: बिल्कुल। आपको कैसे पता कि मुझे कौन सा गाना पसंद है।
2: उसमें ये गाना भी अच्छा है ना, इसलिए मैं बोल रहा था।
1: मुकेश की और उसकी आवाज है, वो क्या नाम है उसका,
0: कंचन
1: कंचन
0: जी की।
1: जी,
2: सुमन कल्याण। अच्छा
1: नहीं, कंचन जी थी, कंचन जी।
2: कंचन जी। अच्छा,
1: तो आप शोनी गौतम जी का
0: सुनवा
1: पसंद का
0: दिया।
1: गाना सुनवाइए, और इसके बाद हमारे जो श्रोता है, क्या नाम था उनका, विष्णु
0: ऋषि
1: चंद्र
0: चंद्र
1: जी,
0: जी, उन्होंने एक सवाल
1: उन्होंने
0: पूछा था,
1: प्रेम फिल्म के बारे में पूछा था। प्रेम फिल्म के बारे में
0: तो
1: बताऊंगा
0: सुनो जी,
1: मैं, और उसके साथ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा।
0: तो सुनो
1: तो
0: जी, आपका
1: थैंक
0: गाना सुनवा दिया, एंजॉय कीजिएगा।
2: यू सर।
0: वेलकम
1: ओके जी,
0: सर।
1: ओके।

0: बिल्कुल, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा चला आता हूँ। जी खिंचे चले आइए, किसने मना करा है आपको। और चेहरे में जादू तो है ही, जो प्रेमिकाएं होती हैं उनके चेहरों में जादू तो होता ही है। परमा जी, आपकी प्रेमिका के चेहरे में जादू है?
1: देखिए, हमारा टाइम निकल चुका है, वो पुरानी बातें मैं अभी बाहर निकालना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो ये जो हमारे श्रोता थे,
0: जी बिल्कुल,
1: सोनू सोनू
0: गौतम जी।
1: गौतम जी, ये भी काफी खूबसूरत हैंडसम थे। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका फोटो देख के।
0: अच्छा
1: और
0: जी
1: ये भी किसी हीरो से कम
0: जी जी जी
1: नहीं
0: हमारे
1: है,
0: सभी
1: बहुत
0: लिस्टनर्स हीरो हीरोइनों से कम नहीं है।
1: इनकी जो पर्सनलिटी है बिल्कुल हीरो टाइप है।
0: और यहाँ
1: बहुत बहुत
0: पे
1: अच्छा
0: सबजीत
1: लगा।
0: सेठी जी लिखते, कार्यक्रम शानदार चला है। हमारे सबजीत जी जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही प्यारा फीडबैक देते हैं,
2: वंशिका
0: और
2: मैं
0: सुनते हैं
2: और
0: क्या कहते
2: परमार सर
0: हैं।
2: जी, आप दोनों को नमस्ते। मैं सरजीत सेठी फाजिल का पंजाब से। कैसे हैं आप परमार सर जी?
0: अच्छी हैं जी,
2: वंशिका मैम
1: बहुत
2: आप
1: अच्छे
2: कैसी
1: हैं जी,
2: हैं?
1: बहुत अच्छे,
0: बहुत अच्छे
2: हम भी
0: हैं।
2: आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते हैं रेडियो गाना जो बना दे सबको दीवाना।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया
1: बहुत बहुत
0: आपका।
1: शुक्रिया इतना खूबसूरत फीडबैक देने के लिए सरोजी सेठी फाजिलका वाले। ये
0: जी बिल्कुल
1: बहुत ही अच्छे हैं, और ये फाजिलका पंजाब में है, और ये
0: जी
1: काफी
0: बिल्कुल
1: खूबसूरत जगह भी है फाजिलका।
0: जी, जगह भी खूबसूरत है और हमारे लिसनर्स के दिल भी बहुत खूबसूरत हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे फीडबैक देते हैं। और चैट बॉक्स में नजर मारती हूँ मैं कि चैट बॉक्स में अभी एक्टिव कौन से लिसनर्स चल रहे हैं। हमारे साथ चल रहे हैं यहाँ पे राहुल पासी जी हैं, और यहाँ पुराने नगमे सुनने के लिए बैठे हैं विष्णु चंद्र जी, और बहुत ही प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना आप सभी से बातचीत करके।
1: पूजा
0: आइए
1: भास्कर जी भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन
0: जी।
1: पूजा
0: हाँ
1: भास्कर जी अब मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रही। बेटा क्या बात है,
0: जी,
1: आने की कोशिश कीजिए।
0: आजकल तो बहुत सारे लिसनर्स नहीं आ रहे ना, मतलब नाहिद जी आ रही हैं, बहुत सारे लिसनर्स नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, अगला गाना मैं सुनवाऊंगी आप सभी को, जिसकी पसंद मेरे पास पहुंची है। उससे पहले प्रमा जी कोई जानकारी
1: हाँ
0: लेके आए
1: हाँ
0: हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी विष्णु चंद्र जी के बारे में क्वेश्चन पूछा था मुझसे, प्रेम फिल्म की स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में, क्या बात है। ये जो प्रेम फिल्म थी, ये आई थी 1995 में, 1995 में, और इसको जिसको जिसने डायरेक्ट किया था वो थे जी सतीश कौशिक। और ये बॉलीवुड की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो पुनर्जन्म के विषय पर आधारित थी। इसमें संजय कपूर और तब्बू ने मुख्य भूमिकाओं में दोहरी भूमिकाएं निभाई थी। निर्माण में देरी के कारण ये फिल्म लंबी प्रक्रिया से गुजरी थी। आप इस विषय के बारे में देख लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पर। इसकी जो रिलीज तारीख थी जी वो 5 मई 1995 में रिलीज हुई थी।
0: इतनी पुरानी है,
1: हाँ जी।
0: वाह।
1: इसके कलाकार थे जी संजय कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी और दीपक तिजोरी। विषय था इसका जो फिल्म का था पुनर्जन्म, और पिछले जन्म पर आधारित थी फिल्म।
0: मुझे भी पुनर्जन्म में जाना है, मेरा भी मन करता है कि आज मैं अपने पिछले जन्म में जा पाऊं और देख पाऊं कि मैं कैसी थी,
1: तो इसमें ऐसा
0: क्योंकि ये
1: होता
0: जन्म तो खराब
1: है
0: हो
1: वर्षा
0: गया।
1: जी, संजय कपूर का अपने पिछले जन्म की कुछ झलकियां सपने में दिखाई देती हैं, और भविष्यवाणियां भी दिखाई देती हैं। पिछले जन्म में उनका नाम शांतनु होता है। एक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात सोनिया से होती है। सोनिया की शक्ल उनके पिछले जन्म के प्रेम यानी लाची से मिलती जुलती है। इसी पर ये कहानी आगे चलती है। तो जो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ मैं अपने प्यारे श्रोताओं से, वो ये बताइएगा, इस फिल्म थे में थे जी अमरीश पुरी, तो
0: तो
1: वर्षा जी
0: अमरीश पुरी
1: पूछिए।
0: जी का मतलब फिल्म में किरदार जो था, उस किरदार का नाम क्या था, वो आप सभी को बताना है। और राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। यानी कि आपको बताना है इस मूवी में अमरीश पुरी जी थे, ये तो सभी को पता है, बट उनका जो किरदार था इस मूवी में, जो उन्होंने रोल निभाया था, अदा किया था, उस रोल का, उस किरदार का, उसका नाम क्या था उस मूवी में?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: और नमस्कार, जिससे भी श्रोता का आंसर सबसे पहले में आएगा, लिस्ट में देख लीजिएगा, उससे हम बातें भी करेंगे और उनकी पसंद का गाना भी सुनवाएंगे। तो सुनवा दीजिए, अब
0: जी
1: किसकी पसंद
0: बिल्कुल,
1: का गाना
0: अगली पसंद
1: सुना?
0: मैं सुनवाने वाली हूँ आप सभी को। ये पसंद मेरे पास पहुंची है किनकी? ये पसंद है मेरे पास संदीप सुतार जी की, छाई बरखा बहार पड़े अंगना फुआर। ये वाला गाना सुनना चाहेंगे लता जी की आवाज में, चिराग मूवी का, सभी श्रोताओं को डेडिकेट करते हैं। और संदीप सुतार जी ने ये भी लिखा है कि मुझे आशा पारिक जी के बारे में जानना है, जो बचपन से लेकर अब तक का सफर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जानना चाहूंगा। अच्छा जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बताएंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। सुतार जी को बताऊंगा
0: जी बिल्कुल, और इनका गाना भी प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, बहुत ही बेहतरीन पसंद है। और राजेश कुमार जी लिखते हैं हबीबपुर ग्रेटर नोएडा से, जी ओके जी, यहाँ पे गाना भेजा है उन्होंने। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं बट आंसर जो मेरे पास सबसे सटीक और सही पहुंचा है उससे पहले सरफराज पटेल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है, लिखते हैं वंशिका जी और परमार जी, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून जी।
0: और यहाँ पे आंसर है सबसे पहले राहुल जी का, तो राहुल जी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: देखिए राहुल जी
0: आ गए अब तो जी बिल्कुल, हमारे पास तो सब चीज अवेलेबल है फट से चुटकी बजा के। और राहुल पासी जी आप पता नहीं क्यों इतना रोते हैं, मुझे बताइएगा।
2: हेलो
1: हेलो राहुल जी, क्या
2: हेलो,
1: चाल है आपको?
0: हाँ जी राहुल जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी,
1: आवाज आ रही है आपको?
2: जी, नमस्कार जी,
1: नमस्कार राहुल पासी साहब।
0: और आंसर आपका बिल्कुल सटीक और सही और सबसे पहले पहुंचा है,
1: तो आप बताएंगे क्या आंसर था?
2: आंसर था
1: वनराज। वेरी गुड वेरी गुड, ये वनराज नेम काफी पॉपुलर है,
0: मुझे तो अनुपमा की याद आ गई,
1: अनुपमा में उन्होंने निभाया था,
0: सुधांशु पांडे जी,
1: सुधांशु पांडे जी ने भी उनका नाम वनराज उतारा,
0: मुझे वो बहुत पसंद है।
1: बहुत ही खूबसूरत और सटीक आंसर दिया और सबसे पहले दिया, इस बात की हमें खुशी है। और आपका जो पसंद है वो हमें बताएंगे, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: मुझे वो सुनना चाहने की लोग मोहब्बत किया करते हैं।
1: वाह जी वाह, महबूब की मेहंदी का गाना बहुत ही प्यारा गाना है।
2: हाँ महबूब की मेहंदी।
1: हाँ जी हाँ जी। और राहुल पास जी कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं?
2: अम्बाला
1: हरियाणा।
2: अम्बाला हरियाणा,
1: वेरी गुड वेरी गुड।
0: अम्बाला में क्या हालात चल रहे हैं आजकल, मौसम कैसा है वहाँ पे?
2: वहाँ तो मौसम भी ठीक है, अभी सावन लगे हुए ना तो कवरिए जा रहे हैं
1: हरिद्वार। हाँ जी हाँ जी, जाने लग रहे हैं,
0: सही बात।
1: और राहुल जी मैं ये पूछना चाहूंगा और कि आप इस प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में शायद दूसरी बार जुड़े हैं, पहली बार?
0: नहीं पहले भी बहुत बार जुड़े हैं मेरे ख्याल से, है ना?
2: नहीं पहली बार, मैं इस प्रोग्राम में पहली बार सुना। अच्छा। पहली बार सुना तो हमने पिछले संडे को, तो आज ही वो मैंने व्हाट्सएप पे।
0: जी जी जी जी बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप मेरे प्रोग्राम से जुड़े और आपने आंसर भी सबसे पहले और स्टिक दिया। और आपकी पसंद का जो गाना है महबूब की मेहंदी फिल्म का, जाने का, वो सुनवा वंशिका जी सुनाइए, हमारे
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिएगा।
2: ठीक है,
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

मुझे भी कोई बताइए कि जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं। जवाब है तो मेरे पास भेजिएगा प्लीज। और इस जवाब पे मैं कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास टॉफी पड़ी है, वो दे सकती हूँ।

0: बिल्कुल, जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, अगर मोहब्बत करते हैं तो उसको अदा भी करना चाहिए, है ना। और यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं राकेश शर्मा जी, अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है अमीना जी। लिखती हैं आदाब आज प्रमाण जी, हम भी शामिल हो गए हैं
1: बहुत
0: फिल्मिस्तान के प्रोग्राम
1: बहुत
0: में।
1: आदाब अमीना खान जी, और
0: अस्सलाम
1: बहुत
0: वालेकुम।
1: बहुत अच्छा
0: वालेकुम
1: लगा हो
0: अस्सलाम
1: कि
0: जी,
1: आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ी है। आज
0: बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं
1: दिनों बाद जुड़ी है, आज आई
0: जी
1: तो बहुत अच्छा लगा।
0: जी और यहाँ पे राकेश शर्मा जी लिखते हैं नमस्कार, नमस्कार सभी दोस्तों को भी
1: बहुत
0: नमस्कार
1: बहुत
0: कहते हैं।
1: नमस्कार राकेश शर्मा जी।
0: आप आए बाहर आई राकेश जी, और अमीना जी आप आई तो और डबल वाली बाहर आ गई है, हवा हवाई करके आई है ना अब तो
1: हमें
0: क्योंकि हम तो मगेम्बो बन गए
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल। और अभी एक श्रोता ने मुझसे आशा पारेख जी के बारे में पूछा था, किन्होंने पूछा था उनसे? संदीप
0: जी। आशा पारेख जी के बारे में संदीप सितार जी ने पूछा था
1: सितार जी की बात का हम जवाब देना चाहूंगा। तो ये आशा पारेख जी थे, ये
0: जी,
1: इनका
0: अभी भी
1: जो
0: हैं
1: जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 में हुआ था,
0: जी।
1: और ये गुजराती फिल्म गुजराती परिवार में पैदा हुई थी। और इन्होंने जब अपना कलाकारी करने का जो शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने विमल राय की फिल्म आई थी माँ, 1952 में, उसमें एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अभिनय की शुरू की थी। मुख्य अभिनेत्री जब वो बनी तो शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल देके देखो में बनी थी। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे प्रश्न भी पूछना चाहूंगा, ये जो दिल देके फिल्म देखो फिल्म थी 1969 में जो आई थी, इसमें आशा पारेख ने जो किरदार निभाया था उनमें उसके किरदार का नाम क्या था, प्लीज सभी बताइएगा।
0: जी कौन सी, दिल देके देखो मूवी में क्या आशा पारेख जी के किरदार का नाम क्या था?
1: हाँ जी, हाँ
0: सोचना
1: जी, वो
0: पड़ेगा।
1: अब बिल्कुल सोच के बताइएगा जी। 1969 में फिल्म आई थी, और हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज सदाबहार अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता भी हैं हमारी आशा पारेख, जिन्हें जुबली गर्ल और भारतीय सिनेमा की रानी के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने 1969 से लेकर 1973 तक बॉलीवुड में राज किया था, और 85 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया, और
0: बहुत
1: पद्मश्री कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 के अंदर पद्मश्री
0: 1992
1: से
0: में,
1: भी सम्मानित किया गया था, और दादा साहब फाल्के का पुरस्कार भी मिला था उन्हें
0: यानी कि बहुत
1: 2020
0: को
1: में।
0: बहुत सारी अचीवमेंट दी
1: फिर
0: है
1: 2020
0: आशा जी ने।
1: में उन्हें दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वे सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं आशा पारेख जी। तो जो प्रश्न मैंने श्रोताओं आपसे पूछा उसका जवाब आप स्टिक दीजिएगा, जिसका आंसर सबसे पहले
0: और
1: आएगा,
0: विष्णु जी कहते हैं नमस्ते। जी
1: नमस्ते जी नमस्ते, तो उसका नाम हम उनसे बात भी करेंगे और गर्व सुनाएंगे। तो प्रश्न मैं फिर दोहरा देता हूँ कि ये दिल देके देखो जो फिल्म आई थी
0: पुरानी वाली
1: पुराने वाली 1969 में आई थी, उसमें उन्होंने अभिनेत्री के रूप में कदम रखा था इस फिल्म में, और जिस अभिनेत्री के रूप में तो रखा था आशा पारेख जी ने, उनका फिल्म में क्या नाम था, बस यही बताइएगा। आप सोचिए और सबसे पहले जो जवाब देगा उससे हम बातें भी करेंगे और उनके प्रश्न का गाना भी सुनाएंगे। तो वशिष्ठ जी किन किन श्रोता के प्रश्न का गाना सुना रही है बताइए आप।
0: जी, मैं वैसे श्रोताओं की पसंद तो मेरे पर बहुत है, पर मुझे अभी ना एक गाना बड़ा मतलब मस्ती से छा रही है मुझे, क्योंकि अमीना खान जी आई है ना, तो अमीना खान जी के आने की खुशी में मैं गाना सुनवाना चाहूंगी। मे भी आप सभी को पसंद आए, बहुत ज्यादा पसंदीदा गाना है मुझे, और अब मैं तो नाचने वाली हूँ परमा जी, और आपको
1: मैं
0: लेके
1: बुढ़ापे में मेरी हड्डियां दर्द हो रही है बेटा, तो
0: आपको
1: जो भी
0: लेके
1: है चलो जैसे भी आप नाचिए, मैं इंजॉय करता हूँ बस। और
0: तो आप सभी
1: श्रोताओं
0: भी
1: के
0: नाचिए,
1: आंसर
0: एंजॉय कीजिए, आंसर्स
1: देख
0: भेजिए
1: रहा
0: जब
1: हूँ
0: तक।
1: मैं किनकी श्रोताओं ने
0: आंसर्स तो आने
1: गाना
0: लगे हैं मेरे पास।
1: आंसर
0: और
1: दिया
0: विष्णु
1: है।
0: चंद्र जी जो आपने लिखा है, जो गेस किया है, बिल्कुल सही गेस किया है। क्या कहते हैं परमा जी की 65+ है, बट ज्ञान बहुत है इनके पास, बहुत सारा ज्ञान है ना, भर भर के कूट कूट के भरा हुआ ज्ञान और एक गाना सुना रही हूँ जिसपे आप सभी झूमिए नाचिए, क्योंकि माहौल बहुत ही सैड सा हो गया, सैड माहौल में क्या ही करना है ना, एंजॉय
1: नहीं
0: कीजिए इस गाने
1: बिल्कुल
0: को।
1: बिल्कुल खुश हो सका
0: मैं भी
1: आपने।
0: लगा रही हूँ स्पीकर और हेडफोन जो भी है, और नाचने जा रही हूँ, आप सभी भी नाचिए।

0: तेनु शरारत सिखावा जदू नैना लड़ावा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेनु शरारत सिखावा जदू नैना लड़ावा, जैस्मिन सैंडलर जी की आवाज में, उनकी आवाज में मुझे सभी गाने अच्छे लगते हैं। और एक गाना है उनकी आवाज में ही धुरंधर 2 का, जाइए सजना। अगर आपने उस गाने को सुना है ना तो रोना आएगा, बट उस गाने को मैं नहीं सुनवाने वाली क्योंकि आज मेरा रोने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आज मेरा मन है कि बहुत ज्यादा हंसूं और गाऊं। और यहाँ पे निकलस जी लिखते हैं कि आर्यवंशिका जी आपके शो का नाम रेडियो गाना होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा मैं क्या आप क्या कहना चाहते हैं, आप अच्छी तरह से समझाइए मुझे। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं आई लव यू, गाना अच्छा लगा बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से। और अमीना खान जी लिखती हैं थैंक यू सो मच आर्यवंशिका जी, आज का हमारा सवाल कादर खान जी के बारे में है। अच्छा जी, और लिखती हैं सुपर फरमाइश है, थैंक यू सो मच, वेलकम।
1: अमीना खान जी, मैं आपको कादर खान जी के बारे में पूरी डिटेल भी दूंगा, बताऊंगा भी और प्रश्न भी पूछूंगा। तो
0: और यहाँ पे मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं। सबसे पहला आंसर राजेश जी का, फिर राहुल पासी जी हैं, संदीप सितार जी हैं और भी बहुत सारे लिस्टनर जैसे अजय भगत जी हैं, बट सबसे पहले तो मेरे पास राजेश कुमार जी का है, तो बातचीत करें।
1: राजेश कुमार जी
0: निकी और पूछ पूछ, चलिए बातचीत कर लेते हैं। क्या कहते हैं राजेश कुमार जी? तेनु शरारत सिखावा जदू नैना लड़ावा।
1: हेलो, हाँ जी राजेश, राजेश कुमार जी, क्या हाल चाल है?
2: जी,
1: है, नमस्कार, नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है मुझे मुझे आपसे बातें करते हुए। और जो आपका प्रोफाइल पिक्चर वो भी देख रहा हूँ, वो भी काफी खूबसूरत प्यारी है, वही देखने लग रहा हूँ साथ आपसे बातें करते करते ऐसे लग रहा है वो पिक्चर बोल रही है।
0: ऐसे इंटरेक्शन हो जाती है ना लिसनर्स के बीच में,
1: बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आंसर बताइए, क्या आंसर दिया था आप सभी श्रोताओं को बताइए, आप जो प्रश्न आपसे पूछा था
0: उसका जवाब क्या था?
1: क्या था सबसे पहला बताइए आप।
2: नारायण,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल ठीक बताया आपने, मीरा नारायण ही नाम था आशा पारेख जी की, और आशा पारेख जी की पहली फिल्म थी।
0: अच्छा,
1: सम्मी कपूर जी के साथ। तो कौन सा गाना आपने ले गया है राजेश कुमार जी, बताइए
2: गाना सुना
1: दीजिए। जिंदगी एक सफर है सवार, ये आपने अंदाज फिल्म
2: का गाना। कल क्या हो किसने जाना,
0: सही बात है, कल क्या हो कुछ
2: नहीं। सफर में जा रहे हैं, अयोध्या के लिए जा रहे हैं, गाजियाबाद स्टेशन पे पहुंचे।
0: अच्छा,
1: एक बात और बताइए राजेश कुमार जी, ये लाजा आशा भोसले जी के आवाज में भी है और किशोर कुमार जी के आवाज में भी, कौन सा गाना सुनना चाहिए?
2: किशोर कुमार की आवाज।
1: ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार जी, बहुत अच्छा।
0: और अभी आप काशी विश्वनाथ जा रहे हैं क्या? बहुत बहुत बधाइयां आपको, भगवान जी ने आपको उधर मतलब अपने दर्शन के लिए बुलाया है। हमारा तो जाना आना हो नहीं रहा, इतने मतलब साल हो चुके हैं कि किसी भी देव भूमि पे या किसी भी जगह पे जाना ऐसा नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम हम गए थे ज्वाला जी, और अगर आप जाते हैं तो हम सभी लिसनर्स के लिए दुआएं जरूर मांग के लाइए।
1: ऐसा होता है राजेश कुमार जी, बहुत ही लक्की और भाग्यवान आदमी होते हैं
0: जिनको भगवान जी बुलाते हैं,
1: दर्शन देते हैं और अपने चरणों में बुलाते हैं ना, उनसे अपनी सेवा करवाते हैं।
2: हम तो जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं, हम पूरे विश्व कल्याण के लिए प्रसिद्ध मांगते हैं।
0: जी जी,
2: पूरे विश्व का कल्याण हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, सही बात है।
2: अच्छा, विश्व का होगा तो उसमें मेरा हो ही जाएगा।
0: हाँ, ये बात तो सही है,
1: बहुत खूबसूरत,
0: बहुत अच्छी सोच है,
1: अच्छे विचार है।
0: और बस यही दुआ करेंगे हम तो
1: आपसे बातें करके,
0: और यही दुआ करेंगे हम तो कि आपका सफर मंगलमय हो, बिना किसी दिक्कत के आराम से आप पहुँचे और अच्छे से दर्शन हो पाए आपके।
1: तो राजेश जी, आपकी पसंद का गाना वंशिका जी सुना रही है, सुनिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आते रहिएगा प्रोग्राम में आगे भी।
0: एंजॉय कीजिए, वेलकम जी। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर तो सुहाना है ना, आज खुशियां हैं तो कल गम है, कल गम था तो आज खुशियां हैं, ऐसे ही चलता रहता है। आपसे भी सैड मत होया कीजिए, क्योंकि सैड होने से कोई फायदा नहीं है, और इस गाने को सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए।
3: जिंदगी

0: बिल्कुल, जिंदगी तो सफर सुहाना है ही, और यहाँ पे मेरे पास फीडबैक का आना जरूरी है ही। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं, जिंदगी एक सफर सुहाना और बहुत अच्छा लगा, और कल क्या हो किसने जाना, बहुत बढ़िया गाना है, सही बात है। और अमीना खान जी लिखती हैं, खूबसूरत सॉन्ग की फरमाइश है। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं निकलेस जी वॉइस फीडबैक के साथ में, क्या कहना चाहते हैं सुन लेते हैं।
1: You know, I'm trying to explain you.
0: Yes, say what
1: you're
0: do you want to
1: coming
0: explain?
1: With RJ Parmal.
0: Yes, I am.
1: Every Sunday.
0: Yes.
1: Why not? Is your name is MS RJ Aman's name? I was a little bit confused. I'm sending feedback. I said hello to Mr. RJ MS Parmal.
0: Sorry, that's why, because the video gonna show is just handled by the WhatsApp number. It was 0484 1232. That's why you can't see the name of RJ Pramal ji and RJ Vanshika ji there, because it's since 2 weeks ago. It's got just handled by the WhatsApp number, and there's nothing is connected to the admin panel right now. That's why you can't able to see there. If you want to send a feedback and anything, any song and any request, you can send it on our WhatsApp number. On Sunday, it's not my name will be shown there, because Ajayman show is only done there. That's why. Maybe that's why you are not seeing there, but you are connected here right on the place, and you can send feedbacks and requests here. और चलते हैं अगले गाने की तरफ, उससे पहले प्रमाण जी आप क्यों अचंभे में पड़ गए हो मुझे देखते हुए?
2: नहीं, मैं बिल्कुल, आप उनको आंसर दे दी थी और अच्छी इंग्लिश है आपकी, और आपने निकले जी को आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं ये सोच रहा था मीना खान जी ने जो फरमाइश की कादर खान जी के बारे में, वो बताना चाहता हूँ।
0: कभी कभार मेरी इंग्लिश निकल आती है बस ऐसे ही।
2: काफी अच्छी इंग्लिश है आपकी। ये जो कादर खान जी होते थे, ये एक महान अभिनेता, लेखक और कॉमेडियन भी थे। इन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया, जो उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और बहुत सी फिल्मों की उन्होंने कहानी भी यानी पटकथा भी लिखी। इनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1937 में काबुल अफगानिस्तान में। उनका परिवार भारत आ गया और मुंबई रहने लगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। वे फिल्मों में आने से पहले कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे।
0: अच्छा जी।
2: हाँ जी, उन्होंने फिल्मों के लिए डायलॉग यानी संवाद लिखना शुरू किया। उन्होंने विलन और हास्य अभिनेता के दोनों के रूप में भी काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए फिल्में भी में भी काम किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अच्छी होती थी।
0: जी बिल्कुल, बात तो सही है। कादर खान जी की कॉमिक टाइमिंग, अगर आप सभी ने देखी है, बहुत सी मूवीज है कादर खान जी की। कौन सी मूवी थी वो जिसमें वो कच्छा पहन के घूमते रहते हैं? खिलाड़ी थी ना मेरे ख्याल से, क्या था, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी थी मे बी शायद से ना।
2: उन्होंने डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी के साथ भी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी आलम में कई फिल्में आई थी जिनके नाम मैं आपको गिनाना चाहूंगा, कुली, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, दाग, बाप नंबरी, बेटा दस नंबरी, आंखें, जुदाई और दूल्हे राजा,
0: और हसीना मान जाई में भी था मैं क्या ना, हसीना मान जाई।
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल था। उन्हें 3 बार फिल्म पे पुरस्कार भी मिला था।
0: जी बिल्कुल।
2: उन्हें कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। 31 दिसंबर 2018 में उनका निधन हो गया। तो ये थी हमारे कादर खान जी की जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, और साथ ही इसी से जुड़ा एक प्रश्न भी मैं अपने श्रोताओं से पूछना चाहूंगा।
0: बताइए बताइए, जरूर बताइए।
2: एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, मिस्टर इंडिया।
0: देखी है मैंने।
2: हाँ जी, उसमें कादर खान जी का एक डायलॉग होता था खास, वो डायलॉग क्या था बस यही बताइए, और जिसका आंसर सबसे पहले जो बताएगा उसका, उससे हम बात भी करेंगे, उनके प्रश्न का गाना भी सुनाएगा। तो उनका एक तकिया कलाम वाला डायलॉग था, वो क्या था वो बताइए आप।
0: और मैं मिस्टर इंडिया मूवी का नाम,
2: ये हमारी अमीना खान जी को जो उन्होंने आंसर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे अमीना खान जी तो आप पूछ सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। और मेरे पास, जैसे कि आप सभी ने मिस्टर इंडिया का नाम सुन लिया ना, मिस्टर इंडिया का नाम सुन के मुझे गाना याद आ रहा है, जो कि मेरे को प्रियंका जी बहुत सुनती हैं, तो उसी गाने को मैं सुनवाऊंगी। काटे नहीं करते दिन ये रात, ये वाला गाना सुनाएंगे, फिर प्रमाण जी की एक पसंद, उसके बाद आप सभी की और डिमांड से मेरे पास। तो चलिए गाना सुन लेते हैं, क्योंकि मिस्टर इंडिया का जिक्र चिरा है ना, तो आप सभी उसमें याद कीजिए कादर खान जी का क्या डायलॉग था, है ना प्रमाण जी, और आंसर हमें भेजिए फटाफट। और अमीना खान जी लिखती है, कीमती जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिखते हैं, सुनते हैं गाने को। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे दिल की बात, प्रियंका जी कहाँ हैं आप? आपका फेवरेट सॉन्ग सुनवा रही हूँ, एंजॉय कीजिएगा।

पापा जी की देन है। बहुत दिनों बाद याद दिलाया था उन्होंने मुझे कल ये गाना, और आज प्रमाण जी ने ताजा कर दिया। अच्छा लग रहा है ना? बताइए जरूर।

0: बिल्कुल, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच आप सभी लिसनर्स को. और यार राहुल पासी जी लिखते हैं, मेरा भी ये गाना बहुत फेवरेट है और मोगैम्बो खुश हुआ. जी हाँ, मोगैम्बो को तो खुश होना चाहिए ना. और है अच्छा जी, आंसर रिवील कर दिया जी मेरे को. अजय भगत जी लिखते हैं, लाजवाब इंग्लिश है वंशिका जी. जी बस भगवान की देन है, पापा मम्मी जी की देन है, जो इतना पढ़ा दिया तो बस निकल रही है मुझे फटर फटर करके, नहीं तो और क्या हमें आनी है. और आप सभी को अच्छी लगी, थैंक यू सो मच. अमीना खान जी लिखती हैं, मोहतरम आर्य प्रमा जी, आज हमें दुर्गा खुटे जी के बारे में जानना है.
1: जी अच्छा, अमीना खान जी जरूर बताएंगे आपको दुर्गा खोटे जी के बारे में भी.
0: और संतोष गौर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, प्रमाण जी काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ, रेडियो हॉस्टल पे मैसेज कर रहा हूँ तो अमन सर जी के पास जा रहा है, क्या व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है? जी हाँ, आप सभी को बता देती हूँ. कोई बात नहीं, आप सभी को फिर से बता देती हूँ, व्हाट्सएप पे ही मैसेजेस करना है 8404841232 पे, 8400484123 पे. और वहाँ पे अगर मैसेज करेंगे तो अमन जी के पास पहुँच जाएगा, तो मैं वहाँ से वापस नहीं ला सकती ना, क्योंकि सिवान पहुँचेगा मैसेज, पकड़ के लाना पड़ेगा मुझे. और मैं तो यहाँ पंजाब बैठी हूँ. आर के रवि जी जुड़ चुके हैं, वो भी गाने के साथ में, और ज़रूर आपका गाना प्ले करेंगे, रब को याद करो उसे ज़रूर. रब को तो याद करना ही पड़ता है ना, मुसीबतें आती रहती हैं ज़िंदगी में, अगर रब को याद करेंगे जल्दी मुश्किलें हल हो जाएंगी. और प्रमाण जी कोई जानकारी लाए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और गाना प्ले करते
1: पहले आप ये बताइए वो गाना फर्स्ट कौन आया है?
0: अच्छा अच्छा, फर्स्ट कौन आया है? मैं तो भुलक्कड़ हो गई हूँ, मेरे ख्याल से आई लव यू भुलक्कड़ होगी. और यहाँ पे मेरे पास हमें भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, क्या दिखा दीजिए अजय भगत जी, क्या देखना है आपने मुझे बताइएगा. और यहाँ पे अगला, जैसे कि आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे मेरे पास पहुँचा था, किनका पहुँचा था, मैं खुद कन्फ्यूज हो गई हूँ. किनका पहुंचा था आंसर वो बताती हूँ, सबसे पहले किनका पहुंचा था, क्योंकि आप सभी के फीडबैक्स आए हैं ना, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो गए हैं डाबा डोल. तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर मेरे पास पहुंचा था किनका, आर के रवि जी हैं. सबसे पहले मेरे पास पहुंचा था यहाँ पे राहुल पासी जी का ही पहुंचा हुआ है सबसे पहले मेरे पास. तो राहुल पासी जी एक बार आप और विजेता बने हैं तो इस बार आपको कॉल नहीं मिलाएंगे, इस बार आप बता दीजिए मुझे कौन सा गाना सुना है राहुल पासी जी.
1: और अगर राहुल पासी जी किसी और श्रोता का नाम लेते
0: जी मैं बताती हूँ कि अगर राहुल पासी जी, अगर आप चाहते हैं किसी और श्रोता को कॉल किया जाए कि किसी और श्रोता को मौका मिल पाए, तो उनका नाम ले दीजिए, हम उनसे बातचीत कर लेंगे, हमें क्या देरी है, बातचीत कर लेंगे और उनकी पसंद का गाना सुनवाएंगे, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो, अगर आप शिफ्ट करना चाहें. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना तो वो भी मुझे दे दीजिए. जब तक एंजॉय कीजिए आप सभी एक पसंद जो कि मेरे पास पहुंची है सर्वजीत सेठी जी की. लिखते हैं, गाना सुनना है वंशिका मैम, ये वाला गाना आपको, अमन जी को और प्रमा जी को और सभी लिसनर्स को डेडिकेट है. और गाने के बोल है, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, भाभी मूवी का गाना सुनवा दिया.
1: वंशिका जी अपने सर्वजीत सेठी जी की फरमाइश नंबर 1 होती है, ये गाना मुझे काफी पसंद है. सर्वजीत सेठी का जो गाना है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुना दीजिए.
0: एंजॉय कीजिए, बहुत ही प्यारा गाना. और आप सभी में जैसे कि बताया मैंने विजेता बने हैं राहुल जी, तो मुझे बताइए गाना प्ले करूं या आप किसी और को मौका देना चाहेंगे. और अजय भगत जी क्या दिखाना था वो भी मुझे बताइए.

0: चली चली रे पतंग, चली रे पतंग को तो लेके चल दिए परमार जी। आप भी लेके, आपने पतंग उड़ाई है, मुझे पहले बताइए
1: देखिए, पतंग का मैं मास्टर हुआ करता था बड़े टाइम का, और
0: कितनी उड़ाई है, कितनी काटी है,
1: मैंने
0: काट काट के कितनी
1: सारी
0: लूटी
1: काटी
0: है।
1: है जी। एक आधी बार कट गई, जब मैंने शुरू में उड़ानी सीखी थी तब तो शायद कटी है, लेकिन बाद में मैंने
0: यानी कि
1: सबकी
0: बहुतों
1: पतंग
0: की
1: काटी।
0: लूटी है ना, हमारे तरफ
1: लूटी
0: क्या
1: नहीं जी, काटी है मैंने,
0: काट के
1: लोगों ने
0: तो।
1: लूटी, बच्चों ने। हाँ
0: अच्छा, तो मतलब काट के जो गिरती है और उठाते हैं उसको लूटना कहते हैं ना।
1: जी, हाँ जी,
0: हमारी तो पतंग का अजीब ही सिस्टम है, हम तो पतंग लेके भागा करते थे कि पतंग उड़ेगी, बेचारी घसीट घसीट के उसके कचुम्बर निकल जाता
1: वही शिकार
0: था।
1: जी ट्रेन नहीं थी ना, इसलिए
0: मुझे
1: ऐसा
0: पतंग
1: होता
0: उड़ानी नहीं आती, मेरे से
1: था।
0: कुछ भी करवा लीजिए पर पतंग उड़ाना ये मेरे लिए बस बहुत मुश्किल काम है। अजय भगत जी चैट बॉक्स से कितनी बाहर निकाल रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा। और क्वेश्चन क्या था? हाँ एक और बात, एक जैसे कि मैंने कल रात से सिराम खिलवाया था ना चैट बॉक्स में सवाल, वो भी अगर आप चाहें तो खेल सकते हैं। आप बताइएगा आप सभी, क्या मैं चैट बॉक्स में सवाल डालूं, क्या आप सभी से वहां पर जवाब पूछूं? और जैसे कि मैं देख सकती हूँ राहुल पासी जी गायब हो गए हैं, कहाँ गए राहुल जी, आप विजेता बने थे ना। और अमीना खान जी लिखती है आज परमार जी पतंगबाज
1: बिल्कुल बिल्कुल अमीना खान जी, और आपके जो आपने मुझसे सवाल पूछा उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ,
0: है। और
1: गुलजार
0: यहाँ पे
1: चौधरी
0: राहुल
1: जी के
0: जी,
1: बारे
0: राहुल
1: में।
0: पासी जी का मेरे पास आंसर मतलब जवाब आ चुका है कि वो क्या चाहते हैं, और लिखते हैं कि गाना सुनवाना है इनका, जब तक आपसे भी जानकारी दीजिए उसके बाद गाना सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अमीना खान जी ने दुर्गा खोटे जी के बारे में पूछा है। भारतीय सिनेमा की एक महान और अग्रणी स्टार थी, जिन्होंने 1931 से लेकर 1983 तक 200 फिल्मों में काम किया। वह अच्छे और संभ्रांत परिवार से आने वाली पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने फिल्मों में काम करके सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ा। आप उनके बारे में और जाने? उनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1905 में, मुंबई,
0: 1905,
1: हाँ मुंबई के,
0: 1900
1: 1905 के अंदर हुआ था इनका जन्म। तो
0: यानी कि
1: बम्बई
0: लगभग
1: के
0: लगभग
1: कोंकणी
0: कितने
1: परिवार
0: साल
1: से संबंधित थी। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से बीए की डिग्री ली थी। कम उम्र में वह विधवा हो गई थी, यानी 26 साल की उम्र में उनके हस्बैंड पिताजी यानी पति का भी देहांत हो गया था, और उनके दो छोटे बच्चे भी थे उसमें। उन्होंने
0: बहुत ही
1: फिर
0: पुरानी
1: हाँ
0: कहानी है,
1: जी,
0: कहाँ से लाती हैं मीना जी आप इतने प्यारे प्यारे सवाल
1: उन्होंने
0: ढूंढ
1: जब फिल्मों में प्रवेश लिया, परिवार की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जिसे उस दौर में अच्छा नहीं माना जाता था। उन्होंने 1931 में एक मूक फिल्म आई थी जिसमें आवाज नहीं थी, करीबी जाल, उससे उन्होंने शुरुआत की थी। लोकप्रियता प्रियता उन्हें मिली थी वी शांताराम की फिल्म राजा तारामती की भूमिका में, उन्हें अपार ख्याति भी मिली। और मुगले आजम में 1960 में आई ऐतिहासिक फिल्म में उन्होंने जोधा बाई यानी सलीम की माँ का यादगार किरदार भी निभाया। उनकी अन्य प्रसिद्ध भूमिकाएं थी, उन्होंने बॉबी 1973 में मिसिज बर्गेंजा का, और कर्ज 1980 में आई माँ दादी की भूमिका भी निभाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला। पहला विज्ञापन निर्माण भी उन्होंने किया, उन्होंने दुर्गा खोटे प्रोडक्शन की शुरुआत की जो महिलाओं द्वारा संचालित पहली विज्ञापन कंपनी। तो अमीना खान जी, ये था दुर्गा खोटे जी के बारे में, मैंने आपको कुछ बताया। अब मैं प्रश्न भी पूछना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं से, तो यही पूछना चाहूंगा, फिल्म
0: क्या पूछना चाहेंगे
1: आई
0: बताइए
1: थी मुगले आजम,
0: जी जी
1: उन्होंने उन्हें सलीम की मम्मी का रोल
0: अदा
1: निभाया
0: किया
1: था,
0: था।
1: और जो हमारी उसमें हीरोइन थी मधुबाला जी,
0: जी जी जी
1: ठीक है। तो सभी ये बताएंगे मुझे, पर श्रोता मुझे ये बताएंगे,
0: क्या बताएंगे क्या बताएंगे।
1: वनी मधुबाला जी की सबसे हिट फिल्म कौन सी रही थी, और उस फिल्म में उन्होंने क्या किरदार निभाया था? इस प्रश्न का सभी जवाब श्रोता
0: ये तो
1: देंगे।
0: काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, यानी कि आपने तो पूरे सवाल को ही घुमा दिया। यानी सवाल स्टार्ट हुआ था दुर्गा खोटे जी से, जो कि उनकी सासू माँ बनी थी एक तरीके से कह सकते हैं ना, जोधा भाई
1: हाँ जी,
0: बनी
1: हाँ
0: थी
1: जी,
0: वो, तो अनारकली जी का रोल निभाया था उन्होंने, क्या नाम है, मधुबाला जी ने। तो आपने पूछा है कि मधुबाला जी की सबसे वन ऑफ द फेमस मूवी, और उस वन ऑफ द
1: बिल्कुल
0: फेमस मूवी में उनका किरदार क्या था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही
0: समझ
1: बताएंगे
0: गई
1: हमारे
0: मैं, समझ
1: श्रोता।
0: गई।
1: थोड़ा मुश्किल सवाल जरूर है, लेकिन बताइएगा जरूर श्रोता,
0: जी
1: और जो श्रोता बताएंगे
0: और
1: उनके
0: अमीना खान जी
1: पास।
0: लिखती हैं, शुक्रिया दुर्गा खोटे जी की जानकारी देने के लिए। और राहुल पासी जी, गाना आ चुका है आपका, पहली पहली बार मोहब्बत की है, इश्क में इस इश्क ने कुछ ऐसी साजिश की है, न जाने क्या हो गया। जी पहली पहली बार मोहब्बत करेंगे तो यही होना हाल है, और पहली वाली मोहब्बत में जो पहले एहसास होते हैं ना, वो दिल के हमेशा हमेशा हमेशा पास होते हैं, हमेशा हमारे दिल के पास रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और संदीप सितार जी क्या मतलब, अच्छा जी, तो चलिए आंसर्स आने लगे हैं, बट जब तक आंसर्स आ रहे हैं तब तक मैं गाना सुनाऊंगी, पहली पहली बार मोहब्बत की है, एंजॉय कीजिए।

0: जी प्रमाण जी, सवाल तो बड़ा घूमा फिरा से लाए थे आप। सवाल से जवाब, जवाब से सवाल, क्या
1: देखिए ये भी हमारे जी,
0: इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है इस सवाल
1: देखिए ऐसा है मेरे सभी प्यारे श्रोता और भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहूंगा कि सवाल थोड़ा मुश्किल जरूर था लेकिन आसान, इसका जवाब बहुत ही आसान था और श्रोताओं ने दिए भी आंसर भी दिए। तो वंशिका जी देखिए सबसे पहला आंसर किसका है।
0: जी बिल्कुल, सवाल का जवाब मेरे पास पहुंचा है सबसे पहले आर के रवि जी का, फिर है अजय भगत जी, क्या लिखते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, बट मैं आपको समझा दूंगी चैट बॉक्स कैसे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे अमीना खान जी का है, फिर बाद में राहुल पासी जी लिखते हैं, आज के प्रोग्राम बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आर जी प्रमाण जी आपकी आवाज बहुत बढ़िया है, जानकारी बहुत अच्छी मिलती है, और आंसर आपका भी सही है राहुल जी। तो जैसे कि बताया सबसे पहले आर के रवि जी का है, तो आर के रवि जी सॉरी आपको कॉल किया जाए, मुगम्बो खुश हो जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुगम्बो खुश करिए
0: जी बिल्कुल, गाना तो बजाते ही रहेंगे ना, बातचीत भी हो जाती है, अच्छी बात है।
2: हेलो
0: हेलो आर के रवि जी,
1: आर के रवि जी
0: कैसे हैं आप
2: जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं भी ठीक है जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आर के रवि जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक बात का जवाब दीजिएगा बिल्कुल ठीक हो,
0: केबीसी चलने वाला है
1: तो ये पूछना चाहूंगा, जो आपने प्रोफाइल में पिक्चर लगाई है ये आप ही किया था?
2: जी सर, ये मेरी पिक्चर है।
1: देखिए देखिए मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूंगा, बहुत ही खूबसूरत और काफी हैंडसम है आप, और देखने में भी किसी
2: थैंक यू सर,
1: किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगते।
0: आज प्रमाण जी सभी को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं।
2: थैंक यू सर,
1: बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका फोटो, जो मैं देख रहा हूँ आपका ये प्रोफाइल फोटो, और मैं ये ही पूछना चाहूंगा आपसे, कभी आपने एक्टिंग के क्षेत्र में लाइन में नहीं, एक्टर लाइन में कभी भाग लिया?
2: नहीं नहीं सर, एक्टिंग का डांसिंग का ये सब का मुझे शौक नहीं है, हाँ म्यूजिक बहुत पसंद है, म्यूजिक वगैरह सुनता हूँ, चाहे पुराने हो नए हो या हर लैंग्वेज में हो, अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुनता हूँ।
1: तो आर के रवि जी कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं?
2: जी मैं सर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में।
0: वाह, यहाँ पे अभी अभी आप सभी को एक और जानकारी देना चाहूंगी, गहरी धूप के साथ में हमारे तरफ बहुत जोर का तूफान और बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता ये किसी क्या चीज है अचानक
1: तो से। रवि जी पर्सनलिटी काफी अच्छी है, बहुत इम्प्रेस हूँ मैं।
0: और आर के रवि जी आपके लिए मतलब,
1: और मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, करते क्या है आर के रवि जी?
2: सर मेरा बिजनेस है अपना।
1: अच्छा जी, अच्छा
2: बिजनेस वगैरह करता हूँ।
1: तो ये ऑफिस में बैठ के आपने अपने कुर्सी और चेयर के पास?
2: नहीं नहीं एक्चुअली सर मैं अभी देवघर आया हुआ हूँ, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा था बाबा को जल चढ़ाने के बाद।
0: जी जी जी,
2: तो वही साथ में रेडियो भी सुन रहा था, तो ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर भी वहीं पे साथ में ही था जुड़ा हुआ।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत घुमा फिरा सवाल पूछा। और आर के रवि जी मेरी एक ख्वाहिश है।

0: आप पूरी करना चाहेंगे?
1: जी मैम,
0: जी एक शायरी मुझे सुना दीजिए, क्योंकि आपकी शायरियाँ मुझे काफी खूबसूरत लगती हैं।
2: शायर भी है हमारे यार के रवि
0: जी
2: जी,
0: जी जी
2: सुनाइए
0: बिल्कुल,
2: सुनाइए, मैं भी
0: किरण जी
2: सुनाता
0: के,
2: हूँ।
0: किरण जी के लिए होगी ना मेरे ख्याल
1: से। तो मैं सुना नहीं सकता, थोड़ा बाहर में हूँ,
0: अच्छा
1: बट मैं
0: अच्छा
1: स्पेशल एक ऑडियो में आपको जरूर भेजूंगा।
2: नहीं,
0: ओके,
2: अगले प्रोग्राम में सुना
0: कोई बात
2: दीजिएगा,
0: नहीं, कोई
2: अगले में
0: बात
2: आएंगे,
0: नहीं,
2: लेकिन सुनेंगे जरूर आपकी एक
0: जरूर
2: शायरी।
0: सुनेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ही प्यारी प्यारी शायरियाँ लिख के भेजते हैं मुझे जहाँ तक याद है।
2: तो मैं तो आज आर के रवि जी से पहली बार मिला हूँ और बहुत
0: जी,
2: अच्छा लगा
0: तो
2: मुझे
0: आप
2: आपसे बात
0: जवाब बता
2: करके।
0: दीजिए सभी श्रोताओं को।
2: सभी श्रोताओं को जो आंसर दीजिए आप, क्या आंसर था?
1: आंसर सर वही था, मुगले आजम मूवी का, और उनका रोल था अनारकली का,
2: वेरी
1: जो
2: गुड वेरी गुड। और
1: आपने
2: आपने
1: साथ में वहां पे भी बोल दिया था।
0: जी, इन्होंने क्या करा था, सवाल को जवाब को घुमा के बोला था, बहुत ही चला के फरमान जी।
2: तो रवि जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप अपनी पसंद?
1: सर गाना सुनना चाहेंगे
0: बता दीजिए,
1: और
2: गाने
1: उनका
2: की
1: जो नाम है वो मैंने किया था, रब को याद करूं।
0: रब को याद करूं,
2: कौन सी फिल्म का है गाना जी? रवि
0: ये
2: जी
0: मेरे ख्याल से उसका है ना, क्या कहते हैं, रब को याद करूं, खुदा गवाह का ना।
1: जी खुदा गवाह का।
0: जी जी
2: तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत गाना लिखे हैं आर के रवि जी, और आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया मेरा, और आपकी पर्सनलिटी देख और पर्सनलिटी देख के तो इम्प्रेस भी हो गया मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, और सुनाइए वंशिका जी हमारे आर के रवि जी की
0: एंजॉय
2: फरमाइश
0: कीजिए।
2: का गाना।
0: ओके जी, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद,
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: बिछड़ा यार मिला दें, ओए रब्बा रग को याद करूं, बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है। आर के रवि जी लिखते हैं, अच्छा जी, मैं कोशिश कर सकती हूँ, वादा नहीं कर सकती, पर
1: बिल्कुल
0: गाना जो मुझे भेजा है आपने, अब मजबूर कर दिए हैं, क्योंकि गाना मुझे बहुत पसंद है। के गाना अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं कहीं से प्ले कर दूंगी, अगर मैं कहीं और, मतलब जी
1: बिल्कुल
0: बे, अभी कोशिश करते हैं, बताती हूँ प्रमाण जी आपको। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं, आज प्रमाण जी असरानी जी के बारे में बताइएगा प्रोग्राम में।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर
0: जी,
1: बताइए
0: और
1: आसरानी के
0: लिखते हैं,
1: बारे में।
0: खुदा खुदा खुदा गवाह मूवी का गाना बहुत ही प्यारा लगा। और अमीना खान जी एक सवाल पूछती हैं आपसे, लिखती हैं, प्रमाण जी, क्या आपने उर्दू की किताबें पढ़ी हैं? मेरी मम्मी ने तो पढ़ी है।
1: देखिए, उर्दू की किताबें तो अमीना खान जी ने पढ़ी नहीं है, लेकिन उर्दू के बारे में काफी नॉलेज रखता हूँ मैं
0: क्योंकि प्रमाण
1: अपनी
0: जी की
1: उम्र के
0: जो
1: हिसाब से।
0: क्योंकि प्रमाण जी की जो सुंदरता के मूरत जी हैं, उनको उर्दू काफी अच्छी तरीके से आती है, वो उर्दू की टीचर हैं, इसलिए प्रमाण जी को भी आती है उर्दू, ये बात
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: सच्चाई यही है। और यहाँ पे आंसर्स की तरफ, आंसर मतलब सवाल तो पूछा नहीं था ना, प्रमाण जी
1: देखिए
0: जानकारी लेके आए हैं, वो जानकारी जानते हैं, कौन सी जानकारी लेके आए
1: देखिए
0: हैं?
1: हमारे एक श्रोता है रोहित सिंह जी, उन्होंने पूछा है, जब भी मीट के बारे में बताइए, कुछ फिल्म थी
0: अच्छा,
1: एक,
0: मेरी फेवरेट मूवी है,
1: हाँ
0: मुझे
1: जी,
0: बहुत पसंद है।
1: 2007 में रिलीज हुई थी हमारे रोहित सिंह जी ये फिल्म, और ये एक रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म थी जिसे इम्तियाज अली जी ने लिखा और निर्देशित भी किया था। फिल्म को धीरेन्द्र मेहता ने श्री अष्टविनायक सिने विजन लिमिटेड के अंतर्गत इसे बनाया था।
0: जी बिल्कुल,
1: इसमें शाहिद कपूर
0: और
1: और
0: करीना
1: कन्या
0: कपूर जी,
1: कुमार ने अपनी छोटी फिल्म में एक साथ किया
0: उनकी
1: था।
0: जोड़ी वन ऑफ द फेमस जोड़ी थी उस समय जब ये मूवी
1: तो इस
0: रिलीज हुई
1: फिल्म
0: थी।
1: में करीना कुमार जी ने एक पंजाबी लड़की गीता का किरदार निभाया था, और शाहिद कपूर ने एक उद्योगपति यानी बिजनेसमैन का
0: और एक अभिमन्यु नाम का किरदार भी था जो कि मूवी में एक थर्ड विलेन था।
1: ट्रेन में हुई एक आकस्मिक मुलाकात से शुरू हुआ उनका सफर, उनके जीवन की पूरी तरह बदल देता है वो ट्रेन सफर। आदित्य प्यार में धोखा मिलने और कारोबार में भारी नुकसान के कारण गंभीर डिप्रेशन में आ जाता है। वह हताश होकर बिना किसी एक मंजिल के एक रात को ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है बहुत बनने वाली लड़की और खुश मिजाज गीता से। एक स्टेशन पर ट्रेन छूट जाने के कारण दोनों बिछड़े बिछड़े साथ हो जाते हैं और गीता के बठिंडा वाले घर में पहुंच जाते हैं। गीता अपने परिवार के दबाव से बचने के लिए अपने प्रेमी अंशुमान से
0: अंशुमन था, मैं अनु अभिमन्यु बना दी हूँ मैं नया
1: मिलने
0: नाम
1: के
0: ही
1: लिए
0: लेती
1: घर
0: हूँ।
1: से भागने के लिए नाटक करती है। आदित्य उसकी एक इसी योजना में हेल्प भी करता है और दोनों कुछ समय के लिए अलग भी हो जाते हैं। महीनों बाद आदित्य की जिंदगी में पूरी तरह बदल जाती है और वह एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। जब आदित्य को पता चलता है कि गीता अनुष्मान के साथ खुश नहीं है और गुमनाम सी जिंदगी जी रही है,
0: गीत था ऐसे नाम, गीत।
1: तो वह उसे वापस लाने और उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने में हेल्प करता है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वैश्या जी, जो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये
0: बताइए।
1: अंशुमान जी थे जो,
0: अंशुमन,
1: हाँ
0: उनका
1: थे,
0: किरदार किन्होंने निभाया?
1: उसका उस किरदार में नाम क्या था, वो किरदार
0: नाम तो,
1: निभाया,
0: नाम तो अंशुमन हमने बता ही दिया ना
1: तो किरदार निभाया किसने था,
0: जी,
1: उस
0: यानी कि
1: अभिनेता का नाम
0: जैसे कि गीत का
1: बताइए।
0: किरदार निभाया करीना कपूर जी ने, और आदित्य किरदार निभाया शाहिद जी ने, तो ये जो है क्या कहते हैं, अंशुमन जी, अंशुमन जी का किरदार किस हीरो ने, किस अभिनेता ने निभाया था, उनका नाम मुझे लिख के भेजिए, यानी कि रियल नेम लिख के भेजना है, किरदार का नाम तो हमने बता ही दिया।
1: और जिस
0: और
1: श्रोता का आंसर सबसे पहले आएगा उनसे हम
0: हम
1: बात भी
0: बातचीत
1: करेंगे
0: करेंगे जरूर।
1: और उनकी पसंद
0: अमीना
1: का
0: खान
1: गाना
0: जी,
1: भी सुनाएंगे।
0: अमीना खान जी लिखती हैं, बहुत बहुत खुशी हुई ये जानकारी, आपकी अम्मी जान तो उर्दू आती है, जब भी जो आपके अंदाज में झलकती है आजीवन शिखा जी। अच्छा जी, हम मेरी अंदाज में उर्दू झलकती है, मैं तो कोशिश करती हूँ बस, बहुत बहुत, मतलब एक तरीके से उर्दू में मेरा हार्ट टाइट है। और आर के रवि जी ने शायरी लिख के भेजी है, पढ़ती हूँ मैं जरूर। शायरी आई है और ये वाला म्यूजिक ना बजे। हाँ, क्या लिखते हैं, तेरी दोस्ती ने जिंदगी को सजा दिया, तेरी दोस्ती ने जिंदगी को सजा दिया, हर गम को भुला कर मुस्कुराना सिखा दिया, रहे हमेशा तेरे चेहरे पर ये प्यारी सी हंसी, रहे हमेशा तेरे चेहरे पर ये प्यारी सी हंसी, तेरी इस हंसी ने मेरा जहां महका दिया, तेरी इस हंसी ने मेरा जहां महका दिया। आर के रवि जी बहुत ही प्यारा लिखा। और
1: वाह वाह वाह वाह, क्या लिखा है आर के रवि जी, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ आपकी शायरी से, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी खूबसूरत लाइनें आपने लिखी हैं।
0: और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल
1: और इन्होंने
0: पाटीदार,
1: और इस शायरी को जो भी आपने लिखी, वंशिका जी ने अपनी खूबसूरत आवाज में सुनाया, भी बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: जी जी जी शुक्रिया। और यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल पाटीदार जी, आपका भी बहुत वेलकम है। गोपाल जी कैसे हैं आप? कार्यक्रम में थोड़ा लेट हो गए जुड़ने में, बट जुड़े तो सही, कहते ना देर लगी तुमको आने में, पर शुक्र है फिर भी तो आए, फिर भी आए तो, है ना।
1: तो अभी देखिए किसकी फरमाइश आई है
0: जी, अगली पसंद से।
1: और क्या प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा था मुझसे अभी, ने पूछा था
0: अभी मैं बताती हूँ, आपसे सवाल पूछा गया था असरानी जी के बारे में।
1: असरानी जी के बारे में?
0: जी जी, असरानी जी की जानकारी थी, आप ढूंढ के लाइएगा। और जब तक अगला गाना
1: नहीं देखिए, ध्यान से देखिए
0: जी, अभी बता देती हूँ ना, जब तक आप सभी एंजॉय कीजिए गाना जो कि मेरे पास पहुंचा हुआ है। यहाँ पे किन की पसंद थी एक बार मैं बता देती हूँ। और गोपाल जी लिखते बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे आंसर्स आने लग गए मेरे पास। आंसर जब तक आ रहे हैं, यहाँ पे मैं गाना प्ले कर रही हूँ जो की पसंद मेरे पास सबसे पहली पसंद थी आज के, मतलब सबसे पहली पसंद थी, और वो पसंद थी मेरे ख्याल से विष्णु चंद्र जी की। मे भी मैं देख के बता देती हूँ आप सभी को। जी बिल्कुल, विष्णु चंद्र जी की। मैं बिन बुना बिन बीन बजाऊंगा और मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं मेरे नाग राजा, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, सभी को डेडिकेट करते हैं। सुनवा दिया, बीन बजाने हैं हमें भी, बताइए कभी आपने बीन बजाई कुमार जी?
1: नहीं
0: वैसे इशारों पर जाना, तुम्हें इंजॉय।

0: बस तो बीन बजवा दी विष्णु जी आपने, और ये इतनी ज्यादा बीन बजी है, मुझे डर लग रहा है कहीं सांप वगैरह ना आ जाए। मुझे बहुत डर लगता है सांप से, छिपकली से, मुझे ऐसे जानवरों से बहुत, मतलब छोटे छोटे कीट पतंगों से मुझे डर लगता है।
1: गाना था ही बहुत खूबसूरत उन्होंने जी, और कमाल कर दिया हमारे श्रोता ने जिन्होंने इतना खूबसूरत गाना
0: जी।
1: आपके
0: आर्य
1: पास
0: सिद्धि जी जुड़ चुके
1: भेजा।
0: हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम आपका जी। बिल्कुल
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। और राहुल पासी जी का कहते हैं बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, और आंसर्स मेरे पास वैसे ज्यादा नहीं आए हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्किप, ठीक है, क्योंकि आंसर्स मेरे पास ज्यादा आए नहीं है। और यहाँ पे चलते हैं परमार जी, असरानी जी की तरफ। अभी अभी असरानी जी कुछ दिनों पहले ही
1: देखिए बिल्कुल मैं तो हूँ।
0: देवास
1: इससे
0: हुए।
1: पहले आप मेरी पसंद का एक गाना सुनाइए, मैं सुनना चाहूंगा।
0: कौन
1: बस
0: सा,
1: कोई भी सुना दीजिए।
0: कोई मतलब, चलिए ठीक है, बीन बजा रहे थे ना, तो एक काम करते हैं, जब बीन बजती है, सांप आता है, तो सबसे पहले दिमाग में किस बात का आता है, छड़ी का दिमाग में आता है ना, तो लाल छड़ी
1: बिल्कुल
0: मैदान खड़ी।
1: बिल्कुल
0: चलिए सुनाते हैं,
1: सुना
0: एंजॉय
1: दीजिए,
0: कीजिए।
1: फिर मैं आपको बारे में बता रहा हूँ।

0: खड़ी।
1: बिल्कुल लाल छड़ी मैदान खड़ी, और मैदान में खड़ी है लाल छड़ी। और यहाँ पे आरिश सिद्धेश लिखते हैं, बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है, प्रमाण जी शुक्रिया इस प्यारी सी नगमे के लिए।
2: और अजय
1: जी, और अजय भगत लिखते हैं, मेरे भाई आर के रवि जी तो छा गए। जी बिल्कुल, आप भी तो छाए हुए हैं ना, आपके भैया जी भी छा गए हैं और आप भी छाए हुए हैं। और प्रमाण जी लेके आए थे असरानी जी की जानकारी, तो मुझे
2: बिल्कुल बिल्कुल पासी जी
1: मुझे भी सुनना है।
2: पासी जी की
1: जी बिल्कुल, राहुल पासी जी ने पूछा था प्रश्न की असरानी
2: जी के बारे में। असरानी जी का जो जन्म हुआ था जयपुर में हुआ था जी, और एक मध्यवर्गीय सिंधी परिवार जो हिंदुओं में होता है उसमें हुआ था
1: जी, जी,
2: और इनका बचपन का नाम होता था गोवर्धन कुमार असरानी। उनके पिताजी की एक, यानी जिसे आप कहते हैं ना कालीन कह लो या
1: कारपेट,
2: कारपेट के लिए दुकान हुआ करती थी। उनकी चार बहनें और तीन भाई थे, दो बड़े और एक उनसे छोटा था। असरानी जी को व्यापार में कोई रुचि नहीं होती थी और गणित में वे बेहद कमजोर थे।
1: अच्छा, गणित में तो मैं बहुत अच्छी थी बचपन तक, बस आठवीं क्लास के बाद गणित भूल गई।
2: देखिए गणित थोड़ा टफ तो जरूर होता है, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अवश्य जी।
1: मुझे बहुत पसंद है, मतलब वन ऑफ द टॉपर थी मैं क्लास में 10th क्लास तक। उसके बाद से मैंने, जब से मैंने आर्ट्स ली है, तो गणित का मतलब उसने वो अपने रास्ते निकल लिया, मैं अपने रास्ते निकल ली।
2: हाँ जी, हाँ जी। तो असरानी जी का जो जन्म हुआ था जी 1941 में, 20 अक्टूबर 1941 में होता, और 20 अक्टूबर 2025 में उनका निधन हो गया था। वो उनका जो फिल्मी कैरियर था वो 5 दशकों से अधिक समय तक चला फिल्म जगत में। इस दौरान उन्होंने 350 से अधिक हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम भी किया। असरानी ने मुख्य चरित्र हास्य और सहायक भूमिका में भी काम किया। उनकी विशेष रूप से शोले जिसमें जेलर की भूमिका, और हिटलर के रूप में उन्होंने जेलर की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें हिटलर कहा जाता था। आमादवाद, नो रिक्शा वारों में अपनी भूमिका के लिए उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा 1972-1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में 25 फिल्मों में भी काम किया था। उनकी जो चली थी राजस्थान के कॉलेज FTI पुणे से हुई थी। अभिनेता और फिल्म निर्देशक, फिल्म और निर्माता भी थे वो, और वो 1967 से लेकर 2025 तक सक्रिय रहे थे। उनके जीवन साथी यानी बीवी का नाम था मंजू बंसल, और उन्होंने 2 पुरस्कार भी प्राप्त किए, और 11 में नामांकन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार किया था। तो मैं सभी अपने श्रोताओं से यही पूछना चाहूंगा जी, असरानी की फिल्में आपने बहुत देखी है, और सबसे प्यारी और खूबसूरत फिल्म कौन सी थी, तो वो उस फिल्म का आप मुझे
1: नाम लिख के भेजिए, जो आपको कौन सी अच्छी लगती है ये बताना है ना।
2: सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी?
1: और मेरे ख्याल से वन ऑफ द लास्ट मूवी असरानी जी की जो भी रिसेंट में आई है वो है भूत बंगला, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन किया है। क्या ये बात सच है प्रमाश?
2: वो तो ठीक है, बिल्कुल वही इस बात आपकी सच है, लेकिन मैं यही पूछना चाहूंगा अपने श्रोताओं से, असरानी जी की कौन सी ऐसी मूवी थी जो सबसे प्यारी और खूबसूरत लगी थी सभी श्रोताओं, उस फिल्म का नाम बताइए,
1: लिख के भेजिए। जी बिल्कुल, और एंजॉय कीजिए आप सभी। अगली पसंद में सुनवाने वाली हूँ अमीना खान जी की, लिखती हैं गाना, सुनाए वंशिका जी आपको और अमन जी को, प्रमाण जी को, सभी को डेडिकेट है ये गाना, और गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंजॉयबल सॉन्ग लेके आई हैं अमीना जी आप। तो गाने के बोल हैं, हम तो दीवाने हुए यार, बादशाह मूवी का, हम तो दीवाने हुए यार।
2: काफी खूबसूरत और लाजवाब फरमाइश है हमारी अमीना खान जी की, और अमीना खान जी के गाने बहुत ही खूबसूरत प्यारे होते हैं। वंशिका जी, मैंने सुने आपके प्रोग्राम में भी, बड़े ही खूबसूरत प्यारे नगमे लेके आती हैं हमारी अमीना खान जी, तो सुना दीजिए।
1: बिल्कुल दीवाने तो हो गए ना आप सभी की फरमाइशों की, आप सभी के फीडबैक की, दीवाने हो गए हैं, एंजॉय कीजिए।

0: हम तो दीवाने हुए यार, बहुत ही प्यारे पर्सन सुनने को मिली है। और यहाँ पे लिखते हैं अमीना खान जी, लिखते हैं थैंक यू सो मच हमारे गाने को प्ले करने के लिए। और मनीषा शर्मा जी जुट चुके हैं, वेलकम नमस्ते, लिखती हैं आपको भी और मुझे भी
1: बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा शर्मा
0: नमस्ते
1: जी,
0: जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत
0: और
1: नमस्कार
0: गाना
1: आपको।
0: भेज सकती हैं आप। और आरिज सिंधी जी लिखते हैं अमीना जी का गाना बहुत ही प्यारा लगा, और मेरे को असरानी जी की सबसे ज्यादा फिल्म पसंद आती है तकदीर वाले, उसमें उनकी बहुत सारी कॉमेडी भरी पड़ी है। अच्छा जी,
1: और मनीषा खान जी से मैं यही कहना चाहूंगा, वो
0: मनीषा
1: भी
0: शर्मा
1: कोई
0: जी,
1: मनीषा शर्मा जी से यही कहना चाहूंगा कि वो अपनी पसंद का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती
0: कोई
1: हैं
0: और
1: जिसका
0: गाना भी
1: जवाब
0: सुन सकती
1: मैं
0: थी।
1: दूंगा।
0: और राहुल पासी जी लिखते हैं बादशाह मूवी का बेहतरीन गाना और फिल्म का नाम शोले था। अच्छा जी, आप मतलब आंसर भेज रहे हैं, बट आप सभी आंसर भेज रहे हैं तो मिक्सअप करके भेज रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास पहुंचा था जो था संदीप जी का, उसके बाद है आर के रवि जी। और आर के रवि जी लिखते हैं असरानी जी का मेरा एवरग्रीन डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो की है अंग्रेजों के जमाने के जेलर है हम, शोले मूवी का। अच्छा जी, अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे वो। संदीप सुतार जी का है, लिखते हैं चुपके चुपके फिल्म बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले इन्होंने बता दिया, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। संदीप जी से बातचीत हुई थी इनसे? संदीप जी से नहीं, तो इनसे बातचीत करेंगे और
1: नहीं हुई पहले।
0: नहीं, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो संदीप जी। संदीप जी की आवाज नहीं आ रही। नमस्कार।
1: आवाज आएगी मे बी। हेलो संदीप सुतार जी, नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: संदीप सितार जी, सुन रहे हैं आप हमें?
1: एक बार और कॉल कर लेते हैं, अगर इस चल नहीं लगता तो फिर देखते हैं क्या होता है, आगे रब जाने। तेरे दीवाने हुए यार। हाँ जी संदीप
0: हेलो
1: सितार जी,
0: संदीप
1: नमस्ते।
0: जी, क्या
1: ठीक
0: हाल चाल है?
2: है, बढ़िया है। अभी तो बारिश नहीं है, धूप पड़ी है।
1: धूप
0: अच्छा
1: पड़ी है
0: अच्छा
1: हमारी
0: तो
1: तरफ, धूप पड़ी है पर बारिश भी हो रही है।
0: संदीप जी, मैं आपका प्रोफाइल फोटो देख रहा हूँ और देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ये फोटो आपका है क्या?
1: हेलो संदीप सुतार जी, हाँ
2: हेलो। हाँ
0: हाँ जी, आवाज आनी बंद हो गई थी आपकी। चलो कोई बात नहीं। तो
2: हेलो,
0: हेलो, आ रही है आवाज आपको? हाँ
2: आ रही है जी।
1: जी
0: जी, हाँ
1: कैसे
0: जी,
1: हैं
0: कैसे
1: आप?
0: हैं आप?
2: एकदम बढ़िया है जी।
0: बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया आपने, और
1: आप
0: सबसे
1: आपकी जो
0: पहले
1: पसंद
0: दिया।
1: है वो बहुत ही प्यारी है, चुपके चुपके मूवी।
0: हाँ देखी थी
2: हाँ जी,
0: आपने? ये धर्मेंद्र की फिल्म थी, चुपके चुपके देखी थी आपने?
2: तो देखी थी अभी। तो बच्चन, जया भादुरी,
0: हाँ जी, हाँ
2: धर्मेंद्र
0: जी,
2: और
0: बिल्कुल
2: टैगोर,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: धर्मेंद्र।
0: काफी खूबसूरत और प्यारी फिल्म थी ये। और आपने जो आंसर दिया बिल्कुल ठीक और बिल्कुल
1: सटी
0: ठीक
1: सटी
0: था।
1: दा। और सबसे पहले
0: और
1: आपकी
0: सबसे
1: पसंद
0: पहले था।
1: आपने बताई।
0: और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे संदीप जी, आप अपनी पसंद का बताइए।
2: जैसे को तैसा मूवी का एक गाना है। हेलो,
1: बताइए गाने के बोल।
2: भैया
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर बताइए।
2: रे भैया रे भैया रे भैया रे, पापा की नहीं आ रही।
1: भैया रे पाप की नैया रे।
0: आपकी नहीं है? अच्छा, काफी खूबसूरत गाना है ये।
1: मैं पहली बार
0: तो
1: सुनने वाली हूँ इस गाने को।
0: और संदीप जी, क्या करते हैं आप?
1: रेडियो
2: ये हम
1: हॉस्टल में।
2: फर्नीचर का
1: अच्छा,
2: काम करते हैं। हाँ,
0: हर टाइप का फर्नीचर बना लेते हैं आप?
2: बना लेते हैं। सुतार
0: सोफा?
2: अपना सरने में, तो हम फर्नीचर का ही काम करते हैं
0: अच्छा
2: जी।
0: अच्छा ठीक है जी, मुझे पता
1: तो
0: नहीं था इस बारे में। तो
1: जी, तो गाना आपका बहुत प्यारा है,
0: बहुत ही खूबसूरत प्यारा गाना है। जो अनुष्का जी, सुनाइए फिर
1: तो
0: इनसे
1: चलिए
0: बातें
1: सुनवा दिए
0: करते हैं
1: आपके
0: बाद
1: गाने
0: में।
1: को, एंजॉय कीजिए।
2: जी शुक्रिया।
1: वेलकम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।

0: और एक सवाल फेंका है मैंने, यानी कि चैट रूम में सवाल फेंक दिया है, आप सभी को बताना रहेगा कि बॉलीवुड में सबसे लंबा गाना, मतलब सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाला गाना, जिस जो कि बहुत ही लंबा है, वो कौन सा है? वो लेके भेजना है आपको चैट रूम में। आप सवाल सवाल का जवाब दे सकते हैं, और सबसे पहला जवाब जिनका आएगा उनकी पसंद का गाना प्ले करूंगी मैं जरूर। और यहाँ फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, बहुत ही प्यारी पसंद है, दैया रे दैया रे, बेहतरीन पसंद सुनवाई है यहाँ पे संदीप सुतार जी ने। और प्रमाण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पसंद के बारे में?
1: ओ, गाना तो बस लाजवाब था जी। अरे सत्ता जी का गाना तो A1 और बहुत ही खूबसूरत,
0: जी बिल्कुल सही बात है, गाना बहुत ही प्यारा था, अच्छा लगा ना।
1: बहुत अच्छा था जी। और ये हमारे साथ जुड़ गई हैं वंशिका जी, ये अपनी रूही जी, रूही ओबराय जी,
0: अच्छा,
1: ये पहली बार मेरे प्रोग्राम में आई हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इन्होंने पहली बार आते ही हमारे प्रोग्राम में एक प्रश्न पूछा है।
0: जी बिल्कुल।
1: इन्होंने पूछा है, हरे कांच की चूड़िया के बारे में बताइए कुछ।
0: हरे कांच की
1: तो
0: चूड़ियां, और सही सवाल लेके आई हैं, सावन के महीने में हरे कांच की चूड़ियां ही ढूंढती हैं
1: हाँ,
0: सभी
1: बिल्कुल
0: लड़कियां।
1: बिल्कुल रोहित राय जी, सुनिए आप, ये फिल्म हुई थी 1967 में रिलीज, और इसके निर्माता थे जी किशोर साहू, और निर्देशित किया था इसे किशोर साहू जी ने ही।
0: अच्छा
1: ये
0: जी,
1: एक सामाजिक पारिवारिक हिंदी ड्रामा फिल्म थी। इसमें विश्वजीत, नैना नैना साहू और शिव कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के बारे में अधिक मैं आपको क्या बताऊं। रिलीज हुई थी ये 1 जनवरी 1967 को, और निर्देशक थे किशोर साहू, और निर्देशक भी यही थे। संगीत था फिल्म में शंकर जयकिशन का, और गीतकार थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र। तो नैना साहू यानी मोहिनी एक मेडिकल की छात्रा होती है, वह एक प्रोफेसर की बेटी होती है। मोहिनी और रवि मेहरा यानी विश्वजीत एक दूसरे से प्यार करते हैं। रवि एक अमीर व्यापारी का बेटा होता है। कहानी तब एक बड़ा नाटकीय मोड़ लेती है जब मोहिनी गर्भवती हो जाती है, और वह बच्चे के पिता का नाम बताने से इनकार करती है सभी को। इससे उससे उसके पिता टूट जाते हैं। इस नाम से एक टीवी धारावाहिक भी बना था जी,
0: क्या नाम था उसका?
1: सारावन पर आता था जी ये
0: स्टार
1: गाना,
0: वन पे, अच्छा बहुत पहले की बात है,
1: सारावन पर आता था जी। हाँ
0: सहारा वन पे, बहुत पहले की
1: जी,
0: बात है यानी।
1: तो ये फिल्म के बारे में रोहित ओबराय जी मैं इतना ही बताना चाहूंगा। बस आप मुझे ये बताइए, सभी श्रोताओं से मैं ही पूछना चाहूंगा, ये किशोर साहू निर्देशित जो फिल्म थी हरे कांच की चूड़िया, इसमें विश्वजीत जी होते थे और नैना साहू जी होते थे। तो नैना साहू और विश्वजीत के दोनों के फिल्मी जो किरदार उन्होंने निभाए थे उनके नाम बता दीजिए। बस यही प्रश्न आप दोनों सभी
0: जी,
1: श्रोताओं
0: और
1: से।
0: यहाँ पे मैंने जो सवाल पूछा था ना यहाँ पे चैट बॉक्स में, उसके सवालों के जवाब मेरे पास पहुँचने लगे हैं। आप सभी बने रहिए चैट बॉक्स में, और मेरे पास जब तक अच्छे भले सवालों के जवाब यहाँ पे आ जाते हैं जब मैं अनाउंस कर देती हूँ विनर, और आप सभी एंजॉय कीजिए जब तक। किन की पसंद? मुन्ना जी की पसंद, जो कि मुन्ना जी नहीं, मतलब सरफराज जी की पसंद, सरफराज पटेल जी की पसंद है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, ये वाला गाना सुनना
1: बहुत ही
0: चाहेंगे। बेटा
1: खूब,
0: बेटी बेटा गा मूवी
1: बेटी
0: का
1: बेटे फिल्म थी जी, बहुत
0: 1964
1: ही
0: चौसठ की,
1: खूबसूरत, 1964 की, सुनील दत्त इसमें हीरो थे।
0: मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुरी जी की आवाज में ये वाला गाना सभी श्रोताओं को डेडिकेट करते हैं। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, खुदा की कसम ये खुदाई ना होती।
1: दुआ खुदाई ना।
0: एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, खुदा की कसम खुदाई ना होती, है ना प्रमाण जी? कैसा लगा गाना?
1: बहुत ही खूबसूरत प्यारा गाना था मुश्किल जी।
0: ये डिमांड बहुत ही सुंदर खूबसूरत रही मेरे पास, और अमीना खान जी लिखती प्रोग्राम शानदार रहा है जी। बिल्कुल, अभी तो का बाकी है ना। और यहाँ पे सरफराज पटेल जी लिखते थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय सॉन्ग। वेलकम सरफराज पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गाना बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे मेरे पास, मैंने जैसे कि बताया था, चैट बॉक्स में जाइए और आप सभी इंजॉयमेंट कीजिए। और वहाँ पे भी एक सवाल पूछा था मैंने, तो उस सवाल के विजेता कौन बने हैं वो भी बता देती हूँ परमार जी। आप भी आए थे क्या चैट रूम में? आइए ना। और यहाँ पे चैट रूम में मैं जैसे सवाल पूछा, तो वहाँ पे सबसे पहला जवाब मेरे पास पहुंचा है आमना खान जी का। यहाँ पे संदीप सुतार जी भी हैं, बट उनका आंसर सही नहीं है। आंसर सही है आमना खान जी का, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गाना था जो कि 21 से लेकर 23 मिनट के आसपास का था,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: इतना लंबा सॉन्ग था। यही
1: बहुत
0: बॉलीवुड का सबसे लंबा गाना यही था। तो आमना जी, आपका गाना बिल्कुल सही है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे वो मुझे लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। और प्रमा जी, क्या जानकारी लेके आए हैं? कोई एक
1: जी। बस
0: जानकारी?
1: ये जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जवाब एक भी श्रोता ने अभी तक नहीं दिया,
0: कोई बात
1: इस
0: नहीं।
1: प्रश्न को मैं थोड़ा क्विट करता हूँ। और मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि सुमन कल्याणपुर जी का जन्म कब हुआ था और उनका निधन कब हुआ, इस सवाल का जवाब दीजिए। सुमन
0: और अगर कोई
1: कल्याणपुर जी,
0: लिसनर कॉल पिक नहीं कर सकते, या कोई दिक्कत है, कोई भी है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या मे भी किसी काम में व्यस्त है, तो आप लिख के भेज दीजिए नो कॉल। और गाना लिख के मुझे जरूर भेजिएगा कौन सा सुनना है, क्योंकि मैं फिर कॉल भी ना
1: प्रश्न
0: करूँ
1: एक
0: तो
1: बार
0: गाना
1: फिर
0: कैसे
1: दोहरा
0: सुनाऊँ
1: दो
0: जी।
1: श्रोताओं को।
0: प्रश्न आपको दोबारा बता देती हूँ, क्या प्रश्न था?
1: सुमन कल्याणपुर
0: सुमन कल्याणपुरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था वो आपको लिख के भेजना है, कहाँ पे और कब हुआ था, यानी कि ईयर लिख के भेजना है, डेट
1: उनका
0: ऑफ बर्थ,
1: निधन कब
0: और
1: हुआ।
0: मतलब डेट ऑफ बर्थ और निधन डेट, यानी कि जब वो उनकी मतलब डेथ हुई थी वो दिन की डेट और जिस दिन उनका जन्म हुआ था, वो दोनों डेट आप लिख के मुझे भेज दीजिए। और जिनका सबसे पहले जवाब है उनसे बातचीत करेंगे, जरूर करेंगे। और यहाँ पे अगला गाना मैं सुनवाने वाली हूँ जो पसंद मेरे पास पहुंची किनकी। ये पसंद है मेरे पास, क्या नाम है आपका, नाम नहीं लिखा है इस नंबर पे, लास्ट में 865 आ रहा है। लिखते हैं गाना, सुना है वंशिका जी, ओ मेरी महबूबा। तो चलिए आपका गाना सुनवा देते हैं। ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। और यहाँ पे मुझे लग गई है ठंड, आप सभी एंजॉय कीजिए इस गाने को और मैं ठंड दूर करके आती हूँ। बहुत ही प्यारा गीत है ना प्रमाण जी।
1: बिल्कुल सुनाइए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, ओ मेरी महबूबा। बिल्कुल ओ मेरी महबूबा। और यहाँ पे आर के रवि जी लिखते हैं, आपके यहाँ मौसम बदलने पर एक स्पेशल शायरी, इस सुहाने मौसम में कोई तो मोहब्बत जता दे, इस सुहाने मौसम में कोई तो मोहब्बत जता दे, गरम गरम पकोड़े और एक कप चाय पिला दे।
1: वाह वाह वाह, क्या खुश शायरी की है।
0: और दिला का
1: और बिल्कुल दिल करने लगा मेरा बशका जी, चाय और पकौड़े खाने को।
0: जी दिल का सौदा फिर कभी कर लेंगे गालिब, दिल का सौदा फिर कभी कर लेंगे गालिब, पहले कोई भूखे पेट को दो समोसे तो खिला दे।
1: वाह वाह वाह वाह
0: भूख
1: वाह,
0: लगा दी आपने मुझे। और यहाँ पे आंसर्स की तरफ चले तो सबसे पहला आंसर है सर्वजीत सेठी जी का, और उसके बाद है संदीप सुतार जी और अमीना खान जी। बट सबसे पहले सर्वजीत सेठी जी है ना, तो उनसे बातचीत करते हैं। अगर सर्वजीत जी आपको कॉल मिलाया जाए ना मिलाया जाए मुझे बताइएगा। और जब तक सर्वजीत जी मुझे बता रहे हैं, जब तक एक गाना प्ले करूंगी जो कि मेरे पास पसंद पहुंची अमीना जी की, क्योंकि अमीना जी विनर बनी है ना, चैट बॉक्स में जो सवाल था उसके विजेता बनी है ना, तो इन्होंने गाना भेजा है मुझे। लिखती है, गाना सुनना है काली काली जुल्फों के फंदे, और काबुल बुखारी जी, और साथ में है राहत फतेह खान जी, इनकी आवाज़ में
1: अमीना
0: है
1: जी के गाने बेहद खूबसूरत, बढ़िया,
0: और
1: प्यारे होते हैं, तो
0: नज़ाकत
1: सुन
0: भरे
1: लीजिए।
0: गाने होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल सुनवा दिया,
1: अमीना जी का गाना सुनाइए, उसके
0: इंजॉय
1: बाद
0: कीजिए। उसके बाद सरवजीत जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ बता दीजिए कॉल करूँ या ना करूँ, इंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है सरोजी सेठी जी की, आज विनर बने हैं ना, तो उनका गाना तो भी प्ले करूंगी। बट ये जो गाना सुनने को मिला था अमीना खान जी की पसंद, यानी आमना खान जी की पसंद, लिखती हैं कि बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमारे गाने को प्ले
1: अमीना
0: करने के लिए।
1: खान जी
0: और
1: के गाने अनुष्का जी बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही दिलकश
0: दिलकश होते
1: होते
0: हैं,
1: हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत ही अच्छे लगे मुझे आपका गाना अमीना खान
0: और
1: जी।
0: आमना खान जी ये भी लिखती हैं कि आर जे प्रमाण जी, मैं आपकी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ।
1: बहुत बहुत
0: आपको
1: शुक्रिया
0: स्टूडेंट मिल
1: बेटा,
0: गई आमना खान जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल आमना
0: और
1: खान जी, और मैं आपके इस फीडबैक से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और खुश हूँ, और तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इतना
0: जी
1: अच्छा
0: बिल्कुल।
1: फीडबैक
0: और
1: दिया।
0: अरुण मंडल जी भी जुड़ चुके हैं आंसर के साथ में, स्वागत है आपका। बट आंसर तो सबजी सेठी जी का आया ना सबसे पहले मेरे पास। और यहाँ पे आर के रवि जी लिखते, काली काली जुल्फों के, वेरी नाइट, गुड गुड सॉन्ग सुनने को मिला, फरमाइश करने वाले को सलाम। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, गाने तो प्यारे हैं ये। और ये वाला जो गाना मुझे सुनवाया आमना जी आपने, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। आप विजेता बनी थी ना, तो गाना तो बजवाना बनता ही है। और अगला गाना मैं सुनाऊंगी मनीषा शर्मा जी की पसंद, बट उससे
1: चलिए
0: पहले
1: अभी
0: सवजीत सेठी जी, एक बार ट्राई कर लेते हैं अगर कॉल उठा पाते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती ना, वो फीचर मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है। एक बार ट्राई कर लेती हूँ, अगर वो यहाँ से कॉल उठा लेते हैं तो काफी अच्छा
1: और
0: रहेगा।
1: इसके साथ साथ
0: और उठा
1: ही
0: लिया, वेरी गुड। सवजीत सेठी जी नमस्ते।
2: वंशी राम नमस्ते, परमार
0: नमस्ते जी, नमस्ते, सरप्राइज दे दिया आपने।
2: सचिव नमस्ते,
1: बहुत बहुत नमस्ते सरोज जी सेठी साहब, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा ही
2: जी,
1: हर्षोल्लास हो रहा है मेरे दिल में
0: कि
1: आप
0: आपसे बातचीत हो
1: आपके
0: मुझे इससे
1: पास।
0: बहुत खुशी हो रही सर, आप दोनों से बातचीत करते हुए सर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही सर।
1: नहीं मैं यही सोच रहा था, पता नहीं सर जी से आज बात हो पाएगी या नहीं, लेकिन
0: हो गई।
1: आपका
0: चलिए
2: सर, पिछले हफ्ते मैंने दोनों को मिसेस में मतलब मिस किया, दोनों को आप प्रोग्राम आया था क्या पिछले हफ्ते
0: जी,
2: सर?
0: बिल्कुल पिछले हफ्ते
1: क्या
0: आया था
1: क्या बात हो गई थी, क्यों मिस किया, आ नहीं पाए थे आप प्रोग्राम में?
2: परमार सर जी, मैं पिछले हफ्ते 2:30 बजे प्रोग्राम लेट खत्म हुआ था अमन सर जी का,
0: जी जी जी
2: उसके बाद मैं भूल ही गया सुन नहीं पाया मैं आपका
1: बाकी
2: प्रोग्राम
1: प्रोग्राम अमन जी के प्रोग्राम सुनते सुनते आप इतना गुम हो गए, क्योंकि उनके प्रोग्राम होते ही बहुत
2: सर भूल
1: खूबसूरत
2: गया
1: अच्छे प्रोग्राम होते हैं, तो आप उसमें
2: जी
1: बिजी
2: जी
1: रह
2: जी
1: गए।
2: सर
1: चलो चलो कोई बात नहीं, चलो इस बार आए बहुत अच्छा लगा हमें, और
0: बिल्कुल
1: आपसे बातें
2: जी,
1: करके भी
2: वंशिका
1: बहुत
2: मैम
1: खुश।
2: प्रोग्राम पॉडकास्ट में आएगा ये वाला, 6 हफ्ते
0: जी
2: बाद
0: बिल्कुल
2: आया होगा
0: जी, पिछले हफ्ते का भी पॉडकास्ट आया था और इस हफ्ते का भी मैं पॉडकास्ट अपलोड जरूर कर दूंगी, आप सुन लीजिएगा
2: जी
1: पॉडकास्ट
2: जी
1: सुन
2: ओके
1: लीजिएगा, पिछले हफ्ते का भी है और इस हफ्ते
0: इस
1: का भी
0: हफ्ते का भी
1: सुनिएगा।
0: है जी।
1: और
0: और
1: कौन सा
0: सबजी
1: गाना
0: जी,
1: है
0: अभी आप
1: सर?
0: विजेता बने उसके लिए बधाइयां। और आप बताएं कि अपनी पसंद का एक बार आंसर बता दीजिए सभी श्रोताओं को।
2: आंसर है सुमन कल्याणपुरी का जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था
1: बिल्कुल
2: और
1: बिल्कुल
2: उनकी मृत्यु हुई थी 31 मई 2026 को।
1: बिल्कुल बिल्कुल सटीक आंसर दिया सरोजी
0: जी, और आप
1: सेठी जी,
0: बताएं अपनी पसंद का
1: और
0: कौन सा
1: कौन
0: गाना
1: सा
0: सुनना
1: पुराना
0: चाहते।
1: गाना और खूबसूरत गाना लेके आए हैं वो भी बताइए, क्योंकि आपके गाने मुझे बहुत ही खूबसूरत प्यारे लगते हैं, तो सुनाइए
2: सर मैं
1: सरोजी
2: लेके आया हूँ होल्ड इज गोल्ड गिफ्ट
0: जी जी
1: मुझे पता
0: बताइए
1: था वो ही लेके आए होंगे आप।
2: जी। ओ तेरे नैनों के मैं जीव
1: वाह
2: जलाऊंगा,
1: वाह वाह क्या गा रहा है,
2: अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा
1: अनुराग फिल्म का गाना है
0: जी
1: ये,
0: जी बहुत ही प्यारा
2: जी
0: आपने
2: जी
0: गुनगुनाया और बहुत
1: विनोद
0: सुंदर
1: मेहरा
0: गाना
1: और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया
0: जी,
1: गाना,
0: बिल्कुल
1: बहुत ही खूबसूरत गाना,
0: बहुत
2: सर
0: ही
2: जी
0: खूबसूरत गीत लेके आए हैं
2: जी
0: और गुनगुनाया भी आपने काफी बेहतरीन।
1: और एक बात और, हमारे जो तरुण जान जी हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा है मुझसे दुश्मन
0: वो
1: फिल्म के
0: सवाल
1: बारे
0: अभी
1: में,
0: जवाब थोड़ी देर में देते हैं,
1: तो
0: जब तक आप
1: सरोजी
0: सभी सवजी
1: सेठी
0: जी
1: जी
0: का
1: आप
0: गाना
1: अगले
0: चुन।
1: प्रश्न के लिए भी थोड़ा तैयार रहिएगा, तो आपकी पसंद का गाना सुनते हैं पहले सरोजी सेठी की खूबसूरत
0: और
1: प्यारी और
0: उसके
1: फरमाइश वंशिका जी प्ले कर दीजिए।
0: जी, और उसके बाद अभी मनीषा जी का गाना है जो उसके बाद सुनाऊंगी, एंजॉय कीजिए। वेलकम जी, वेलकम।

0: सबजी सेठी जी, आपका गाना बहुत ही प्यारा लगा। तेरी नैनों के दीप मैं जलाऊंगा, है ना, बेहतरीन पसंद थी ना प्रमाण जी।
1: देखिए ऐसा है अनुष्का जी, सरोजीत सेठी जी जो होते हैं, इनके जो गाने भी होते हैं, कोई भी गाना हो, एकदम बढ़िया और लाजवाब होता है,
0: बिल्कुल
1: और इनके गाने मुझे बहुत ही
0: अच्छे
1: ज्यादा
0: लगते हैं।
1: अच्छे लगते
0: अमीना
1: हैं,
0: खान
1: क्योंकि
0: जी
1: मैं भी पुराने गानों का शौकीन हूँ।
0: जी,
1: आपको
0: बात तो सही
1: बताइए।
0: है। अमीना खान जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रमाण जी मेरी तारीफ के लिए। जी गाना तो बेहतरीन लाती है ना, तारीफ तो आप सभी की बनती है। हम अगर आप सभी की तारीफ करने बैठे ना, तो मेरे ख्याल से पूरे 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, 25 घंटे मांगने पड़ेंगे भगवान से
1: तो ये
0: हमें।
1: 24 घंटे वाला बात नहीं है जी, ऐसे 3-4 एपिसोड निकल
0: हाँ ये कह सकते
1: जाएंगे।
0: हैं। सही बात है। और यहाँ पे क्या कह रहे थे प्रमाण जी, बताइए।
1: देखिए अभी वो तरुण जान जहाज जी ने पूछा, दुश्मन फिल्म के बारे में बताइए, जो राजेश खन्ना जी, मीना कुमारी जी और मुमताज की थी। तो ये फिल्म थोड़ी सी टिपिकल टाइप फिल्म थी, सभी को ये कहना पाऊंगा। और ये वीरेंद्र शर्मा जी का एक नावल हुआ करता था, उस पर आधारित थी। और इसे दुलाल गौहा ने 1972 में निर्देशित करके रिलीज किया था। और ये जो फिल्म थी, ट्रक ड्राइवर थे हमारे राजेश खन्ना जी फिल्म में, और ये सुपरहिट साबित हुई थी ये फिल्म। और टॉप 10 की जो लिस्ट थी, उसमें तीसरे नंबर पर रही थी ये। 2012 में द हिंदू अखबार द्वारा फिल्म की समीक्षा में कहा गया कि सुरजीत सिंह की भूमिका निभाते हुए एक लापरवाह दबंग ट्रक ड्राइवर, जिसे देसी शराब पीने और वैशाल्य में जाने का शौक था,
0: अच्छा जी,
1: अभिनेता को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है। इस फिल्म में हुआ ये था कि शराब पीकर अपने राजेश खन्ना जी, जिनका नाम सुधीर था, ट्रक चला रहे थे, और उसमें मीना कुमार जी की अस्मैट थी, उस ट्रक के नीचे आकर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जज ये फैसला सुनाते हैं
0: सॉरी।
1: कि जब तक इनको ये सजा दी जाती है राजेश खन्ना जी को, कि आप जाके मीना कुमारी जी की फैमिली में जाकर
0: जी जी
1: जो फर्ज उनके हस्बैंड निभाते थे,
0: हाँ जी, हाँ
1: यानी
0: जी,
1: जो उनका पालन पोषण करते थे, उस परिवार में जाकर ये सब फर्ज आप निभाएंगे राजेश खन्ना जी, ये एक सजा दी थी जज ने।
0: मौसम बहुत बदल रहा है, आप सभी अपना ध्यान रखिए, मुझे ठंड लग चुकी है, आप सभी
1: और
0: बच के रहिए।
1: ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी, आप देखिएगा, यूट्यूब पे देखिए या थिएटर में देखिए, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म
0: जी
1: थी।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: थिएटर में
1: इसी
0: तो आप देख
1: फिल्म
0: नहीं
1: से
0: पाएंगे वैसे।
1: संबंधित ये जो हमारी तरुण जहान जी हैं, उनको शायद सेटिस्फेक्शन मिली होगी। तो इसी फिल्म से संबंधित एक गाना मैं
0: गाना या
1: पूछ
0: सवाल?
1: सवाल पूछना चाहूंगा,
0: जी
1: जो एक
0: जी
1: गाने से संबंधित है। तो इस फिल्म का सबसे
0: ये
1: फर्स्ट
0: आज का आखिरी सवाल रहेगा।
1: या आखिरी सवाल रहेगा, और ये इस प्रश्न में मैं आपसे यही पूछूंगा कि इस फिल्म का सबसे पहला गाना कौन सा था,
0: यानी सबसे
1: जो
0: पहले रिलीज जो हुआ था।
1: हाँ, और सबसे पहले नहीं, फिल्म में स्टोरी के अनुसार,
0: अच्छा,
1: जब ये
0: स्टोरी के
1: फिल्म,
0: अनुसार सबसे पहले जो कौन सा गाना फिल्म आया है, मतलब
1: हाँ
0: फिल्म के अगर टाइमिंग के
1: फिल्म
0: हिसाब से सुने।
1: में आया और ये टाइमिंग के हिसाब से आया, तो उस गाने का नाम लिख के
0: एक
1: भेज
0: बार आप फिर
1: दीजिए।
0: से दोहरा दीजिए, कौन सी मूवी में, कौन सी बताना है?
1: ये फिल्म थी दुश्मन।
0: दुश्मन मूवी में, जो पुरानी वाली दुश्मन मूवी है, उसमें आपको सबसे पहले कौन सा गाना सुनने को मिलता है फिल्म में? अगर आप टाइम वाइज पूरी फिल्म को स्टार्टिंग से देखें, स्टार्ट करें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन सा सॉन्ग आता है, वो आप सभी को मुझे बताना है। और आंसर्स तो आपको पता ही है कहाँ भेजने। और अमीना खान जी क्या लिखती हैं? जी बिल्कुल, मूवी का नाम है दुश्मन, कौन से ईयर बता दीजिए आप एक बार।
1: ये 1972 में हुई थी,
0: उन्नीस
1: मीना
0: सौ
1: खान जी
0: बहत्तर
1: रिलीज।
0: और यहाँ पे लिखती हैं, बिल्कुल सही है, तारीफ तो सबकी बनती है, सब एक से बढ़कर एक हैं जी बिल्कुल। और इसी बात पर अगला गाना सुनवा रही हूँ, मनीषा शर्मा जी की पसंद, लिखती हैं गाना, सुना है। सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना लिखा है। गाना मैं गा नहीं पा रही हूँ, मुझे काफी ज्यादा सर्दी हो रही है, बट आप सभी एंजॉय कीजिए इस गाने को, श्रेया घोषाल जी की आवाज में ये गाना। और आंसर्स मेरे पास आने लगे हैं, आप सभी भेजिए आंसर्स और एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गीत सुनने को मिला। परमा जी कैसा लगा आपको ये गाना?
1: बेहद खूबसूरत और लाजवाब गाना था जी, मनीषा शर्मा जी का था ना।
0: जी बिल्कुल, मनीषा जी का था। और लिखती है, थैंक यू सो मच मनीषिका जी, आपने मेरा गाना प्ले किया, धन्यवाद सर जी। और आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास, बट सबसे पहला आंसर तो बहुत सारे आए हैं, बट जो सही आंसर आया है वो है मेरे पास संदीप जी का और अमीना खान जी यानी आमना खान जी का। और
1: आमना खान जी इसका
0: सबसे पहले तो संदीप सुतार जी का है ना। अच्छा जी, तो संदीप सुतार जी आप बता दीजिए मुझे कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप। और यहाँ फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास, लिखते हैं अरुण मंडल जी, बेहतरीन गाना सुनने को मिला है, बहुत
1: भी
0: ही
1: शुरू कर
0: प्यारी
1: दी
0: पसंद
1: मेरे
0: है,
1: ऊपर।
0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है। और राहुल पासी जी कहते हैं बेहतरीन गाना सुनने को मिला, लाजवाब पसंद है, बहुत ही अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं। मनीषा जी आपका गाना बहुत ही बेहतरीन लगा। और जैसे कि बता रही हूँ संदीप सुतार जी का है, तो संदीप सुतार जी तो एक बार मुझे बता दीजिए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप विजेता बने हैं फिर से। आज मेरे ख्याल से संदीप सुतार जी दो बार विजेता बने हैं या एक बार, दूसरी बार विजेता
1: दो
0: बने,
1: बार बने
0: मे बी दूसरी बार विजेता बने हैं। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे प्लीज मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पे आर के रवि जी भी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा, सभी आज के गाने बहुत ही बेहतरीन सुनने को मिले हैं। जी बिल्कुल, आप सभी तो जो कार्यक्रम में ना जो चार चांद लगाने का काम होता है ना, वो आप सभी करते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। हम तो बस
1: बिल्कुल
0: प्रेजेंट करते हैं
1: बिल्कुल
0: गाने को,
1: बिल्कुल,
0: गाने आप सभी के होते
1: पसंद
0: हैं।
1: आपकी होती है जी, और चॉइस भी आप ही की होती है, और आपकी चॉइस और आपकी पसंद बेहद खूबसूरत और लाजवाब होती है, तो हमें तो अच्छी लगती है और भी श्रोताओं को बहुत ही खूबसूरत लगती है।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बहुत सही
1: ये
0: बात
1: बातें आप संदीप सुदास जी से करेंगी या फिर अमीना खान जी
0: जी।
1: से?
0: बातें किसी अभी तो किन्हीं से नहीं कर सकते, क्योंकि समय भी बहुत कम है मेरे पास, और विजेता जो बने हैं उनसे एक बार बातचीत हो चुकी है और गाना भी आ चुका है मेरे पास। लिखते हैं गाना सुना है, काहे छेड़ छेड़ मोहे, देवदास मूवी का गाना सुनना चाहेंगे संदीप जी, तो इसी गीत के साथ इजाजत भी लेना चाहेंगे। तो प्रमाण जी कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि ये आज का जो खूबसूरत प्रोग्राम था, ये आप ही की वजह से खूबसूरत हुआ। हमारा इसमें कोई खास रोल नहीं था, कोई हमारी खास अदाएं भी नहीं थी,
0: अच्छा जी,
1: तो जो भी था आप ही सभी श्रोताओं का था, और आप सभी श्रोताओं ने इतने इतने अच्छे गाने और इतने इतने अच्छे आंसर दिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की मुझसे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा दिल बाग बाग हो गया वर्षिका जी। और मैं चाहूंगा कि मेरे सभी और भी श्रोता मेरे प्रोग्राम में अगले संडे को आए,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: उनसे
0: आएंगे।
1: भी मैं खूबसूरत खूबसूरत बातें करूंगा और खूबसूरत खूबसूरत आंसर जवाब भी सवाल भी पूछूं, जिनका
0: जी
1: जवाब
0: बिल्कुल,
1: लूं और उनसे बातें भी करूं। तो वशिष्ठ जी, आज का
0: तो
1: प्रोग्राम आपको कैसा लगा? और श्रोताओं से जरूर पूछिएगा
0: जी
1: कि
0: मुझे तो बहुत
1: आपसे
0: अच्छा लगा
1: बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे सभी श्रोता इस बारे में बताएंगे कि आपको
0: जी,
1: आज का प्रोग्राम
0: कैसा
1: कैसा
0: लगा? जी
1: लगा।
0: बिल्कुल, आई
1: अगले
0: नो,
1: हफ्ते भी इसी टाइप से हम प्रोग्राम करेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत
0: आई नो
1: बहुत
0: कि आप सभी को अच्छा लगा है और मुझे तो अच्छा लगा ही आप सभी से बातचीत
1: बहुत बहुत
0: करके।
1: शुक्रिया, आपने आपसे बातें हुई, आपकी आवाज़ सुनी मैंने, और आपसे बातें करके मुझे बहुत ही खूबसूरत अच्छा एहसास
0: जी
1: हुआ।
0: बिल्कुल, एंजॉय कीजिए आप
1: और
0: सभी, अब बस यही कहना चाहेंगे, एंजॉय कीजिए और सुनते
1: चलो अब
0: रहिए रेडियो हॉटस्टार
1: टाइम
0: और
1: की
0: रेडियो
1: नज़ाकत
0: मना।
1: को देखते हुए गाना सुनवा दीजिए आप।
0: जी गाने के साथ ही
1: हम
0: इजाजत लेते हैं, और एंजॉय कीजिए आप सभी रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे, और रेडियो गाना बजाते रहिए दिल से।
1: तो
0: और
1: ये गाना संदीप सितार जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये गाना भेजा, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आपसे बातें करके भी मुझे काफी अच्छा लगा था। तो अगली
0: एंजॉय,
1: बार फिर जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सितार जी, और सभी श्रोताओं को बाय बाय कहना
0: टेक केयर,
1: चाहूंगा, टेक केयर भी
0: बाय।
1: कहना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने
0: जी
1: सभी
0: बिल्कुल,
1: चाहने वालों का,
0: ध्यान
1: अपने
0: रखिए,
1: परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने माता पिता का, सबका ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी
1: और
0: टेक
1: आगे
0: केयर एंड बाय, क्योंकि
1: और यही
0: ध्यान,
1: कहना चाहूंगा, हर बार आप इसी तरह जुड़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय
0: बाय
1: बाय
0: बाय बाय
1: बाय।
0: बाय, ध्यान रखिए अपना, मेरी तरह थर मत लगाइएगा, बच के रहिएगा, एंजॉय कीजिए। और अच्छा जी, संदीप सुतार जी लिखते हैं आज का प्रोग्राम ए वन रहा, थैंक यू सो मच, अजय भगत जी, अमीना खान जी, आमना खान जी और सभी लिसनर्स, सभी कहते हैं बाय, टेक केयर, बाय बाय और एंजॉय कीजिए, बाय।

और आमना खान जी ने मुझे कुछ अच्छी सी चीज लिखी भेजी, लिखती हैं, आज प्रोग्राम पंजाबी कड़ी की तरह बिल्कुल लगा। अच्छा जी, पंजाब की कड़ी खाइएगा कभी आके, फिर पता लगेगा बहुत टेस्टी। मेरा तो पेट में मतलब चूहे कूदने लग गए। इंजॉय कीजिए, टेक केयर।

चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूडी चॉइस आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज स्टार मूडी चॉइस का शो लेकर, और सोचेंगे कि मूडी चॉइस ऐसा क्या है। तो मूडी चॉइस आज का एक अलग तरह का थीम होता है, महीने में एक बार आता है, और जो आज का मूड दिया गया है ना, यानी फिल्मों में वो साइड हीरो का अर्थ ये हुआ कि यानी कि पूरे फिल्म में वो नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए मेहमान होते हैं। जैसे कि फिल्म अगर हम लेते हैं साजन का घर, उसमें मेन हीरो है हमारे वो ऋषि कपूर जी, और साथ साथ उनमें जो एक और यानी कि कोई है जो उसमें शायद दीपक, यानी दीपक तिजोरी नाम है उनका जी, उन्होंने वहाँ पे काम किया है, वो साइड हीरो हो गए। जैसे कि अगर फिल्म दिल तो पागल है लेते हैं, उसमें मेन हीरो है शाहरुख खान और अक्षय कुमार भी रहते हैं, तो वो हो गए हैं साइड हीरो। वैसे अगर हम यानी कुछ कुछ होता है लेते हैं, उसमें आते हैं हमारे सलमान खान आते हैं, वो हो जाते हैं साइड हीरो, मतलब उनका रोल छोटा सा होता है। तो इस तरह की ऐसे ऐसे गाने की डिमांड करनी है, बहुत से दोस्त समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, वो हीरो हो या हीरोइन है, अगर उन पर फिल्माए हुए गाने अभी भी चाहें तो भेज सकते हैं, बिल्कुल अभी लाइनें खुली हुई हैं, भेज सकते हैं। और फिलहाल मेरे पसंद के गाने इंजॉय कीजिए, आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

बिल्कुल, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? अब बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। वैसे उमंगे लिखी हैं, जवानी लिखी है, और तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। अब बहुत से दोस्त जुड़ गए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफराज यानी सरफू भाई साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, और वेलकम करते हैं। सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और सुनीता गोप जी बहुत बहुत वेलकम है सरायकला झारखंड से। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ सर्वजीत शेट्टी जी वेलकम करते हैं आपका भी। और आत्माराम पाटिल जी वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ हमारे संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और हमारे ये निर्मल रॉय जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि सच गई है महफिल सुर संगीत का अमन जी के द्वारा। अशमा बांध दी है आपने शाम के महफिल का, सजता रहे और बजता रहे यूं ही मधुर संगीत, और हम लोग यहाँ पे मजे लेकर ऐसे ही अजय जी के दुकान में बैठकर संगीत का और चाय का चुस्की लेते रहेंगे। जी लेते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ हमारे रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी प्रियंका जी। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। संध्या पटेल जी वेलकम है। जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रहे हैं सभी का वेलकम करते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले ये प्रियंका जी के गाने के साथ, इन्हें सुनना है। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता।

0: बिल्कुल बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, और हमें तुमसे मोहब्बत है, सच में बताना भी नहीं आता। और फीडबैक अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, और ये पहले भी जुड़े हैं लेकिन इनका मैसेज खुल गया था, ओपन हो गया था, इसीलिए सॉरी। और फीडबैक
1: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी,
0: नमस्ते।
1: प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं, और आपका ओपनिंग संग भी लाजवाब का, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: आपका भी। और यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद प्रियंका जी। और रवि आर के रवि जी लिखते हैं कि ओके आपने वहाँ भेजा है ना, ठीक है मैं कोशिश करूँगा, ओके। और सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम का आगाज शानदार हुआ है, और जी बिल्कुल आप अपना गाना बदल दीजिए, क्योंकि देखिए आपने जो गाना भेजा है वो दोनों ही उसमें लीड हीरो हैं, यानी करण और अर्जुन, और ये साइड हीरो वाला गाना नहीं था, इसीलिए आपका गाना रिजेक्ट कर दिया मैंने। ऐसे गाने को भेजिए जिसमें साइड हीरो वाले गाने हों, जी बिल्कुल मैं ज़रूर प्ले करूँगा। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि आर जे अमन जी फरमाइश व्हाट्सएप, नहीं नहीं फरमाइश व्हाट्सएप पर नहीं भेजनी है, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजनी है, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजिए, ज़रूर मैं आपके गाने को प्ले करूँगा। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि छुपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता, हमें उनसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, बता दीजिए बता दीजिए। जाकिर खान लिखते हैं कि तुम्हें खोने का गम आज भी बाकी है, तुम्हें खोने का गम आज भी बाकी है, दिल में तुम्हारी याद आज भी बाकी है। लोग कहते हैं वक्त सब भुला देता है, लोग कहते हैं वक्त सब भुला देता है, पर मेरी धड़कन में तुम्हारा नाम आज भी बाकी है, आज भी बाकी है, जी बिल्कुल। और अंगद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और शिल्पा बेन जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं कि हम भी आ गए हैं और आपकी गानों की महफिल में बहुत शानदार शुरुआत हुई है, प्रोग्राम का बाजीगर के दोनों गाने बहुत ही अच्छे लगे हैं, जी थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, और अगला जो डिमांड है वो काजल झक्का जी का है, सुनना चाहती हैं दिल तो पागल है दिल दीवाना है, स्पेशली डेडिकेट मिठू मियाँ जी को है, बाकी सभी दोस्तों को भी है, और मुझे पता नहीं आपने मुझे नहीं किया है।

और सभी से सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाने को चेक करके भेजा करें, क्योंकि अभी मैं गाने को चेक नहीं कर पाऊंगा। ऐसे गाने भेजिए जो साइड हीरो को फिल्माया हुआ है। प्लीज़।

और जुड़ चुके हैं यहाँ पे हमारे यानी लाइव चैट में, यहाँ पे कायनाथ जी, नागेश्वर धाकर जी और बहुत से दोस्त हैं, तो सभी का वेलकम करते हैं और आप लोग धमाल मचाते रहिए लाइव चैट में। सभी को थैंक यू सो मच।

0: दीवाना।
1: बिल्कुल, दिल तो पागल है और जो आपको दीवाना बना देता है कि नहीं। फिलहाल सरफराज जी लिखते हैं कि ओके मैं देखता हूँ। और साथ ही साथ अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं सिवान बिहार से, ये हमारे यानी के पड़ोसी दोस्त हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और एस के जायसवाल जी ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। नहीं हबीबपुर से नहीं है, ये है यानी कि वेस्ट से, वेस्ट यूपी से है। और संध्या पटेल जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखती हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि काजल झकास जी के पसंद, एकदम झकास लगी है, धन्यवाद देते हैं। असल में इनका नाम है यानी काजल झा, और मैं इन्हें कहता हूँ काजल झकास, जबरदस्ती इनके मैंने आईडी में झकास लिख दिया है जानबूझकर। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि जेठालाल जी के दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत वेलकम है, खुश आमदेद। और प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। जाकिर खान लिखते हैं कि दोस्त भी तुम और प्यार भी तुम, एक भी तुम हजार भी तुम, गुस्सा भी तुम माफी भी तुम, जिंदगी के सफर में काफी भी तुम, आए है क्या बात है। और अजय भगत जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है जी, अगला गाना आप ही का है, अजय भगत जी ही सुनना चाहते हैं। ले गई ले गई, दिल ले गई भाई, कौन दिल ले गई है, इंजॉय कीजिए गाने को।

0: बिल्कुल, और आप सुन रहे हैं रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि दिल तो पागल है का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और जी बिल्कुल, आपका गाना पहुँच गया है और ये प्ले हो जाएगा बिल्कुल। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि दिल ले गई, मजा गया गाना सुन के। और हमारे रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ले गई दिल ले गई, गाना तो मुझे बहुत पसंद आ गया। और अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी थैंक यू सो मच दिल से। और रवि जी लिखते हैं कि यानी कि पलकों को झुकाकर जब वो मुस्कुराती हैं तो यानी कि सांसें थमती और धड़कनें बढ़ जाती हैं, और हुस्न का जादू कुछ ऐसा चला है उसने कि बातों बातों में अजय भगत जी की दिल ले गई। जी बिल्कुल सुनिए।
1: मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर है।

0: बिल्कुल दिल ले गई। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि अजय भगत जी की पसंद मुझे बहुत शानदार लगी, धन्यवाद देते हैं। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि अमन जी लगता है कि कहीं अजय भगत जी का दिल खो गया है। जी बिल्कुल, मैं ढूंढने में उनका हेल्प करूंगा, आप लोग भी आज ये ढूंढने में मदद कीजिए मेरी। और निर्मल राय लिखते हैं कि अमन जी अजय जी का दिल ये कौन ले गया है, जरा अजय भाई का दिल हमें लग रहा है कि 2014 में चोरी हो गया था। अच्छा हाँ, हो सकता है कि 2014 में चोरी हो गया होगा और वो दिल अभी तक उसी यानी चोर के पास है जो उनकी अर्धांगिनी बनी हुई है ना। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं दिल तो पागल है, ये गाना बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और आमना खान जी लिखते हैं वाह क्या बात है, ले गई दिल, गाना बहुत अच्छा लगा है। और ये फीडबैक सुनते हैं ना।
1: थैंक यू अमन जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। आपको कैसे नहीं सुनाऊंगी, आपके मेहरबानी से ही तो मिठू मियाँ सुन पाए हैं गाना, नहीं तो आप बजाते ही नहीं तो सुनते कैसे।
0: अच्छा,
1: इसलिए थैंक यू, आपको भी थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से, आज का प्रोग्राम बोंगे तो छक्का।
0: ओके, अभिषेक तिवारी जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। अभिषेक तिवारी जी एंजॉय कीजिए अपने गाने सभी के साथ।

एक और नीतू इन शरण जी लिखते हैं कि मजा आ गया जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और राहुल पासी जी ये लिखते हैं कि अजय भगत जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और दिल तो पागल है काफी गाना ले गई वह तो क्या ही कहें। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं रेडियो हॉट स्टार के सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जैसे वो खंडिया से राजेश और प्रमोद पटेल जी, और इंदौर से यानी कि खुशी जी और सीमा जी, और मतलब सभी दोस्त का सभी को मैं वेलकम करता हूं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है। साथ ही साथ रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि मिलती है झुकती है शर्माती है, ये गाना बहुत अच्छा लगा है। और ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। तो अगला जो गाना है मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये किनका है? हाँ ये शाहिद अंसारी जी का है। और शाहिद अंसारी जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

झुकती ये कातिल निगाहें सिखाने लगी आशिकी।

0: और मुझे अलीशा चिनाय का सब मतलब आवाज सच में बहुत प्यारा लगता है, वो गाती बहुत ही प्यारा है, उनकी मतलब अंदाज ही निराला है भाई। और ओम नारायण राय लिखते हैं कि मुझे भी अजय भगत जी का गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई या सभी बहन अपने गाने में शामिल, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, और यहाँ निर्मल राय लिखते हैं कि अमन जी हम लोग के साथ एक श्रोता है दिनेश जी, जिनको संगीत में रुचि नहीं है और कृपया उनके लिए दो लाइनें आपके द्वारा ताकि संगीत में रुचि बढ़े। अच्छा जी भाई, दिनेश जी अगर संगीत के बारे में आपको मतलब रुचि नहीं है तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती, क्योंकि संगीत हर यानी कि टेंशन का इलाज है। आप एक बार संगीत सुनकर तो देखिए, अगर आपको आप रेडियो हॉटस्टार सुनकर तो देखिए, दीवारा नहीं हो जाएगा तो फिर कहिएगा। बाबूलाल जी लिखते हैं कि शाहिद जी का डिमांड बहुत ही अच्छा लगा है, और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि मैंने जिसको चाहा मिल गया, रणवीर सिंह जेठालाल जी, जी बिल्कुल, और इनका पूरा नाम मुझे लगता है कि लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इनका रणवीर सिंह सिर्फ लिखा हुआ इसीलिए मैं रणवीर सिंह ही बोलता हूँ, इनका जेठालाल भी ऐड करना ही पड़ेगा मुझे लगता है। राहुल पासे जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं हीरा फिल्म का। और शाहिद जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया, धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। इसी बात पे एक और धमाल मचाते हैं और कायनात जी का गाना कहीं इंजॉय करते हैं। ओके, क्योंकि जीने के है चार दिन और बाकी है बेकार दिन, इंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और ईशु भगत जी लिखते हैं कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलता है, लिखते हैं कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलता है, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता है, और मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों मगर दिल से चाहने वाला दोबारा नहीं मिलता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और राहुल पासी जी लिखते हैं जीने के हैं चार दिन बाकी है बेकार दिन, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि आपका कौन सा गाना है जरा मुझे बताएंगे प्लीज। आपने जो गाना भेजा है वो गलत गाना भेज दिया आपने, जैसे कि आपने क्या है ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, अक्षय कुमार मोहरा फिल्म में वो मेन हीरो हैं और वही वो गाना गा रहे हैं, तो ये गाना नहीं चलेगा। आप दूसरा ऐसे गाने भेजिए जैसे वो मेन हीरो ना गाता हो, जैसे वो साइड हीरो वाला गाना आज, यानी कि साइड हीरो पर चाहे हीरोइन हो चाहे हीरो हो उस पर गाने भेजने हैं आपको, ठीक है समझ गए। बहुत सारे फिल्में हैं, बहुत सारे हैं, आप ढूंढते रहिए थोड़ा और देखते रहिए कि कोई अच्छा सा गाना मिले तो जरूर भेजिए, मैं जरूर आपके गाने को प्ले करूंगा। जो भी दोस्त सुनना चाहते हैं अभी लाइव शो में भेज सकते हैं, लेकिन सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजना होगा जी, ये शर्त है, क्योंकि अगर मैसेज भेजेगा तो मैसेज छुप जाएगा फिर मैं भूल जाऊंगा, और सॉन्ग रिक्वेस्ट में रहेगा तो मैं वहां से देखते रहूंगा, और हो सकता है कि गाने को मैं प्ले भी कर दूं। जाकिर खान लिखते हैं कि मुझसे शादी करोगे का बहुत ही शानदार गाना जी। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और आत्माराम जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही शानदार लग रहा है, और आज के ये मूडी चॉइस ही शानदार लग रहा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सरोजीत सेठी जी का है, सुनना चाहते हैं कोई ना कोई चाहिए, प्यार करने वाले

अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे राधा कृष्ण गोप जी ने डिमांड भेजा है, लेकिन ये डिमांड यानी कि जो जीत फिल्म का है और वो सनी देओल और उसमें सलमान खान है, और सनी देओल तो यानी मुख्य हीरो हैं, यानी मेन हीरो हैं, तो जो मेन हीरो हैं उन पर गाने नहीं भेजने हैं, जो उनके साथ में साइड हीरो काम किए उन पर गाने भेजने हैं, इसलिए आपके गाने को कैंसिल कर रहा हूँ, दूसरा भेजिएगा जरूर।

0: बिल्कुल, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। और राय परबत जी लिखते हैं कि अमन जी अच्छा ओके मैं ठीक है मैं देखता हूँ उसको। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जी अमन सर जी, सर्वजीत सिट्ठी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू जी, वेलकम है आपका भी। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना अच्छा, ये गाना मुझे अच्छा लगा है। ओके जी, और इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ, किन का जरा सा देखना पड़ेगा मुझे। हाँ सरफराज पटेल जी का, सरफराज पटेल जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: ये प्यार, ओ माय गॉड, क्या गाना था सरफ भाई, मजा आ गया सुनकर। राहुल पासी जी लिखते हैं कि दीवाना मूवी का गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा है, मजा आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने को। और साथ ही साथ हमारे संतोष गौंड जी लिखते हैं कि अमन जी प्रोग्राम तो हमेशा की तरह शानदार चल रहा है और जरा देखना पड़ेगा आपके गाने को। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, वहाँ भेज दीजिए सॉन्ग रिक्वेस्ट में, जरूर मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा आपका। अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और एक सस्पिशन है जिसके बारे में मैं मैसेज कर रहा हूँ।
0: जी बताइए बताइए।
1: कि जो साइड हीरो का रोल जो आप बता रहे हैं, तो मानकर चलिए कि किसी किसी फिल्म में जैसे अमिताभ बच्चन है और उनके साथ अक्षय कुमार हैं, तो सीनियर जूनियर।
0: जी जी बोलिए बोलिए। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको अगर उस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं तो अब अमिताभ बच्चन है और अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार तो समझिए कि वो मेन हीरो चल रहे हैं ना, जैसे एक रिश्ता में लेते हैं तो एक रिश्ता में मेन हीरो है हमारे अक्षय कुमार ही हैं। और यानी कि यानी उसमें वो साइड हीरो अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन साइड हीरो हो गए हैं ना, जैसे कि मतलब जो उनके सहयोगी रूप में यानी काम किए रहते हैं उनको साइड हीरो कहते हैं। ठीक है, बहुत से फिल्में हैं, आप ध्यान लगेगा तो ज़रूर आपको सुनने को मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैं गाने ढूंढ के ला रहे हैं, माय गॉड सच में बहुत अच्छे अच्छे गाने ढूंढ के ला रहे हैं। सभी को थैंक यू सो मच, दिल से सभी का थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी ने आप मेहनत करते हो भाई, सच में मानना पड़ेगा। आप अपना यानी प्यार दिखाते हो रेडियो हॉटस्टार के प्रति कि आपको कितना प्यार है। सच में जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा आप यानी करके आते हो, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और रॉय पर्वत क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: अमन जी, मेरा ये सॉन्ग था हम जानते हैं कि तुम हमें बर्बाद करोगे, खिलौना मूवी का सॉन्ग है
0: जी। बिल्कुल आपका गाना प्ले होगा, थोड़ा सा इंतजार लगेगा क्योंकि वो सैड सॉन्ग में आता है ना दोस्तों, सैड सॉन्ग थोड़ा पीछे जाता है, अभी रोमांटिक सॉन्ग थोड़ा सा हो गया ना, आने वाले फिर देखते हैं आपका गाना कहाँ फिट बैठता है, वहाँ में मैं जरूर प्ले करूँगा, टेंशन मत लीजिए। शिल्पा बहन लिखती हैं कि गुप्त का गाना बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और हाँ, सिर्फ मतलब हीरो ही नहीं, मतलब हीरोइन भी हो सकती हैं, दोनों में से आप किसी का भी गाना भेज सकते हैं, हीरो या हीरोइन दोनों में किसी का गाना भेज सकते हैं। और आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और बीरबल बगे लिखते हैं वाह क्या गजब का सुपर सॉन्ग है, सुनने को मिला, मजा आ गया है। और सर्वजीत सेठी क्या कहते हैं, इनकी भी सुनी लेते हैं।
3: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत लाजवाब चल रहे हैं, तो सुनते रहे रेडियो होस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सर्वजीत सेठी।

अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ सुनीता गोप जी का सुनवाता हूँ मैं आपको, और ये सुनना चाहती है प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो बस मोहब्बत किए जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए बेवफा गला जवाब गाना।

0: लिए जा रहे हैं, क्या बात है। वैसे गाना अच्छा लगा और सरप्राइज देते हैं, थैंक यू सो मच भाईजान, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जी अमन सर जी, सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई या सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल कर दिए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी। और यहाँ पर

सुनीता गोप जी के पसंद, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि आर्ज अमन जी जी आपका फरमाइश आया हुआ है, मैंने बताया था मैसेज करके, हाँ आ चुका है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, जरूर प्ले करूंगा जैसे मौका मिलेगा मुझे। और कृपा बेन लिखती हैं कि ये प्यार का अंजाम बहुत ही बढ़िया गाना है और हम तो रेडियो हॉट स्टार सुने जा रहे हैं। अच्छा सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और राय पर्वत जी लिखते हैं कि यानी तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई और तेरी बातें दिल का अरमान बन गई है, और तू मिले या ना मिले तू मेरी पहचान बन गई है। और विवर बघेल लिखते हैं कि शानदार सुपर से भी ऊपर सॉन्ग है, वाह थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। सुनीता गोप लिखती हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दिल ये वाला गाना भी बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुनीता गौंड जी की पसंद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये सुनीता गौंड नहीं है ये सुनीता गोप जी हैं जी, जरा सा आपने लिखने में मिस्टेक कर दिया शायद, हो सकता है। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि बरसों बाद ऐसा हुआ है कि कोई प्रोग्राम का इंतजार उसके लिए करते हैं कि यानी यहाँ पे कब 6 बजे और कब अमन जी का प्रोग्राम आएगा, ऐसा बहुत ही सालों होता था जब कोई वहाँ पे देख रहा था कि रेडियो हॉट स्टार की टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिल खुश करने के लिए। और मिराजुल हक जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम असलम। और मिराजुल हक जी वहाँ पे यानी कि चैट बॉक्स में जाके धमाल मचाते रहिए। और प्रमोद कुमार भी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका। और अगला जो डिमांड है दो दोस्तों के हैं, एक यानी सिया जी हैं और दूसरा यानी दीक्षा जी हैं, दोनों की एक ही पसंद है और एक ही पसंद मतलब दिल का क्या करें साहिब, हम तो उन्हीं पे मरते हैं जी।

बिल्कुल दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं और बस उनसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि जी आपका कौन सा गाना है जरा बताइएगा रणवीर सिंह जेठालाल जी, मैं जरूर मैं कोशिश करता हूँ। अजय भगत जी लिखते हैं कि हमसे जलने वालों की भी अलग कहानी है, हम जहाँ खड़े होते हैं वही अपनी निशानी है, अंदाज अपना ऐसा है कि पहचान दूर से हो जाती है। अच्छा जी ऐसा है। और नीतू शरण जी ये लिखते हैं कि गाना सुनकर तो मजा आ रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, बहुत ही अच्छा जबरदस्त गाना लगा। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दिल का क्या करें साहिब, लाजवाब गाना, लाजवाब चॉइस है, धन्यवाद दोनों दोस्तों को। और जाकिर खान लिखते हैं कि यानी तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि बहुत ही गाना अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और ईशु भगत जी लिखते हैं कि अर्ज किया है कि नजर लग जाती है जताया न कर, और लिखते हैं कि इश्क एक राज है बताया न कर, और लाख समझाया शक शक करता है जमाना, और जब तू बियनी के पास से गुजरे तो मुस्कुराया ना कर। इसी बात पर अगला गाना अनिल कश्यप जी का, इंजॉय कीजिए, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, इंजॉय दैट।

सच में तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया और मैंने भी तो अपना दिल ये जान तेरे नाम कर दिया। यार क्या गाना है। और नीतू सरन जी लिखते हैं कि गाना सुन के तो मजा आ रहा है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, गाना बहुत अच्छा लगा। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि जैसे ही आपके प्रोग्राम में मेरा नाम आता है मेरे दोस्तों में और मेरे कॉलोनी में मेरी इज्जत और बढ़ जाती है, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे गायकवाड़ जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, सुपर डिमांड है, थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और लिखते हैं कि दिल को समझा लीजिए और ना समझे तो मना लीजिए और फिर भी ना समझे तो एक कोका कोला पिला दीजिए। अच्छा। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये रंग फिल्म का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं दोस्त को। और कमर शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि सर जी नमस्कार, मैं कमर शंकर पांडे ग्राम महोलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश के साथ आपके साथ में जुड़ चुका हूं और कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है। गीत जो इस समय बज रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं और तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, बहुत ही सुमधुर ये गाना है। कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में मेरा फेवरेट गाना सुनकर दिल खुश हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और साथ ही साथ शिल्पा बेन लिखती हैं कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, सुपर एक्सलेंट सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है। और गजानन सलोकार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, बेहतरीन लाजवाब गाना सुनकर मजा आ गया है, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। एमडी जलील जी सुनना चाहते हैं तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कहानी, एंजॉय द ट्रैक। मोहम्मद जलील जी एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक और यहाँ पे फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन भैया
0: जी,
1: मैं क्या बताऊँ, मैं भी बहुत खुश हुआ आपका, मतलब हमारा जो गाना सुना है और जितने लोगों ने तारीफ की है उन सबको बहुत बहुत बहुत आभार उन सभी का।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और गजलांजी लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी। भाई मोहम्मद जलील जी की आपकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, फिल्म पति पत्नी और तवायफ का बेहतरीन नगमा, मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी, लाजवाब डिमांड है। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बहुत ही अच्छा गाना लगा मुझे, और धन्यवाद देते हैं दोस्त को। आत्माराम जी लिखते हैं कि सलमा आगा की आवाज़ में गाया हुआ लाजवाब नगमा। और MD फैजलाम जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राहुल पासी जी क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं इनकी भी।
2: तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, सलमा आगा का सॉन्ग बेहतरीन लगा, धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, और हमारे जितेंद्र गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, भाई क्या कहते हैं जरा सुनते हैं इनकी।
3: हेलो, हमारा एक गाना है पन्ना की तमन्ना है, हीरा मुझे मिल जाए लगाइए।
0: ओ माय गॉड, आप आज के थीम पर ये गाना आता है कि नहीं मुझे पता भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप यानी कि पहली बार आए हुए हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, थोड़ा सा गाना प्ले करता हूँ।

अब ये मुझे नहीं पता कि ये थीम पे है या नहीं है। इनका ये छोटा बच्चे है और पहली बार इन्होंने डिमांड किया है तो मैंने इनको निराश नहीं किया। गाना थोड़ा सा प्ले कर दिया है मैंने।

वेलकम बैक, और उम्मीद करते हैं कि आपकी डिमांड पूरी हो गई। अशोक देशमुख जी लिखते हैं, अब यहाँ से फिर से प्रोग्राम का हम यानी कंटिन्यू करते हैं। इस गाने को आप लोग उसमें नहीं लीजिएगा प्लीज। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये सलमा आगा और मोहम्मद अजीज पर की आवाज़ में लाजवाब नगमा। ओके, और अशिता बेन लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया, तेरी मोहब्बत मेरी जवानी। और रॉय परवत जी लिखते हैं कि तेरे प्यार में हम ऐसे जिए जा रहे हैं जैसे बिना रिचार्ज के वाईफाई चला रहे हैं। तू जवाब नहीं देती है फिर भी मैसेज किए जा रहे हैं। लोग पूछते हैं भाई इतना क्यों मर रहे हो, हम कहते हैं यानी कि प्यार है साहब, ये मतलब EMI की तरह दिए जा रहे हैं। ओह माय गॉड। ओके, आमना जी लिखते हैं ओ थैंक यू सो मच। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि आपका कौन सा गाना है रणवीर सिंह जी, जेठालाल जी जरा एक बार प्लीज मुझे यहाँ पे मैसेज करके बता दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। राहुल पासी जी लिखते हैं कि हीरा वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे जितेंद्र गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी। इसी बात पर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए अगला जो डिमांड है हमारे राधा कृष्ण गोप जी का है, सुनना चाहते हैं सांसों का चलना। ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को, सांसों का चलना, दिल का मचलना।

0: तेरी मोहब्बत है सच में। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो पूजा भास्कर जी का भी प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में गाना प्ले करूंगा। लेकिन पहले फीडबैक मेरे पास बहुत सारे हैं। जितेंद्र गोस्वामी जी लिखते हैं कि आज का थीम क्या है, आज का थीम है ऐसे गाने भेजिए जो साइड हीरो या हीरोइन पर फिल्माए हुए गाने हो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अभी जैसे कि गाना सुनने में तो आपको समझ में आ रहा होगा। रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये दिल तो पागल है, मैं अक्षय कुमार का जो आपने कह रहा हूँ वो गाना नहीं है, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं आकाश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, ये मोहरा फिल्म का गाना है। और आप बार बार लिख रहे हैं दिल तो पागल है का गाना, ये दिल तो पागल है का गाना नहीं है, ये मोहरा फिल्म का गाना है। आकाश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, इसलिए प्लीज पहले ध्यान दीजिए कि कौन सा गाना आप भेज रहे हैं। ओके, तो ये नहीं चल पाएगा, इसके लिए आई एम सॉरी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल चलेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और गजानंद जी लिखते हैं कि सासों का चलना दिल का मचलना बहुत ही शानदार पसंद है। धन्यवाद देते हैं राधा कृष्ण गोप जी को। और सर्वेज रखा जी क्या कहते हैं,
1: आरजे अमन सर जी राधा कृष्ण गोप जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई या सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और रॉय पर्वत जी लिखते हैं कि सांसों का चलना दिल का मचलना और तेरी याद में हर पल तड़पना और तू जो मुस्कुरा दे तो दिल खिल जाए लेकिन तू लिख दे तो इन पूरा मूड बिगड़ जाए। ओ माय गॉड, एमडी फैज जी मुझे हंसी आ रही है यार। एमडी फैज जी लिखते हैं कि सुपर बेस्ट पसंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राधा कृष्ण गोप जी को। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी एक छोटी सी शायरी है, अमन जी आपकी बातों में एक अलग ही मिठास है, आपकी मुस्कान में छुपी प्यारी सी खास बात है, आपसे बात हो जाए तो दिन बन जाता है, शायद इसी को कहते हैं क्यों किसी को खास होना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए। मिथिलेश पवार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि सर जी मुझे एक बात बताइए कि जब साइड हीरो या हीरोइन का कोई गाना इन बजता है तो वो मतलब हीरो या हीरोइन हो जाता है, और असली रिक्वेस्ट इन कैसे भेजनी है? रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट के साथ ही भेजना पड़ेगा, भेजिए मैं कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो मैं समझ जाऊँ कि हाँ ये होने वाला है कि नहीं। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि अमन जी धन्यवाद देते हैं गाना बजाने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। एस खानम जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। लिखते हैं कि सांसों का चलना वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद है और पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, इंजॉय कीजिए पूजा भास्कर जी, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो सच में।

बिल्कुल अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे, क्योंकि तुम मेरी बाहों में हो। और राय पर बजली लिखते हैं कि बिल्कुल इंतजार करते रहिए, इंतजार का फल मीठा होता है। क्योंकि आपने गाना सैड भेजा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि तू मेरी बाहों में हो, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। अजय भगत जी लिखते हैं कि चेहरे पे मुस्कान और दिल में प्यार रखते हैं। अमन जी आपसे बातें करने की हम चाह रखते हैं, आपका अंदाज ही कुछ ऐसा खास है, इसलिए तो दिल में आपके लिए खास एहसास रखते हैं। हाय हाय, थैंक यू सो मच। और सरवजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त अंदाज चल रहा है, थैंक यू सो मच। गजानन जी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी की पसंद, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, बेहतरीन लाजवाब गाना सुनकर मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं उनको। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि ओके देखता हूँ मैं। और संतोष कुमार जी लिखते हैं कि मस्त गाना बज रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और हेमलाल निशाज लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। और ओके, और यहाँ पर राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि धन्यवाद देते हैं इतना बेहतरीन डिमांड के लिए पूजा भास्कर जी को। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, एक राजा है एक रानी है और क्या जिंदगानी है भाई, यानी कि प्रमोद जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: बिल्कुल, और क्या जिंदगानी है। और फिर बैग भी आया हुआ है रॉय पर्वत जी, क्या लिखते हैं कि अमन जी जी की बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं जरूर प्ले करूंगा आपके गाने को। और राहुल पासी जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में, ये सॉन्ग बेहतरीन लगा अमन सब जी, धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, और यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि एक राजा है एक रानी है और क्या जिंदगानी, बहुत ही प्यारा गाना है। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि एक राजा एक रानी है, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: जय अमन सर जी, प्रमोद जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय प्रमोद जी की पसंद, एक राजा है एक रानी है और क्या जिंदगानी है, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गाने में शामिल करने के लिए। मिराजुल हक जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, बहुत अच्छा लगा है। और अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी नाम अमन, दिल भी सुकून वाला है, आपकी बातों में अपनापन निराला है, महफिल में जब आपका नाम आता है हर चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय भगत जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। नंदलाल यादव जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे ये सुजीत झा जी का, भागलपुर बिहार से सुनना चाहते हैं ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, एंजॉय।

और दीपक गायकवाड़ जी, ये क्या कहते हैं जरा ये सुनते हैं। ये लिखते हैं कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से अब हम दूर होने लगे हैं, क्योंकि अब हम रेडियो हॉटस्टार सुनने लगे हैं जो दीवाना बना दे। रेडियो हॉटस्टार की जो टीम की जो ये ताकत है और प्यार है, वो आपका प्रोग्राम को सुनने को तो फेसबुक चला रहे हैं और व्हाट्सएप के लिए तो समय नहीं मिलता है। धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

बिल्कुल बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस मजा आ गया। शिल्पा बेन लिखते हैं कि हेलो अमन जी, शायद आपका गाना मेरे ख्याल से यानी कि प्ले हो गया होगा, मेरे ख्याल से आप वहाँ पे चेक, जहाँ से आप यानी कि रिक्वेस्ट करती है ना सॉन्ग रिक्वेस्ट, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका गाना प्ले हुआ है कि नहीं, वहाँ देख सकती है। जिनका गाना प्ले होता है वहाँ पे टिक हो जाता है कि हाँ इनका गाना प्ले हो चुका है। रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये तेरी आंखें झुकी झुकी और ये तेरा चेहरा खिला खिला, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, गजानन से लगा। लिखते हैं कि बहुत ही शानदार प्रश्न के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला, एकदम मस्त और

सही चल रहा है भाई। और शांत राय बोले जी लिखते कि गाना बहुत प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और गजानंद जी लिखते अरुण मंडल जी के पसंद, दर्द सहेंगे कुछ ना कहेंगे, बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है अरुण मंडल जी का। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दर्द सहेंगे कुछ ना कहेंगे, प्यार में तेरे सनम, मजा आ गया सुन के गाने को। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि जी इन्हें प्यार में तेरे सनम गाना अच्छा लगा इनको। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दर्द सहेंगे वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे किनका, अनिल कुमार हरिद्वार वाले सुनना चाहते हैं बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, और कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

और कुछ ना कहेंगे प्यार में तेरे सनम, बस इंतजार करते रहेंगे, बहुत मिस करते रहेंगे, है ना। और राधा कृष्ण को देखते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, मैं फीडबैक नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ तो बिल्कुल, यानी

बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं और तुमको सनम। और यहाँ इशू भगत जी लिखते हैं कि छोटी सी जिंदगी पर ख्वाब बहुत है, जुर्म को पता नहीं पर इल्जाम बहुत है। और गजानंद जी लिखते हैं अनिल कुमार हरिद्वार वाले जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, मुझे ये मेरा फेवरेट गाना है, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये साजन मूवी का बहुत बेहतरीन नगमा, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड जैसे मैंने कहा का, यानी कि पर्वत राय जी सुनना चाहते हैं, हम जानते हैं कि तुम हमें नाशाज करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, इंजॉय करते हैं।

फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मजा आ गया सुन के। राय पर्वत जी लिखते हैं अमन जी गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज मेरा गाना बजाने का दिन और भी खास कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि हम जानते हैं कि तुम हमें नाशाद करोगे, अच्छा जी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी यानी 15 अगस्त आने वाला है और स्पेशल, जी बिल्कुल, हर यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पेशल प्रोग्राम ही होता है, और मैं शाम 6 बजे से स्पेशल प्रोग्राम करने वाला हूँ, एक शाम वतन के नाम, यानी 15 अगस्त इस शनिवार को ही आने वाला है, तो ज़रूर स्पेशल प्रोग्राम होगा, और इस मतलब शनिवार अंतराम मस्ती नहीं होगा, ओके। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग मेरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और बता दूं कि बहुत जल्दी आरजे यानी सोनी जी भी आने वाली हैं अपने अपने भोजपुरी शो के साथ, ओके जी। और गजानंद सोलकार जी लिखते हैं कि यानी कि पर्वत राय जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और अजय भगत जी लिखते हैं अमन जी यानी पर्वत भाई जी ने बहुत ही प्यारा गाना सुना दिया और मजा आ गया, उन्होंने तो आंखों में आंसू ला दिया। और मिराजुल हक जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। ईशु भगत लिखते हैं कि ये मेरे रॉय पर्वत सर जी के लिए है कि मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, लिखते हैं कि मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती, और सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता, सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता, मगर मैं फिर भी पी लेता अगर तू शराब होती। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इतना प्यारा डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो आर के रवि जी का है, सुनना चाहते हैं मन्नता, इंजॉय द ट्रैक।

और मेरा मन कर रहा है कि आरके रवि जी को आज को सॉन्ग ऑफ द डे यानी कि सॉन्ग ऑफ द डे का विनर बना दूं। एक गाना और सुन सकते हैं आप जल्दी से, ओके। और फिलहाल मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, एस खानम जी लिखते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा गाना लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि मन्नता बहुत ही प्यारा गाना लगा है, थैंक यू सो मच। इस गाने को सुनने के बाद तो एक दिल को अजीब सा सुकून मिलता है जी। और गजानन सरकार जी लिखते हैं कि आर के रवि जी के पसंद बेहतरीन, लाजवाब, सुनकर मजा आ गया है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राय पर्वत लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और अजय भगत जी लिखते हैं कि मेरे दोनों भाइयों ने का गाना एक से बढ़कर एक लगा है और एक साथ प्ले हुआ है, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि तू जो मिले जिंदगी जन्नता, बहुत बहुत लाजवाब गाना है, मजा आ गया इस गाने के सुनकर। और रविंद्र गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ। और

0: अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो बहुत से दोस्तों की डिमांड है। उसमें है हमारे अशोक देशमुख जी और सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, राहुल पासी जी और निशांत राय बोले जी। इन छह दोस्तों की पसंद है, ये ग्रुप डिमांड है। और सबसे पहले अशोक देशमुख जी का सुनते हैं। अशोक देशमुख जी क्या क्या कहते हैं पहले इनकी सुनते हैं फिर।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपको।
1: आज का थीम है स्टार मूडी चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है और गाने का बोल है, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके, और इसी गाने के जैसे हमें सर्वेश भगत जी।
2: आरजे अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है कुछ कुछ होता है और गाने का बोले साजन जी घर आए। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत अंदाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्षेश्वर भगत, आनंद शेखर, प्रकाश, सुनील कुमार, मनोज कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सरदी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जय जी के अमन सर जी।
3: थैंक यू आरजे अमन सर जी हमारा गीत प्ले करने।
0: अभी तो गाना आपका तो है, यहाँ पे आपका ऑडियो नहीं आया, आपका मैसेज आया हुआ है। सॉरी, आत्माराम जी भी है इसी में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये निशांत राय बोले जी हैं और राहुल पासी जी हैं। राहुल पासी जी का ऑडियो सुन लेते हैं, शायद ही उनका ऑडियो ही है मेरे पास, राहुल पासी जी का। कहाँ गए हैं?
4: साजन जी घर आए दुल्हन की शरमाए, साजन जी घर आए दुल्हन की शरमाए। ये सॉन्ग सुनना है मुझको अमन जी।
0: ओके,
4: फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है।
0: ओके, तो
4: अम्बाला से राहुल।
0: ओके, आप सभी की पसंद पे मैं सुनवा रहा हूँ ये गाना, साजन जी घर आए। एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, और बहुत सारे फीडबैक भी आए गए हैं मेरे पास। ईशु भगत जी लिखते हैं कि जी आईफोन में कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं बता दूं कि आईफोन में आप खोलिएगा radiohotstar.com और वहां पे इन मोर लिखा होगा नीचे, सबसे नीचे इन दाहिने साइड में लिखा होगा मोर, वहां पे क्लिक कीजिएगा और वहां पे मिलेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट का सबसे इन पहला ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप मुझे भेज सकते हैं, आईफोन में खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि सभी गाने बहुत अच्छे बजे हैं, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं अच्छे अच्छे गाने की डिमांड करने के लिए। और निर्मल राय जी लिखते हैं कि अमन जी हमारे 7 साल की एक बेटी है, वो भी आपके प्रोग्राम को खूब सुनती है, और एक बार उसके लिए 2 लाइनें, बेटी का नाम है सुभाषी राय। अच्छा जी।

0: तो मैं दो लाइनें में कहूंगा ये निक्की आपकी सुभाषी के लिए कि ये निक्की कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, ये निक्की कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो यानी तवे से उछाल कर देखो क्या होता है। ओके, और मैं आगे भी कहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का फीडबैक है। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी आपके प्रोग्राम के आपके प्रोग्राम सुनने की जो दीवानगी है वो मुझे अमीन सयानी के प्रोग्राम की याद दिलाती है, जो दीवानगी उनमें थी वो दीवानगी आपके प्रोग्राम में भी है और उसमें भी मेरा नाम आता था और आज आपके प्रोग्राम में भी मेरा नाम आ रहा है। जी दीपक कुमार गायकवाड़ जी, नाम जितना बार मैसेज भेजेगा उतना बार नाम आपका आएगा। और यहाँ पे रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि साजन जी घर आए गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और गजानंद सुलगार जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनू जी, निशांत राय बोले जी, राहुल पासे जी, सभी की पसंद फिल्म कुछ कुछ होता है कला जवाब गाना सुनकर मजा आ गया, सभी को धन्यवाद देते हैं। और रॉय पर्वत जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है हमारे निर्मल सर जी का जी, और वो आपके आज वो ये विनर बने हुए थे शायद वही ना, आर के रवि जी विनर बने, आर के रवि जी का कोई अता पता नहीं अभी तक, उनका फीडबैक नहीं आया। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि शुक्रिया और धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और नंदलाल यादव जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी आपके गुरु का डिमांड शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और अजय भगत जी लिखते हैं कि मेरे दोस्त निर्मल राज जी की भी पसंद लाजवाब लगी है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। शिल्पा बेन लिखते हैं कि साजन जी घर आए बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी और सभी दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, सभी को धन्यवाद देते हैं। अशोक देशमुख जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फीडबैक भी सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा सभी भाई का फरमाइश और राहुल पास जी और भी भाई इसमें शामिल है सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके,
1: सभी का मिली जुली फरमाइश आप शामिल कर दिए, धन्यवाद।
0: ओके जी, और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत ही अच्छी लगी है। और आत्माराम जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। अब एस के जसवाल जी सुनना चाहते हैं, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, इंजॉय द ट्रैक। और एस के जसवाल जी ने अपने गाने में लिखा है, ये गाना डेडिकेट है सर्वेश भगत जी को और प्रमोद जी को, राजेश जी को और काजल झक्का जी को, नाहिद जी को, असलम राणा जी को, और लाइव सुन रहे हैं सभी दोस्तों को डेडिकेट है।

बिल्कुल लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है और यहाँ पर राय पर्वत जी लिखते की आरके रवि जी तो गए हैं बोलबम गए हुए। अच्छा ओके जी, और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी नई फरमाइश को यानी पूरा करने के लिए। मैं आपको कितना बार बताऊं रणवीर सिंह जेठालाल जी के आप जो गाने की डिमांड किए हैं वो थीम पर है ही नहीं, मैं आपको बार बार समझाया हूँ, लेकिन हाँ एक चीज है आप बने हुए हैं यानी कि टॉप लीडर बोर्ड में आज यानी तीन दोस्त हैं यहाँ पे, मतलब रणवीर जी हैं और आमना जी हैं और प्रियंका जी हैं। मैं लॉटरी निकालूंगा और आज इन दो लोगों को मैं मतलब यानी विनर बनाऊंगा जो भी दोस्त होंगे। राहुल पासी जी भी हैं, गजानन सुलकार जी हैं, संजय पटेल जी हैं और बीरबल बघेल जी हैं, बाबूलाल अंजना जी हैं, शिल्पा बेन जी हैं और राधा कृष्ण गोप जी हैं, तो जिनका भी नाम आ जाएगा दो दोस्तों को मैं कॉल लगाने वाला हूं। ओके वहां पे गाने अगर आप अगर विनर बनते हैं आपका नाम आता है तो मैं जरूर आपको कॉल लगाऊंगा। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, गाना बहुत प्यारा लगा है। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, गाना बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि मैंने तीन देखिए ये तीन गाने भेजने से मतलब नहीं है, जब जो गाना जहाँ फिट बैठता है मैं वहाँ प्ले करता हूँ। ओके और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि इसके जसवाल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि आर के रवि जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजान अंजलि लिखते हैं कि इसके जसवाल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है आमना खान जी का है, आमना खान जी सुनना चाहती हैं ये प्यारा गाना, ये रात और ये दूरी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास। सबसे पहले तो निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आमना खान जी, बाबूलाल जी लिखते हैं कि आमना खान जी का डिमांड मुझे बहुत पसंद आई है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक,
1: ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। टूटा फूटा गाना गा दिए हैं, उतना अच्छा से ध्यान पे नहीं था तो
0: कोई बात
1: उसके लिए सॉरी, बट गाना सुपर सुपर सुपर ही।
0: जी जी मुझे पता है। और आमना खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा सॉन्ग को सुनाने के लिए। और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। रणवीर सिंह जठला लिखते हैं कि ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये सलमान खान और करिश्मा कपूर का सॉन्ग मुझे बेहतरीन लगा, अंदाज अपना अपना का। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये रात और ये दूरी बहुत ही बढ़िया गाना है और फिल्म भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और नीतू शरण जी लिखते हैं कि सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं पर मेरा गाना, आपका कौन सा गाना है, आपने कौन सा गाना दिया है जरा मुझे बताएंगे प्लीज़, क्योंकि मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है आपका गाना। वैसे अगला जो डिमांड है हमारे क्या नाम है इनका, हुकुम चंद जांगड़ जी, सुना चाहते हैं, इंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं का लाजवाब डिमांड, मजा आ गया सुन के। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जी की डिमांड मुझे बहुत पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जांगड़ जी की पसंद शानदार, और हुकुम चंद जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा जी गाना प्ले करने के लिए। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये तेरा शराफा बहुत ही लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जांगड़ जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, और रणवीर सिंह के लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत पसंद है। इसी बात

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि माँ तुझे सलाम का ये गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और अशीर पाई बहन लिखते हैं कि छोड़ कर ना जाओ वो पिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आज यानी कि तीन यहाँ पे लॉटरी निकाली है और तीन नाम मेरे पास आए हुए हैं। ओके, तो और यहाँ पे रणवीर जी लिखते हैं कि छोड़ कर ना जाओ पिया गाना अच्छा लगा मुझे। बाबूलाल जी लिखते हैं कि जाकिर जी की डिमांड मुझे बहुत प्यारी लगी है। और गजानंद जी लिखते हैं कि छोड़ कर ना जाओ पिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, अभी कुछ देर पहले मन्नता सॉन्ग को आपने सॉन्ग ऑफ द डे डिक्लेयर किया था, लेकिन ये भी गाना माँ तुझे सलाम मूवी का जो है छोड़ के ना जा वो पिया, ये भी कुछ कम नहीं है। बट आप लोगों का डिसीजन जो है वो सर्वोपरि है और हम लिसनर्स का साथ और आपका साथ बना रहे, रेडियो हॉट स्टार चमकता रहे ऐसे ही। थैंक यू सर,
0: धन्यवाद। और ऐसे आपका भाई, आपकी बात सर आंखों पर, हमारे आर के रवि जी का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए अब उनको मैं कैंसिल करता हूँ। मतलब चूंकि अगर वो अगर आते हैं तो उनका उनका सॉन्ग ऑफ द डे रहेगा, वो विनर हैं, लेकिन इस इनको भी हम सॉन्ग ऑफ द डे के विनर बनाते हैं। आपकी बात सराखों पर रखते हुए बहुत बहुत इनको भी बधाई हो भाई। जाकर जी एक और गाना सुन सकते हैं, कोई बात नहीं है, और जल्दी भेजिएगा तब। साथ ही साथ क्योंकि अब जाने का भी समय होने वाला है, लेकिन मैं अभी यानी कि तीन कॉल लगाने वाला हूँ लगातार। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और रविंदर गोरखपुरी जी लिखते हैं कि बहुत ही पसंद है ये गाना मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि यह शाम इतनी सुहानी न थी, यह रात इतना हसीन न थी, और सुना जब से रेडियो हॉट स्टार का प्रोग्राम हर शाम सुहानी और रात हसीन हो गई है। आए है क्या बात है। दत्ता कर्म जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और बहुत देर कर दिया भाई हुजूर, आते आते जाकिर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अनिल कुमार हरिद्वार से लिखते हैं कि सारे गाने बहुत खूबसूरत लगे हैं। तो अगला मैं आज का जो यानी पहला कॉल है वो राहुल पासी जी को, और दूसरा कॉल हमारे ये रणवीर जी को, और तीसरा कॉल आमना खान जी को मैं करने वाला हूँ। यानी तीन कॉल के विनर हुए हैं। पहले राहुल पासी जी को लगाता हूँ।

इनका नंबर मुझे देखना पड़ेगा भाई कहाँ गए, क्योंकि कुछ कुछ लिखते हैं कुछ और। हाँ ये नंबर मिल गया इनका, मुझे इनका नंबर पे ही कॉल लगाता हूँ, सीधे डायरेक्ट नंबर पे।

0: भाई राहुल पासी जी बहुत बहुत वेलकम है आपका।
1: हेलो,
0: आज
1: हेलो
0: राहुल पासी जी।
1: हेलो नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार, कैसे हैं राहुल पासी जी?
1: हाँ जी ठीक है जी।
0: ओके, तो आज आप विनर बने हुए हैं यानी कि टॉप लीडर में, तो बहुत बहुत बधाई हो। तो क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आप मेरे को माँ तुझे सलाम का गाना सुना देना, वो माँ तुझे सलाम।
0: माँ तुझे सलाम, जी जी
1: हाँ जी हाँ जी,
0: माँ तुझे सलाम गाना सुना चाहते हैं। ओके जी, तो मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल, तो चलिए आपके गाने को मैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। धन्यवाद
1: धन्यवाद, थैंक यू।

0: जी हेलो, बहुत बहुत नमस्कार जी।
1: नमस्कार, वेलकम है रणवीर जी। और कैसे हैं आप? रणवीर सिंह जेठालाल जी।
0: बढ़िया जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर।
1: अच्छा, लगता है कि फिर आपको इन व्हाट्सएप पे कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, करते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं।
0: हाँ, दोबारा करिए कॉल सर।

0: जी बोलिए।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, अब सही है आवाज आ रही है अच्छी से?
1: अरे साले अब तो बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, अब लगता है दिल के पास है हमारे।
0: धन्यवाद। बोलिए तो आज यानी कि क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: बेवफा सनम का गीत है सर, कहाँ गया बेदर्दी मन को तड़पा के।
0: कहाँ गया बेदर्दी मन को
1: जी, मन को तड़पा के,
0: दिल का चैन चुरा के,
1: चुरा के
0: है ना, मन को बहगा के।
1: सर आपके साथ ही गाने में मजा आएगा आपके
0: जी,
1: आप गा रहे हैं आपके साथ ही तो लय से लय बनेगी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भाई लय में लय मिला के गाने की कोशिश करता हूँ जी। अच्छा, इसका एक अनुराधा पौडवाल की आवाज में है और एक और है, आपको मतलब किसकी आवाज में मतलब सुनना है? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
1: हेलो,
0: मैं कह रहा हूँ कि अनुराधा पौडवाल की आवाज में बोला, अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनना है?
1: नहीं, सोनू निगम,
0: सोनू निगम की,
1: सोनू निगम की।
0: अच्छा ठीक है,
1: दोनों की, दोनों की,
0: दोनों की कैसे सुने?
1: सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, हाँ दो, दोनों की आवाज में गाना है सर
0: जी, दोनों की आवाज में है, अलग अलग है ना?
1: आप नहीं, नहीं, एक गाना दोनों ने गाया है सर, आप देखिए सर, मैं तो कई बार सुनता हूँ, फरमाइश भेजता हूँ सर।
0: अब तो मुझे तो, अच्छा ठीक है, ओके, मुझे ये भी मिल गया, धन्यवाद।
1: हाँ ओके
0: ओके ओके, मैं आपको सुनवाता हूँ।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और अनिल कुमार लिखते हैं कि अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और गजानंद जी लिखते हैं कि राहुल पासी जी आज के इनविनर बने हैं, बधाई हो उनको भी, और देशभक्ति गीत उनका अच्छा लगा। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा, थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है। और अगला कॉल लगाते हैं आमना खान जी को।

0: अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत बधाई आज के विनर बनने के लिए। बहुत बहुत वेलकम है आपका, खुश आमदीद।
1: वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया शुक्रिया।
0: और कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बस मेरी आज मुझे फील हुआ कि थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है, मतलब फील हुआ ऐसे है नहीं।
1: हाँ हाँ वो तो सारे इंडिया में चल रहा है मौसम की वजह से।
0: हाँ क्योंकि जैसे मैं मतलब बैठा था ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आंखों के आगे मतलब एक सेकंड के लिए अंधेरा छा गया, मतलब यानी कि चक्कर टाइप का आ गया था एक बार, मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ।
1: हाँ जी वो आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं और हार्ड वर्किंग, इतना बोलना ना आसान काम नहीं है जितना आपने किया। हाँ। बोलना उसके साथ प्रोग्राम को इतना शानदार बनाना, और देखो उसका फल मिल गया आपको, आज सबने आपकी तारीफ की, इतनी सारी तारीफें बटोरी आपने।
0: थैंक यू सो मच, आप सबका यानी प्यार है और बस आप सबकी दुआएं हैं और क्या
1: जी।
0: आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज सादगी काबुल बुखारी जी।
0: सादगी
1: काबुल बुखारी जी।
0: काबुली बुखारी
1: जी।
0: मैं देखता हूँ आपका गाना, मुझे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप पता ना कहाँ कहाँ से चुन कर लाती हैं। हाँ मुझे
1: बॉर्डर पार से आता
0: है। जी जी जी बॉर्डर पार से ये गाना तो हाँ, मुझे मतलब मिल गया शायद, आई होप कि यही गाना हो। आप जब मैं प्ले करूँगा तो आप मुझे इसको कन्फर्म कीजिएगा कि हाँ यही गाना है, तो मैं थोड़ा सा कन्फर्म हो जाऊँगा। ओके
1: जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखिए ताकि मतलब हम सबके लिए मतलब आप हाजिर रहे हमेशा। अपना ख्याल रखिए।
0: ओके ओके धन्यवाद, चलिए एंजॉय कीजिए गाने को, प्ले करते हैं।
2: जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक।

0: बहुत प्यारा गाना लगा, सच में दिल खुश कर दिया। और पता ना कहाँ से चुन के लाती है इतने प्यारे प्यारे गाने। ओ माय गॉड, इनका टेस्ट ही सबसे अलग है, सबसे अंदाज ही निराला है। ओके, रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि कहाँ गया बेदर्दी मन को तड़पा के। अमन शाह जी फरमाइश को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि रात खामोश है चांद भी चुपचाप है। लिखते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी कि रात खामोश है और चांद भी चुपचाप है, रेडियो हॉटस्टार की आवाज में एक अलग ही बात है। हर गीत जैसे दिल की धड़कन बन जाता है, हर गीत जैसे दिल की धड़कन बन जाता है, और ये सुहानी रात किसी की याद दिला जाती है। और आमना खान जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ राहुल पासी जी लिखते हैं कि आमना खान जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, जाते जाते आप जुड़ चुकी हैं और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, मैं यही कहूँगा। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन जी बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू
0: जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। निशांत राय बोले जी, और अनिल कुमार जी लिखते हैं कि वह क्या गाना है, सुपर पसंद के लिए थैंक यू सो मच। और समुद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, आपका भी वेलकम है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आमना खान जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको इसी बात पर। अगला जो गीत में प्ले करने वाला अंकिता जी का है, अंकिता जी सुनना चाहती हैं मैं सोहनी महिवाल तो, एंजॉय द ट्रैक।

तो बताइए मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका, और फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आशीर्वाद बन लेते हैं कि आमना खान जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत बढ़िया सच में। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि अंकिता जी की डिमांड मुझे बहुत पसंद आई है, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि सॉन्ग बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा है, और गजानंद जी लिखते हैं कि अंकिता जी की पसंद बेहतरीन लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम नारायण राय जी जुड़ चुके हैं।

कि बहुत ही शानदार गाना जी, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है, संतोष कुमार जी सुनना चाहते हैं इनको प्यार हुआ है, अल्लाह मियाँ। ओके, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक और निशान साहब बड़े अच्छी लगते हैं। मेरा फेवरेट गाना सभी सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि अल्लाह मियाँ मुझे वाला गाना बहुत अच्छा लगा है और फिर सुन लेते हैं।
1: जय मान सर जी
0: बोलिए।
1: प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और तीन भाई है राहुल पासी जी और दो आदमी विनर बने उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तीनों आदमी को और आपको भी धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा प्रोग्राम चलाने के लिए। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। ये प्रोग्राम तो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे गाने भेजते हैं तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है। अभी इतने सारे डिमांड है कि मैं क्या बोलूँ, सबकी डिमांड को पूरी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है मैं उतना प्ले कर रहा हूँ। राहुल पासी जी लिखते हैं कि खलनायिका मूवी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नंदलाल जी। मीना जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा गाना है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि खलनायिका वाला गाना बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो नीतू शरण जी का है और नीतू शरण जी सुनना ये सुनना चाहते हैं यारी है ईमान। जरा इंजॉय करते हैं।

से प्यार है और बहुत सारे फीडबैक भी आ गए हैं, जरा शामिल कर लेते हैं। निशांत राय बोले, लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है सभी दोस्तों का, और एमडी फैज लिखते हैं कि बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना लगा, और शिल्पा पे लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग, ओके ये निशांत के पास जो सितारा है अच्छा। और नीतू रंजी लिखते हैं कि धन्यवाद मेरा गाना सुनवाने के लिए, और जुड़ चुके हैं यहाँ पे अहमद जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अहमद जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन सर जी को प्यार नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि हर दिन की तरह, हर शाम की तरह आज कभी प्रोग्राम सुनने में बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वीरवर बागे लिखते हैं कि गजब का गाना है, मजा आ गया सुन के। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, सुनकर मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे ये विभूति शरण जी का है, और विभूति शरण जी सुनना चाहते हैं

आप ऐसे ही प्रोग्राम देते हैं और जे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और कभी सीट पर बैठकर एकदम से ना उठना, नहीं तो अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। जी बिल्कुल, अब मैं जा ही रहा हूँ, एक गाना और मैं प्ले करूंगा और एक या दो गाने में मैं प्ले करने वाला हूँ। मीना कुमारी जी कहते हैं कि मैं हर दुआ में तुझे मांगती रहूं खुदा से और तू किसी और को इन पाकर मुस्कुराता रहा सदा। हमने तो दिल लगाया है तन्हाई के नाम पर और क्योंकि हमारी मोहब्बत भी आपसे एक तरफा ही सही। वो जान भी नहीं सका मेरी पागलपन और चाहत को और मैं हर दिन उसके नाम से जीती रही। वाह क्या बात है। और बीबर बघेल लिखते हैं शानदार पसंद है, धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं सर जो तेरा चकराया गाना सुनकर मजा आ गया। शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि सर जो तेरा चकराया गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और जी बिल्कुल। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इनके। अमना जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी बहुत अच्छा लगा। इसी बात पर दिल दीवाने का डोला पहले सुन लीजिए और इसके बाद आखिरी गाना मैं प्ले करूंगा। ये गाना है हमारे यलोकु साहू जी का और इसके बाद आखिरी गाना प्ले होगा इनके कमल शंकर पांडे जी का।

बिल्कुल इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा, बिल्कुल सिर्फ तू मेरी सुंदरता की मुरज्जी। और अब बिरबल बघेल लिखते हैं कि दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, और शिल्पा भी लिखते हैं कि दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि ये लौकी जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। आखिरी गाना हमारे कमल शंकर पांडे जी ये सुनना चाहते हैं, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। जी बिल्कुल, अपने आशिकी का असर छोड़ कर जा रहा हूँ आप सबके लिए। इंजॉय कीजिए और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, लेकिन थोड़ा सा गाना गुनगुनाने के बाद।

बिल्कुल आप सब पर अपना नजर छोड़ के जा रहा हूँ, और इसी गाने के साथ दीजिए मुझे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक लिए

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: खुशी तेरे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

चूल्हा जला दो जी, आज घास ले डाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लाओ।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।